मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 14वीं तिथि, तदनुसार 4 जून सन 2026 है।

0: आकाशवाणी का ये उदयपुर केंद्र है। सवेरे के 6 बजने को है। आइए अब आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र, जहां से आप सुनेंगे कुछ ही पलों में हिंदी में समाचार। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेज के साथ वार्ता करेंगे। दोनों नेता ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार, निवेश, दवा उद्योग, स्वास्थ्य सेवा और नवीकरणीय ऊर्जा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेज 5 दिन की भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंची। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत और वेनेजुएला के बीच ऊर्जा, व्यापार और वैश्विक दक्षिण के मुद्दों पर मजबूत सहयोग है। ये यात्रा दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने में सहायक होगी। ब्रिटेन की विदेश और राष्ट्रमंडल मामलों की मंत्री यवेट कूपर भारत की 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। सुश्री कूपर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। आज शाम वे विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से भी मिलेंगी। गृहमंत्री अमित शाह आज मेघालय के शिलांग में उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। बैठक में पर्यटन, कृषि और बागवानी, निवेश, खेल, बुनियादी ढांचा, संपर्क सुविधा तथा हस्तशिल्प जैसे क्षेत्रों पर चर्चा होगी। इसके साथ ही पूर्वोत्तर क्षेत्र के समग्र विकास के लिए तैयार किए जा रहे

0: नॉर्थ ईस्ट विजन प्लान 2047 पर भी विचार विमर्श होगा। इसके बाद गृहमंत्री त्रिपुरा के दो दिन के दौरे पर आज शाम अगरतला पहुंचेंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पश्चिम बंगाल में विभिन्न रेल परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए शनिवार को कोलकाता पहुंचेंगे। पूर्वी रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शिवाजी माझी ने आकाशवाणी को बताया कि रेल मंत्री मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ नबन्ना सभागार में उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमानन ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की एकमुश्त बजटीय सहायता देने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए ये आत्मनिर्भर कोष 36 महीने के लिए लागू रहेगा। मंत्रिमंडल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रक और बस को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने कहा कि योजना के अंतर्गत लगभग 2 लाख ट्रक और 16,000 बस BS6 या इलेक्ट्रिक वाहनों से बदली जाएंगी।
1: दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कंट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण आता है और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है हैवी ट्रक्स और बसेस, पुरानी ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला लिया गया है।
0: नई दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में कल एक गेस्ट हाउस में आग लगने की घटना में 21 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि मृतकों में 9 भारतीय और 12 विदेशी नागरिक हैं। पुलिस ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है। उसने बताया कि इमारत के मालिक लवकेश बजाज को हिरासत में ले लिया गया है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा है कि घटना के मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज से ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक शुरू होगी। 2 दिनों तक चलने वाली इस बैठक में चीन, ब्राजील, मिस्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पूरी दुनिया में योग अत्यंत लोकप्रिय हो रहा है। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि वे आज गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित होने वाली प्रथम विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप 2026 में आभासी माध्यम से शामिल होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इस मंच ने दुनिया भर के योग प्रेमियों को जोड़ा है। भारत ने सैफ फुटबॉल महिला चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में भूटान को 1-0 से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। 5 बार के विजेता भारत का फाइनल में शनिवार को मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश से मुकाबला होगा। मैच भारतीय समय अनुसार शाम 6:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज पर यह है आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र। सवेरे के 6:05 हो रहे हैं। लीजिए अब सुनिए भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना।

ये थी वंदना भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम। आकाशवाणी का ये उदयपुर केंद्र है। सवेरे के 6:35 हो रहे हैं। आइए अब हम आपको जानकारी दे दें हमारे केंद्र से रिले और प्रसारित किए जाने वाले कुछ खास खास कार्यक्रमों के बारे में। कार्यक्रम

अब से कुछ देर में यानी 6:40 पर आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस गान। छह बजकर 50 मिनट पर हमारे किसान भाई सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम खेती में आज। किसान भाइयों के दैनिक कार्यक्रमों में दोपहर 2:30 पर आप सुनेंगे कृषि जगत और शाम 7 बजे आप सुनेंगे खेती और घर।

सवेरे 7 बजे फिल्म संगीत का आनंद आप लेंगे। और फिल्म संगीत की दुनिया में अगर आप खो जाना चाहते हैं तो फिल्मी गीतों का आनंद आप ले सकते हैं सवेरे 10 बजे, दोपहर 12 बजे, दोपहर 1:45 पर, शाम 6:05 पर, रात्रि 8 बजे और रात्रि 9:30 से लेकर रात्रि 10 बजे भी आप फिल्मी लग में सुन सकते हैं।

सुगम संगीत ये कार्यक्रम आप सुनना ना भूलिए 7:45 पर। सवेरे 11:30 पर भी आप सुगम संगीत सुन सकते हैं और सुगम संगीत का आनंद रात्रि 9:15 पर भी आप लीजिएगा।

शास्त्रीय संगीत आप सुनना न भूलिएगा सवेरे 11 बजे। सहेलियां रिबाड़ी हमारी ग्रामीण महिलाओं का ये कार्यक्रम होगा दोपहर 1:05 पर। युवाणी हमारे युवा श्रोताओं का कार्यक्रम शाम 5 बजे।

शुदा, आज है गुरुवार का दिन, तो ग्रीन एंड गेटवे थर्सडे प्रोग्राम नमस्कार उदयपुर का आज का अंक सुनना न भूलेगा 8:30 से लेकर 9:30 तक।

तो ये थी जानकारी श्रोता हमारे केंद्र से आज रिले और प्रसारित किए जाने वाले कुछ खास खास कार्यक्रमों की कार्यक्रम विवरण के अंतर्गत। आकाशवाणी का ये उदयपुर केंद्र है। सवेरे के 6:40 हो रहे हैं। लीजिए अब सुनिए श्री रामचरित मानस गान।

राजा जनक के यज्ञ में धनुष भंग हो चुका है। परशुराम वहां का दृश्य देख क्रोधित हैं। उनके वचनानुसार जिसने शिव का यह धनुष तोड़ा है वो सहस्रबाहु के समान उनका दुश्मन है। परशुराम निरे मुनि और बाल ब्रह्मचारी ही नहीं अत्यंत क्रोधी हैं और विश्व भर में क्षत्रिय कुलनाशक के रूप में विख्यात हैं। अपने भुजबल से उन्होंने कई बार क्षत्रिय वंश का नाश करके पृथ्वी ब्राह्मणों को दे डाली है। क्रोध की चरम सीमा स्वरूप उन्होंने लक्ष्मण को अपना विश्व विख्यात फरसा दिखाया, किंतु लक्ष्मण कौतुकवश खेल ही खेल में मुनि के कुपित वचन सुनते जा रहे हैं। मुनि को भृगुवंशी समझ और यज्ञोपवीत देखकर सब कुछ सहते जा रहे हैं।

सतीश भाटिया के संगीत निर्देशन में अभी आपने सुना श्री रामचरित मानस गान। आकाशवाणी का ये उदयपुर केंद्र है। सवेरे के 6:50 हो रहे हैं। लीजिए अब सुनिए किसान भाइयों के दैनिक कार्यक्रम खेती में आज।

खेती में आज कार्यक्रम होणवा वाला हगलाई किसान भाई बहना ने नानो भाईरो घणो घणो राम राम सा। जून राणी मीना में किसान भाई खरीफ फसलारी वावणी री तैयारियां शुरू करया वेगा। यो समय मानसून रे आवाउ पहला और वंडे तुरंत बाद रो समय वे जटे किसान भाई खेतीबाड़ी में काम करे है। अणी समय पे किसान भाई बागवानी फसला में आंवला री खेती करना चाहे तो मणा ने आपा कहना चाहवांगा कि आंवला एक अत्यधिक उत्पादनशील प्रचुक पोषक तत्व वालो अद्वितीय औषधि गुणा वालो पौधो वे। आंवला रो फल विटामिन सी रो प्रमुख स्त्रोत है और शर्करा और अन्य पोषक तत्व भी अणमें प्रचुर मात्रा में पाया जावे है। आंवला उष्ण जलवायु रो वृक्ष है। आंवला री खासियत यह भी है कि अन्य शुष्क प्रदेशों में भी आसानी उगायो जा सके। बलुई मिट्टी रे अतिरिक्त सभी प्रकार की मिट्टी में आंवला री खेती की जा सके। आंवला रो पौधो काफी कठोर वे और सामान्य मिट्टी जंडो पीएच मान नो तक वे अणमें भी आंवला री खेती की दी जा सके। ऊसर मिट्टी में जून में 8-10 मीटर की दूरी पर एक हवा मीटर गड्ढा खोद लेना चाहे। वरकारा मौसम में अणा खाड़ा में पानी भर देना चाहे और एकत्रित पानी ने निकालने फेंक देना चाहे। प्रत्येक गड्ढा में 50-60 किलोग्राम सड़ी हुई गोबरी खाद, 15-20 किलोग्राम बालू, 8-10 किलोग्राम जिप्सम और ऑर्गेनिक खाद रो मिश्रण लगभग 5 किलोग्राम भर देनो चावे। भराई रे 15-25 दिन रे केड़े अभिक्रिया समाप्त हुआ पे पौधा रो रोपण करनो चावे और सामान्य मिट्टी में प्रत्येक गड्ढा में 40-50 किलोग्राम सड़ी लगी गोबरी खाद और 2 किलोग्राम नीमरी खली रो मिश्रण और ऊपर वाली मिट्टी मिलाई ने भर देनी चावे

और गड्ढा रे जमीन में तयों 15-20 सेंटीमीटर ऊंचाई तक भर देनो चावे तो अनेक प्रकार भी आंवला रो पौधा लगाई ने आंवला रे अच्छो उत्पादन ले सके। जटे बात करा पपीता री खेती री तो पपीता री खेती गर्म नमी युक्त जलवायु में की दी जा सके। अणमें अधिकतम 38-44 डिग्री सेल्सियस तक तापमान वेवा लारे उगायो जावे। जमीन उपजाऊ वे तथा जण में जल निकास री अच्छी व्यवस्था वे तो वण में पपीता री खेती जो है वह उत्तम वेवे है। पपीता रा नया बागारे रोपण रे वाते रेखांकन करवा रे उपरांत गड्ढा में खुदाई करनी चावे। पपीता रा वाते 2-5 मीटर री दूरी पर 75 सेंटीमीटर लंबा चौड़ा और गहरा गड्ढा बनाना। प्रत्येक गड्ढा में 30-40 किलोग्राम सड़ी गोबरी खाद 1 किलोग्राम नीमरी खली और गड्ढा में निकाली गई ऊपरी मिट्टी में मिलाई ने गड्ढा ने जमीन में 20 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक भर देनो चावे। 1 हेक्टेयर वाते 500 ग्राम 1 किलोग्राम बीज रे आवश्यकता वे। पपीता रा पौधा बीज द्वारा तैयार किया जावे। 1 हेक्टेयर खेती में प्रति गड्ढा 2 पौधा लगावा पर 5000 पौध संख्या रे आवश्यकता वे है। पपीता रे उगाई जा वाली उन्नत किस्मों में जिस तरह पूसा मेजेस्टी है, पूसा जायंट, वॉशिंगटन, सोलो, कोयम्बर्ड, हनीड्यू, कुर्ग, हनीड्यू पूसा, पूसा ड्वार्प, पूसा डिलीशियस, सिलोन, पूसा नन्ना आदि प्रमुख है। 20 सेंटीमीटर चौड़ा मुंडा वाली, 25 सेंटीमीटर लंबी और 1.5 सेंटीमीटर छेद वाली जो पॉलीथीन री थैलियां आपने लेनी है। अणा थैलियां में गोबर की खाद, मिट्टी और रेत रो मिश्रण करनो चावे। थैली रा ऊपरी भाग में 1 सेंटीमीटर भाग नी भरनो चावे और प्रति थैली में 2-3 बीज आपने रखना चावे। मिट्टी में हमेशा पर्याप्त नमी रखांगा और यदि पौधा 15-20 सेंटीमीटर ऊंचा बह जाए तब थैलिया रे नीचे रोप जो भाग है वरने ब्लेड द्वारा सावधानी पूर्वक काटने पहला तैयार किया गया अगर गड्ढा में लगाऊंगा तो पपीता रे आप उन्नत खेती ले सका हाँ। जटे बात करा नींबू री तो नींबू में 1 वर्ष रा पौधा में 25 ग्राम नाइट्रोजन और 25 ग्राम पोटाश री मात्रा ने प्रतिवर्ष अणी अनुपात में बढ़ातो रहनो है जो क्रमशः 10 वर्षों बढ़ने या पचास अधिक आयु रा जो पौधा है उनमें 250 ग्राम नाइट्रोजन और पोटाश वही जाएगा तो यो प्रयोग अणी माह में या पचे फल लागवारे 2 महीना बाद अपने करनो चावे। जटे अणी टेम बात करा अमरूद री खेती री तो अमरूद रे अच्छा उत्पादन रे वाते बलुई दोमट मिट्टी अच्छी पाई जावे। अंडे उत्पादन रे वाते 6-7 pH मान री जो मिट्टी वे वह उपयुक्त वे किंतु 7-अधिक pH मान री जो मिट्टी है उनमें उकटा रोग रे प्रकोप री संभावना बनी रहे है। अमरुद ने आपा उष्ण और उपोष्ण जलवायु में सफलतापूर्वक वही सका हाँ। अमरुद री खेती रे वाते 15-30 डिग्री सेल्सियस तापमान जो वे वह अनुकूल वे और यो सूखा ने बली भांति सहन कर ले। तापमान में अधिक उतार चढ़ाव, गर्म हवा, कम वर्षा, जल क्रांति फल रो उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव कम डाले है। अमरूद री उगाई जावाले अगर उन्नत किस्मा री आप बात करा तो इलाहाबादा सफ़ेद, हिसारा सफ़ेद, लखनऊ 49, चित्तीदार, ग्वालियर 27, एपिल गुआवा और धारीदार प्रमुख है। अंडे अलावा भी अरका मृदुला, श्वेता, ललित और पंत प्रभात किस्मा जो है व्यावसायिक उत्पादन वाते देखो उपयोग में ले सका हाँ। कोहिर सफ़ेदा, सफ़ेदा और सफ़ेद जाम नामर संकर प्रजाति भी आपा उपयोग में ले सका हाँ। अमरुद रा नया बाग रे रोपण रे वाते आपा रेखांकन करवा रे पश्चात जो गड्ढा री खुदाई करनी है। अमरुद रे वाते 5x5 मीटर री दूरी पर 75 सेंटीमीटर लंबा, 75 सेंटीमीटर चौड़ा और 75 सेंटीमीटर गहरा जो गड्ढा है वणान वणानो है। प्रत्येक गड्ढा में 30-40 किलोग्राम सड़ी गोबरी खाद, 1 किलोग्राम नीमरी खली और गड्ढाओं निकाली गई ऊपरी मिट्टी मिलाई ने गड्ढा ने जमीनों 20 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक भर देनो है। प्रारंभिक 2-3 वर्षा में बगीचा में रिक्त स्थान में आपा खरीफ में लोबिया, जवार, उड़द, मूंग और सोयाबीन री फसला भी उगाई सका। बागवानी फसला में जटे केला री बात करा तो केला री रोपाई रोई भी यो उपयुक्त समय है। केला उगावरे वाते अच्छा निकास वाली पर्याप्त उपजाऊ और नमी क्षमता वाली जो है वंडी मिट्टी रो अपने चयन करनो चावे। उच्च नाइट्रोजन युक्त मिट्टी, पर्याप्त फास्फोरस और उच्च स्तरीय पोटाश वाली मिट्टी केला री खेती वाते अच्छी वेवे है। जल जमाव, कम हवादार और कम पौष्टिक तत्व वाली मिट्टी में भी अंडी खेती नहीं करनी चावे। रेतीली, नमक वाली और कैल्शियम युक्त और अधिक चिकनी मिट्टी भी वे अंडी खेती नहीं करनी चावे। घर में हमें कम 3-4 बार जुताई करनी है और आखिरी जुताई रे टाइम 10 टन अच्छी तरह सड़ी लगी गोबरी खाद या पचे गाय रो सड़ियो लगो गोबर मिट्टी में अच्छी तरह मिलाना है। जमीन ने समतल करवा रहे वाते ब्लेड

0: खेती में आज किसान भाइयों ने सुना अभी अपना दैनिक कार्यक्रम। आकाशवाणी का ये उदयपुर केंद्र है, सवेरे के 7 बजने को है। आइए अब आपको सुनवाते हैं सदाबहार नगमे। जुगनू इस फिल्म का ये नगमा आप सुनिए आवाज किशोर कुमार की।
1: अरे वही तो है

किशोर कुमार को अभी आपने सुना जुगनू फिल्म के इस गीत में। आइए किशोर कुमार की ही आवाज में अगली फिल्म का ये नगमा आप तक पहुंचाते हैं। फिल्म का नाम है मेरे जीवन साथी।

मेरे जीवन साथी इस फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना। आइए अब सुनते हैं मुकेश और साथियों को फिल्म धर्म कर्म के इस गीत के साथ।

0: प्यासा सावन का ये गीत अभी आपने सुना, आवाज लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर की। आइए लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक।
1: क्या बात है, बड़े दिनों बाद।
2: हाँ यार। अच्छा सुन, दाढ़ी बनवाने का कितना होगा?
1: अरे वही अपना 60 रुपया।
2: अरे यार अभी सिर्फ मेरे पास 30 रुपए कैश है।
1: तो देख, दो तरीके हैं। पहला, आधी दाढ़ी करा ले।
2: और दूसरा?
1: अरे डिजिटल पेमेंट कर UPI से।
2: ये लो यार, UPI ने तो बचा लिया।
1: एक काम कर, फेशियल भी करा ले, डिजिटल पेमेंट कर देना।
3: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
4: हर लेन देन अब है आसान।
5: नई कार जीतने का मौका, वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है।
6: रुक जा बुद्धू।
7: What? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं।
5: तू समझ गई ना, रिलैक्स।
8: पर कार जीत जाते तो
9: पापा होमवर्क नहीं कराते।
7: RBI कहता है, स्मार्ट बनो, कूल रहो।

तलत अजीज को भी आपने सुना। आइए अब सुनते हैं लव स्टोरी फिल्म का गीत लता मंगेशकर और अमित कुमार की आवाज में।

तुमने मुझे देखा, ओ मेहरबान। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में अभी आपने सुना ये खूबसूरत सा नगमा, और इसी नगमे के साथ सदाबहार नगमों का ये कार्यक्रम बस यहीं तक। मैं थी आपके साथ आपकी हृदय दोस्त कामिनी।

आकाशवाणी का ये उदयपुर केंद्र है। सवेरे के 7:45 हो रहे हैं और ये वक्त है सुगम संगीत के कार्यक्रम का। तो आइए उस मोड़ पर आ गए हैं हम जहां गजलों की ये महफिल हम सजा रहे हैं जगजीत सिंह के सुरों में।

0: ta peshkaram.
1: श्रोताओं, जगजीत सिंह की गाई गजलें अभी आपने सुनी सुगम संगीत के इस कार्यक्रम में। आकाशवाणी का ये उदयपुर केंद्र है, सवेरे के 8 बजने को है। आइए अब आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र, जहां से आप सुनेंगे कुछ ही पलों में हिंदी में समाचार प्रभात व अंग्रेजी में मॉर्निंग न्यूज।
2: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
3: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
2: और लाइट बिल के,
3: अब 0 रुपए कैसे दूं?
2: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
3: पक्का।
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
5: हर घर सूर्य घर।
6: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ वार्ता करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज शिलांग में उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, अमेरिका और भारत बहुप्रतीक्षित व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने से कुछ सप्ताह दूर। मौसम विभाग ने आज केरलम और माहे में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। पहली विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप आज से अहमदाबाद में शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम में शामिल होंगे। भारत ने भूटान को 1-0 से हराकर सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ वार्ता करेंगे। इस दौरान ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार, निवेश, औषधि उद्योग, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन तथा नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। डेल्सी रोड्रिगेज 5 दिन की भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंची। हमारी संवाददाता की रिपोर्ट।
7: राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी है। वह इससे पहले 2015 में विदेश मंत्री और 2019, 2023, 2024 तथा 2025 में उपराष्ट्रपति के रूप में भारत का दौरा कर चुकी हैं। वेनेजुएला का प्रतिनिधिमंडल भारत के ऊर्जा, औषधि और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों से जुड़ी कई प्रतिष्ठानों का दौरा करेगा। इसका उद्देश्य भारत की तकनीकी और औद्योगिक क्षमताओं को समझना तथा सहयोग की नई संभावनाओं की तलाश करना है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत और वेनेजुएला के बीच ऊर्जा, व्यापार और वैश्विक दक्षिण के प्रति साझा प्रतिबद्धता पर आधारित सौहार्दपूर्ण संबंध है। मंत्रालय के अनुसार इस यात्रा से दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंध और अधिक मजबूत होंगे तथा विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को नई गति मिलेगी। अनुपम मिश्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से इशिका शॉ।
6: ब्रिटेन की विदेश और राष्ट्रमंडल मामलों की मंत्री येवेट कूपर 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर कल रात नई दिल्ली पहुंची। सुश्री कूपर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। वे आज शाम विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ भी बैठक करेंगी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि उनकी ये यात्रा भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का अवसर प्रदान करेगी। गृहमंत्री

0: शाह आज मेघालय के शिलांग में उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जाएगी।
1: बैठक में पर्यटन, कृषि और बागवानी, निवेश, खेल, बुनियादी ढांचा, संपर्क सुविधा और हस्तशिल्प जैसे क्षेत्रों पर चर्चा होगी। इसके साथ ही पूर्वोत्तर क्षेत्र के समग्र विकास के लिए तैयार किए जा रहे नॉर्थ ईस्ट विजन प्लान 2047 पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार, पूर्वोत्तर के सभी 8 राज्यों के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उत्तर पूर्वी परिषद सदस्य और केंद्र तथा राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहेंगे। अनुमेदिता और ऋषो की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज से ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक शुरू होगी। 2 दिनों तक चलने वाली इस बैठक में चीन, ब्राजील, मिस्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: इस सम्मेलन के दौरान काशी के विश्व प्रसिद्ध GI टैग प्राप्त और ODOP यानी एक जिला एक उत्पाद की एक विशेष प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा। प्रदर्शनी में 6 कारीगर, वाराणसी की समृद्ध शिल्प परंपराओं का प्रतिनिधित्व करने वाले 6 अनूठे उत्पादों का प्रदर्शन करेंगे। ये उत्पाद काशी की सदियों पुरानी कला, शिल्प कौशल और सांस्कृतिक विरासत के जीवंत प्रतीक हैं। प्रदर्शनी के माध्यम से विदेशी प्रतिनिधियों को न केवल इन उत्पादों की विशिष्टता से परिचित कराया जाएगा बल्कि स्थानीय कलाकारों और कारीगरों को भी वैश्विक बाजार में अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार सरकार के पिछले 12 वर्षों के विभिन्न क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज हम कारोबार करने में सुगमता यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर चर्चा करेंगे।
3: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देने के साथ साथ कारोबार को आसान बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। इन सुधारों से निवेशकों का भरोसा बढ़ा है और भारत दुनिया में प्रतिस्पर्धी व्यापारिक केंद्र के रूप में मजबूत हुआ है। 2016 में शुरू की गई स्टार्टअप इंडिया योजना नवाचार, उद्यमिता और निवेश आधारित विकास को बढ़ावा दे रही है। सरकार के प्रयासों के कारण देश में स्टार्टअप की संख्या 2016 में लगभग 500 से बढ़कर इस साल मार्च तक 2,23,000 से अधिक हो गई है। वहीं जून 2021 में आयकर विभाग ने नया ई फाइलिंग पोर्टल शुरू किया ताकि करदाताओं को अधिक सुविधा और बेहतर ऑनलाइन सेवाएं मिल सके। इसके अलावा 2017 में GST लागू किया गया जिसे अलग अलग कर व्यवस्थाओं की जगह एक सरल कर प्रणाली लागू हुई जिससे कारोबार करना आसान हो गया। महाराष्ट्र के ठाणे के चार्टर्ड अकाउंटेंट मनोज बासेर ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में किए गए सुधारों से अर्थव्यवस्था को स्थिरता मिली है।
4: केंद्र सरकार के अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष करके ऊपर किए गए रिफॉर्म्स देश की इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा स्टेप है स्टेबिलिटी के लिए। अप्रत्यक्ष करके रिफॉर्म से वन नेशन वन टैक्स का एडवांटेज काफी क्लियरिटी देता है कि हमें बिजनेस कैसे करना है। लोगों को टैक्स के बारे में पूरा नॉलेज और क्लियरिटी आती है। इससे एक देश की इमेज भी बहुत अच्छी हुई है और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हुई है।
3: वहीं सरकारी खरीद प्रक्रिया को डिजिटल, सरल और सभी के लिए सुलभ बनाने के लिए 2016 में गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस जेम की शुरुआत की गई। जेम पर अब तक कुल 18 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार हो चुका है। जेम से जुड़ी एक विक्रेता कामिनी गुप्ता ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि जेम की प्रक्रिया काफी सरल और पारदर्शी है और सरकारी खरीदारों तक पहुंच प्रदान करता है।
5: ये डिजिटल खरीद मंच है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और इनकी जो टेक्निकल टीम है और जो भी हमारे लोग जुड़े हैं जेम से, ये एक प्राइवेट कंपनी की तरह काम करते हैं। इनका सहयोग मिलता रहता है। MSME, स्टार्टअप, महिला उद्यमियों और निर्माताओं को सीधे सरकारी खरीदारों तक पहुंच प्रदान करता है।
3: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम MSME के पंजीकरण को आसान बनाने के लिए केंद्र सरकार ने उद्यम पंजीकरण पोर्टल की शुरुआत की। इस पोर्टल पर पंजीकरण की संख्या अक्टूबर 2020 में 10,000 थी जो बढ़कर अब 8,31,000 से अधिक हो गई है। भारत में कारोबार के लिए बेहतर माहौल, मजबूत डिजिटल व्यवस्था और पारदर्शी शासन से व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिल रहा है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।

0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रथम विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप आज गुजरात के अहमदाबाद में शुरू हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इसका मुख्य उद्देश्य विश्व स्तर पर बहु खेल प्रतियोगिताओं में योग को शामिल करना है।
1: इस 5 दिवसीय वैश्विक प्रतियोगिता में अमेरिका सहित 60 देशों के 400 से अधिक प्रतिभागी 12 विभिन्न स्पर्धाओं में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। वर्ल्ड योगासन के तत्वाधान में योगासन भारत द्वारा आयोजित इस ऐतिहासिक आयोजन का मुख्य उद्देश्य विश्व स्तर पर बहु खेल प्रतियोगिता में योग को शामिल करने का मार्ग प्रशस्त करना है। यह पहल वैश्विक स्तर पर योग और कल्याण के बारे में जागरूकता फैलाने के साथ साथ योगासन को प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में बढ़ावा देने का एक प्रयास है। इस चैंपियनशिप के दौरान खिलाड़ी कलात्मक और लयबद्ध योग डिवीजनों के साथ साथ 7 आधिकारिक योग श्रेणियों में हिस्सा लेंगे। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: बिहार के मुजफ्फरपुर में एक निजी अस्पताल में भीषण आग लगने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य लोग घायल हो गए। ये घटना ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र में कल रात हुई। घटना की जांच जारी है। इधर नई दिल्ली के मालवीय नगर में कल एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली पुलिस ने बताया है कि मृतकों में 9 भारतीय और 12 विदेशी नागरिक शामिल हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और इमारत के मालिक लवकेश बजाज को हिरासत में लिया है। अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि भारत और अमरीका लंबे समय से प्रस्तावित व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने से बेहद करीब हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच ये समझौता अगले कुछ सप्ताह में पूरा हो सकता है। रूबियो ने कहा कि हाल ही में भारत यात्रा के दौरान क्वाड देशों के प्रतिनिधियों के साथ इस संबंध में चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि क्वाड देश अब केवल बातचीत तक सीमित नहीं है, बल्कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सहयोग सहित कई ठोस परियोजनाओं पर मिलकर काम कर रहे हैं।
2: सहयोग के जिन क्षेत्रों पर हम मिलकर काम कर रहे हैं, वे हाल ही में दुनिया भर में हुई घटनाओं के कारण और भी अधिक प्रासंगिक और महत्वपूर्ण हो गए हैं। इसलिए आज मुझे लगता है कि हम उन क्षेत्रों में अपने संबंधों को क्रियान्वित करने में और भी अधिक प्रगति करेंगे जिन पर हम सहयोग कर सकते हैं। क्वाड के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि हम साझा हितों के क्षेत्रों में विचारों का आदान प्रदान करने के लिए एक साथ आते हैं। क्वाड तेजी से एक ऐसा मंच बनता जा रहा है जिसके माध्यम से हम कार्रवाई कर सकते हैं।
0: भारत ने सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में भूटान को 1-0 से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। गोवा के मडगांव में कल भारतीय महिला फुटबॉल टीम 6 साल बाद सैफ महिला चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंची। 5 बार के विजेता भारत का फाइनल में शनिवार को मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश से सामना होगा। मौसम विभाग ने आज केरलम और माहे में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, कर्नाटक, कोंकण और गोवा, लक्षद्वीप, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और उत्तराखंड में भी बारिश की संभावना है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और विदर्भ में गरज के साथ हल्की बारिश हो सकती है, जबकि पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में धूल भरी आंधी की आशंका है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
3: धन्यवाद मुकेश। राजधानी दिल्ली से प्रकाशित मुख्य समाचार पत्रों ने आज मालवीय नगर के होटल में लगी भीषण आग की खबर को सचित्र प्रकाशित किया है। जनसत्ता लिखता है, दिल्ली में भयावह अग्निकांड। दैनिक जागरण के शब्द हैं, अवैध होटल में 21 की मौत, 11 विदेशियों सहित 21 जिंदा जले। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, घटना के बाद अग्नि सुरक्षा संबंधी व्यापक अभियान चलाने पर सख्ती। शीर्षक से हिन्दुस्तान ने लिखा है, नियम तोड़ने वाले प्रतिष्ठान सील होंगे। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए अनुग्रह राशि देने की खबर भी अधिकतम समाचार पत्रों में है। अमर उजाला ने पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के 2 गुटों में बंटने की खबर को शीर्षक दिया है। तृणमूल में टूट, 58 बागी विधायकों ने ऋत व्रत को चुना नेता, मिली मान्यता। इसी खबर पर राजस्थान पत्रिका की टिप्पणी है, टूट गई टीएमसी, 58 विधायकों ने स्पीकर को सौंपा।

0: समर्थन पत्र। अमेरिका द्वारा भारत सहित 50 से अधिक देशों पर अतिरिक्त शुल्क लगाने के प्रस्ताव पर नवभारत टाइम्स ने बॉक्स में लिखा है, अमेरिका ट्रेड डील पर बातचीत के बीच 12.5% की एक्स्ट्रा ड्यूटी का पेच अमर उजाला ने छापा है। ट्रंप प्रशासन का आरोप, इन देशों ने बंधुआ मजदूरी रोकने के लिए नहीं उठाए कदम, इसलिए लगाया जा रहा है शुल्क। भारत ने जताई कड़ी आपत्ति। वैश्विक तापमान में हो रही वृद्धि पर अमर उजाला ने संपादकीय लेख में संयुक्त राष्ट्र की हालिया रिपोर्ट के हवाले से चिंता व्यक्त करते हुए टिप्पणी की है, जून से अगस्त 2026 के बीच अल नीनो सक्रिय होने की 80% और नवंबर तक बने रहने की आशंका है। मेघालय के चेरापूंजी में सेवन सिस्टर्स और किनरेम वाटरफॉल में लगातार हो रही बारिश की मनमोहक तस्वीर दैनिक भास्कर में है। पौष्टिक आहार के फायदों की याद दिलाते हुए लोकसत्ता ने टिप्पणी की है, याददाश्त बढ़ाने में सहायक पौष्टिक आहार।
1: धन्यवाद सरफिरोजी। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ वार्ता करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह आज शिलांग में उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, अमेरिका और भारत बहुप्रतीक्षित व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने से कुछ सप्ताह दूर। भारत ने भूटान को 1-0 से हराकर सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही समाचार पत्र प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Akashwani presents Morning News. Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to hold talks with acting President of Venezuela, Delcy Rodriguez, in New Delhi today. Union Home Minister Amit Shah to chair 73rd plenary session of Northeastern Council in Shillong. U.S. Secretary of State Marco Rubio says United States and India are only weeks away from concluding a long-awaited trade agreement. IMD issues orange alert for heavy rain in Keralam and Mahe today. First World Yogasan Sports Championship to begin today in Ahmedabad. Prime Minister Narendra Modi to join the event virtually in the evening. And in football, India advanced to the final of SAF Women's Championship, beating Bhutan 1-0 in Goa. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will hold talks with the acting President of Venezuela, Delcy Rodriguez, in New Delhi today. Ms. Rodriguez arrived yesterday on a 5-day visit to India. She is accompanied by a delegation comprising the Ministers of Foreign Affairs, Economy and Finance, Science and Technology, Communication and Information and Transportation. Ms. Rodriguez had visited India in her earlier capacity as Foreign Minister in 2015 and as Vice President in 2019, 2023, 2024 and 2025. More from our correspondent.
3: The discussions will involve the full spectrum of India-Venezuela relations and explore avenues for further cooperation in areas of energy security, trade and investment, pharmaceuticals, healthcare, transportation and renewable energy. The Venezuelan delegation will also visit several sites connected with energy, pharmaceuticals and auto sectors to gain insights into India's technological and industrial capabilities and to explore opportunities for collaboration. India has been an important partner of Venezuela in the areas of energy and investment. Indian PSUs have made significant investment in Venezuela in the energy sector and they are keen to explore opportunities for further enhancing their presence. According to the Ministry of External Affairs, India and Venezuela enjoy warm and friendly relations underpinned by cooperation in the energy sector, trade and shared commitment to the Global South. It said that the visit is expected to further strengthen bilateral ties and deepen engagement between the two countries across diverse sectors. With Anupam Mishra, Priya Mondal, Akashwani News, Delhi.
2: Union Home Minister Amit Shah will chair the 73rd plenary session of Northeastern Council NEC in Shillong, Meghalaya today. The Ministry of Development of Northeast Region said the session will discuss and deliberate on progress made by the CM High Level Task Forces constituted for

0: ग्रीन इन गेटवे थर्सडे के प्रोग्राम नमस्कार उदयपुर के आज के इस अंक में आप सभी का स्वागत अभिनंदन। उठकर देखिए सुबह का नजारा, हवा भी है ठंडी, मौसम भी है प्यारा। सो गया चांद और छुप गया हर एक सितारा, तो कबूल हो आपको हमारा ये सुबह का सलाम।
1: जी हाँ, बिल्कुल सही। इन्हीं प्यारी सी पंक्तियों के साथ आज के नमस्कार उदयपुर कार्यक्रम का आगाज। आज इस कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ अनीता, और मेरे साथ हैं
0: मैं हूँ आपकी डियर दोस्त कामिनी।
1: तो स्वीकार कीजिए हमारा प्यार भरा
0: नमस्कार।
1: और कामिनी नमस्कार के साथ ही हम अपने श्रोताओं को बता देते हैं कि ग्रीन एंड गेट अवे गुरुवार में क्या है खास।
0: जी हाँ, आज हम मॉर्निंग ब्रीफ में बात करेंगे आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर बातचीत करेंगे। साथ ही इको टॉक में हम वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान पर बात करेंगे,
1: और ट्रैवल टॉक में हम श्रोताओं को जानकारी देंगे उदयपुर की प्रकृति के बीच बसा शिव मंदिर कुकड़ेश्वर महादेव की, और जागरूकता में बात करेंगे एआई और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में। और अब एक प्यारा सा गीत।

0: तो आज के इस प्रोग्राम में हमारे सलाम के साथ साथ कार्यक्रम का आगाज, और आगाज में आज ग्रीन एंड गेटवे थर्सडे में हम मॉर्निंग ब्रीफ में बात करेंगे आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर बातचीत।
1: जी हाँ, बिल्कुल सही कहा, बच्चे देश का भविष्य होते हैं कामिनी, इसलिए हम सभी की ये जिम्मेदारी हो जाती है कि बच्चों को भयमुक्त और प्यार भरा माहौल दें। आज का 4 जून का दिन आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है, और यह दिन उन बच्चों के दर्द, पीड़ा और आंसुओं को समर्पित होता है जो किसी भी प्रकार की हिंसा या शोषण का शिकार बन जाते हैं।
0: बिल्कुल, इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 19 अगस्त 1982 को की गई थी। दुनिया भर में शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक शोषण के शिकार बच्चों द्वारा झेले गए दर्द और पीड़ा को पहचानना और कम करना इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य है।
1: बिल्कुल, और इस दिन को मनाने के पीछे कई उद्देश्य हैं। कई बार बच्चे शारीरिक और मानसिक और भावनात्मक रूप से पीड़ित हो जाते हैं और किसी से कुछ कह नहीं पाते, तो उनके दर्द को, तकलीफ को पहचानना और समाज के सामने लाना, बच्चों को ऐसा माहौल दें कि वे अपनी परेशानी बिना किसी डर से अपनी बात कह सकें, पढ़ सकें और अपना भविष्य संवार सकें।
0: बिल्कुल, इन बच्चों के अधिकारों की रक्षा करना, उनके शोषण को रोकना।

0: ना ही सबसे महत्वपूर्ण बात है। साथ ही इस दिन की स्थापना मूल रूप से 1982 के लेबनान युद्ध के मासूम बाल पीड़ितों को उनकी जो पीड़ा थी उसे देखते हुए की गई थी। समय के साथ इसका दायरा बढ़ा, दुनिया भर में उन सभी बच्चों को शामिल कर लिया गया जो युद्ध, सशस्त्र संघर्ष और किसी भी प्रकार की हिंसा का शिकार हो रहे थे।
1: और कामिनी, देखो कई बार युद्ध के कारण, पारिवारिक कलह के कारण बच्चे अपना घर, अपने माता पिता खो देते हैं, जिसकी वजह से उन्हें मानसिक ट्रॉमा से भी गुजरना पड़ता है। बच्चे घर में होने वाले झगड़े, मारपीट, दुर्व्यवहार के कारण भी मानसिक रूप से टूट जाते हैं। तो जो उम्र उनके खेलने कूदने की मौज मस्ती की होती है, उसमें वे मजदूरी में लग जाते हैं। मासूम मन जिम्मेदारियों और काम के बोझ के तले दब जाता है, जिसकी वजह से बच्चे थोड़े चिड़चिड़े हो जाते हैं और काम उनके जो उम्र के हिसाब से उनके अच्छे लगते हैं, जो खेलने कूदने की उम्र में वो मजदूरी करने लगते हैं। अपने आसपास हो रहे बाल शोषण या बाल श्रम के खिलाफ आवाज उठाएं और बच्चों के लिए हेल्पलाइन नंबर 1098 पर कॉल करें, क्योंकि बच्चों के हाथों में औजार नहीं, किताबें और खिलौने ही अच्छे लगते हैं।
0: तो इन तारों को जो हमारे साथ सितारे बने हुए हैं, ऐसे ही हमेशा ये चहकते और चमकते रहें, ये हम चाहेंगे।

0: तो अनीता जी, मॉर्निंग ब्रीफ में हम और क्या हमारे श्रोताओं तक पहुंचाने वाले हैं?
1: जी बिल्कुल सही बात है। वैसे तो अब ये देखा जाए कि लेक सिटी में हर रोज हजारों की तादाद में पर्यटक उदयपुर की खूबसूरती को निहारने के लिए आते हैं, लेकिन इन दिनों कुछ ट्रेंड बदल रहा है। पर्यटन के क्षेत्र में एक नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र सहित दक्षिण भारत के विभिन्न राज्यों से बाइक राइडर्स के ग्रुप उदयपुर पहुंचने लगे हैं। ये पर्यटक उत्तर भारत में हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख तक की लंबी यात्रा पर निकलते हैं और अपने रूट में उदयपुर को भी शामिल कर लेते हैं। और लोगों का ये भी मानना है कि बेहतर हाईवे कनेक्टिविटी और प्राकृतिक सौंदर्य के कारण उदयपुर बाइकर्स की पसंद बनता जा रहा है। आने वाले बाइकर्स के ग्रुप उदयापोल और गुलाबबाग क्षेत्र के आसपास ठहरते हैं। यहाँ से वे पुरानी शहर की गलियों, ऐतिहासिक स्थलों और स्थानीय कला संस्कृति का अनुभव लेते हैं। और कई पर्यटक सोलो ट्रिप पर भी आते हैं और कुछ समूह में भी उदयपुर आते हैं। और अधिकांश बाइकर्स उदयपुर में एक या दो दिन रुकते हैं और इसमें होटल, रेस्टोरेंट, स्थानीय पर्यटक गतिविधियों का भी वे लाभ लेते हैं।
0: और जो लोकल न्यूज़ है उसमें हम ये बता दें कि प्रदेश भर में चल रहे विशेष अभियान के तहत उदयपुर परिवहन विभाग ने कल बड़ी कार्रवाई की। शहर के विभिन्न इलाकों में नाकाबंदी कर नियम तोड़ने वाले 30 वाहनों को ब्लैक फिल्म और लाउड हॉर्न होने पर जब्त किया। तो इन सभी बातों का भी सभी ध्यान रखें। और साथ ही कल स्कूल लेक्चरर परीक्षा जीके का पेपर रहा चुनौतीपूर्ण, जिसमें 53% विद्यार्थी परीक्षार्थी उपस्थित रहे।

0: जल है तो कल है, इसी सोच के साथ शुरू हुआ वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान 2026। और पर्यावरण संवाद में आज हम बात कर रहे हैं वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान की। राजस्थान को जल आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। पारंपरिक प्रणालियों को आधुनिक तकनीक और जन भागीदारी से जोड़कर मरुधरा की प्यास बुझाने का एक बेहतरीन प्रयास। और ये अभियान 25 मई 2026 से 5 जून 2026 तक चलेगा।
1: जी बिल्कुल, वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान राजस्थान सरकार द्वारा चलाया जा रहा एक वृहद जल और पर्यावरण संरक्षण अभियान है, जो राज्य में जल संकट से निपटने और भूजल स्तर को बढ़ाने के लिए चलाया गया एक व्यापक जन आंदोलन है।
0: इस अभियान में कई सारे लक्ष्य रखे गए हैं। एक तो ये है कि जितने भी जलाशय हैं, बांध है, उनमें पानी की क्षमता को 20% तक बढ़ाना मानसून से पहले, और कुओं, बावड़ियों, तालाबों, झीलों से मिट्टी को निकालना, उनकी सफाई करना, मरम्मत करना, और इसके अंदर किसी भी तरह का कोई अवरोध हो, बाधा हो या कोई अतिक्रमण हो तो उसे दूर करना, और इस काम में लोगों को अपने साथ जोड़कर श्रमदान कराना।
1: बिल्कुल।

0: वर्षा जल का संचयन करना, जन जागरूकता रैलियां, चौपालें और नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से लोगों को पानी बचाने हेतु जागरूक करना,
1: छतों पर वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को भी सही करना ताकि बारिश का पानी इकट्ठा हो सके, और इसके अलावा किसानों को ड्रिप इरिगेशन स्प्रिंकलर यानी फव्वारा पद्धति और फार्म पॉन्ड के बारे में जानकारी और प्रदर्शन दिए जा रहे हैं।
0: जी बिल्कुल, आप श्रमदान करके इन गतिविधियों में शामिल होकर के अपना योगदान दे सकते हैं,
1: और इसके अलावा और भी कार्यक्रमों के जरिए लोगों को जागरूक करना है, जैसे कि पर्यावरण और जल चेतना के लिए जिलों में दौड़ का आयोजन किया जा रहा है, हरियालो राजस्थान अभियान में बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जा रहा है, पौधों का वितरण किया जा रहा है। इस अभियान को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए जल संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों, सामाजिक संस्थाओं, ग्राम पंचायतों और जल योद्धाओं को जिला स्तर पर जल गौरव सम्मान से पुरस्कृत भी किया जाएगा। हम सभी को भी इस अभियान का हिस्सा बनकर अपना फर्ज पूरा करना चाहिए।
0: जी बिल्कुल, जागरूकता सिर्फ बाकी सब में नहीं, हमसे शुरू होनी चाहिए, क्योंकि जब तक हम इस कार्य को शुरू नहीं करेंगे, जब तक हम जल का जो इम्पोर्टेंस है उसे नहीं समझेंगे, तब तक ये काम संभव नहीं है।

ये कार्यक्रम आप यूं ही सुनते रहेंगे 9:10 पर भी, पर फिलहाल सवेरे के 9 बज रहे हैं और ये वक्त है हिंदी में प्रादेशिक समाचारों का आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से।

0: प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। पहली विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप आज से अहमदाबाद में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने किसानों से परंपरागत खेती की ओर लौटने का आह्वान किया। राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं भर्ती परीक्षा 2026 के 607 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आज से शुरू हुए। और प्रदेश के ज्यादातर हिस्से तेज अंधड़ और बारिश से प्रभावित, आज 16 जिलों के लिए आंधी बारिश का अलर्ट। समाचारों के साथ मैं सिद्धार्थ जैन, और अब समाचार विस्तार से। प्रथम विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप आज से अहमदाबाद में शुरू हो रही है। 5 दिन के इस आयोजन में 70 से अधिक देशों के लगभग 500 एथलीट भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा है कि योग दुनिया भर में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। उन्होंने इस आयोजन को योगासन के वैश्विक खेल विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया और आयोजनकर्ताओं तथा प्रतिभागियों को शुभकामनाएं दी हैं। गौरतलब है कि प्रतियोगिता में पारंपरिक कलात्मक योगासन और लयबद्ध युगल सहित कई विधाएं शामिल होंगी। चैंपियनशिप में सब जूनियर, जूनियर और सीनियर वर्गों में पुरुष और महिला एथलीटों के लिए कई तरह की प्रतियोगिताएं होंगी। पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा है कि सरकार ने 16वें वित्त आयोग के अंतर्गत स्थानीय निकायों के लिए 4,00,000 करोड़ रुपए से अधिक का आवंटन किया है। उन्होंने इसे जमीन स्तर पर विकास के प्रति केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता का प्रतीक बताया। नई दिल्ली में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने आधुनिक शासन में तकनीक की भूमिका का उल्लेख करते हुए कहा कि पंचायत प्रशासन में AI, डिजिटल उपकरणों और नवाचारों को अधिक अपनाने की आवश्यकता है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये सोच है कि ग्रामोदय से ही भारत का उदय हो सकता है। जब तक गांव सशक्त नहीं होगा तब तक इस देश को हम विकसित भारत नहीं बना सकते। हम पंचायत के प्रतिनिधियों से आग्रह करें कि आप अपने पंचायत के आय के स्रोत में भी वृद्धि करिए, आप उसके लिए भी योजना बनाइए और उसको कार्यान्वित करने का काम कीजिए, तभी आप विकसित पंचायत के रूप में आपकी गिनती हो सके।
0: इस अवसर पर दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार श्रेणी में 34 ग्राम पंचायतों को सम्मानित किया गया। साथ ही नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार श्रेणी में 8 पंचायतों को पुरस्कार प्रदान किए गए। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने

0: कल अलवर जिले के बगड़ राजपूत गांव में खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर आयोजित कृषि गोष्ठी में उन्होंने किसानों को रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से होने वाले नुकसान के प्रति जागरूक करते हुए परंपरागत खेती पद्धति की ओर लौटने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि खेत का स्वास्थ्य सीधे तौर पर मानव स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। रासायनिक उर्वरकों के बहुत अधिक उपयोग से भूमि की उर्वरा शक्ति प्रभावित हो रही है। इस दौरान मंत्री ने कृषि प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कल अपने आवास पर महिला सशक्तिकरण की दिशा में काम कर रही महिलाओं से संवाद किया। इसमें संबल सखी तथा माई भारत के माध्यम से समाज सेवा, कौशल विकास और राष्ट्र निर्माण में योगदान दे रही महिलाएं शामिल हुई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। कौशल विकास, रोजगार, उद्यमिता और नवाचार के क्षेत्र में उन्होंने प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस अवसर पर महिलाओं ने अपने विचार, अनुभव और समाज हित में किए जा रहे प्रयासों को मुख्यमंत्री से साझा किया। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं भर्ती परीक्षा 2026 के 607 पदों के लिए आवेदन आज से शुरू हो रहे हैं। अभ्यर्थी 3 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन इस वर्ष 29 नवंबर को किया जाना प्रस्तावित है। उन्होंने बताया कि शैक्षणिक योग्यता, आवेदन प्रक्रिया, पाठ्यक्रम और अन्य जानकारी आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। गौरतलब है कि इसमें राज्य सेवा के 192 और अधीनस्थ सेवा के 415 पदों पर भर्ती की जानी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के तहत देश में उल्लेखनीय बदलाव आया है। केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में विभिन्न योजनाओं और सुधारों के माध्यम से मध्यम वर्ग के लोगों को सशक्त बनाया है। नई कर व्यवस्था के तहत सालाना 12 लाख रुपए तक कमाने वाले लोगों को कोई आयकर नहीं देना पड़ता। वहीं जीएसटी ने भी कर व्यवस्था को सरल बनाकर और रोजमर्रा की चीजों की लागत कम करके मध्यम वर्ग को राहत पहुंचाई है। 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन ने लाखों लोगों को पक्का घर उपलब्ध कराया है। वहीं आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 43,52,00,000 स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं, जिससे लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा मिली है। इसके अलावा प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना के अंतर्गत जन औषधि केंद्रों के माध्यम से लोगों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाइयां मिल रही हैं। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 पेपर लीक मामले में एसओजी ने उप निरीक्षक दिनेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। एसओजी के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक विशाल बंसल ने बताया कि अदालत ने दिनेश कुमार को 8 जून तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। उन्होंने बताया कि आरोपी लंबे समय से फरार चल रहा था। मामले में उसकी बहन निर्मा कुमारी की तलाश भी अभी जारी है। दोनों ने परीक्षा से पहले हल किया हुआ प्रश्न पत्र हासिल किया और उसी के आधार पर 15 सितंबर 2021 को आयोजित एसआई भर्ती परीक्षा दी। और अब मौसम। प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में तेज अंधड़ और बारिश की गतिविधियां जारी हैं। आज भी कई स्थानों पर बारिश होने के समाचार हैं। सवाई माधोपुर में सुबह से ही मौसम का मिजाज बदला हुआ है और बरसात हो रही है। 12 में शाम से शुरू हुआ बूंदाबांदी का दौर रुक रुक कर आज भी चल रहा है। हमारे भीलवाड़ा संवाददाता ने बताया कि जिला मुख्यालय सहित आसपास के इलाकों में तेज रफ्तार हवा के साथ कुछ देर झमाझम बरसात हुई।
1: बुधवार रात्रि को मौसम में पुनः परिवर्तन हुआ और गुरुवार सुबह भीलवाड़ा जिले के आसीन सम्भूगढ़ और गुलाबरा क्षेत्र में कुछ समय के लिए तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश हुई है, जिसके कारण आम जन को गर्मी से राहत मिली है। आज हुई बारिश के बाद अब किसान आगामी दिनों खरीफ की फसल की बुआई के लिए अपने खलिहानों की हकाई जुताई में जुट जाएंगे। लगातार 3 दिन पूर्व हुई बारिश से तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। सोमदत्त त्रिपाठी, आकाशवाणी समाचार, भीलवाड़ा।
0: मौसम में आए इस बदलाव से तेज गर्मी से लोगों को

0: राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार कई स्थानों पर कल भी दिन और रात के तापमान में गिरावट दर्ज की गई। ज्यादातर हिस्सों में तापमान 40 डिग्री के आसपास बना हुआ है। 43.7 डिग्री सेल्सियस के साथ जैसलमेर सबसे गर्म स्थान रहा। इस बीच रात का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग ने आज भी 16 जिलों के लिए आंधी बारिश का येलो और 16 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस दौरान कहीं कहीं तेज रफ्तार हवाओं के साथ मध्यम से तेज बरसात हो सकती है। वहीं पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं ओले गिरने की भी संभावना है। पाली में आज से 16वीं राज्य स्तरीय जूनियर पुरुष हॉकी प्रतियोगिता शुरू हो रही है। पुलिस लाइन हॉकी मैदान पर शाम को इसका उद्घाटन किया जाएगा। इससे पहले जिला कलेक्टर डॉ. रविंद्र गोस्वामी ने टीम के टी शर्ट्स का विमोचन किया और मैदान का निरीक्षण किया। इस प्रतियोगिता में राज्य के विभिन्न जिलों की 25 टीमें भाग लेंगी। 3 दिन चलने वाली ये स्पर्धा नॉकआउट पद्धति से होगी। वहीं पाली की नीलंजना चौधरी ने जकार्ता में आयोजित इंटरनेशनल रोलर स्पीड स्केटिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण और कांस्य पदक जीता है। जीत के बाद उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतना उनके निरंतर अभ्यास का परिणाम है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पहली विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप आज से अहमदाबाद में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने किसानों से परंपरागत खेती की ओर लौटने का आह्वान किया। राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं भर्ती परीक्षा 2026 के 607 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आज से शुरू हुए। और प्रदेश के ज्यादातर हिस्से तेज अंधड़ और बारिश से प्रभावित, आज 16 जिलों के लिए आंधी बारिश का अलर्ट। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 101.9 मेगाहर्ट्ज पर यह है आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र। सवेरे के 9:10 हो रहे हैं और आप एक बार फिर से शामिल हैं हमारे कार्यक्रम नमस्कार उदयपुर में। आइए सुनते हैं एक खूबसूरत सा गीत।

0: तो जी हाँ, जग घूमने की बात हो रही है और जब घूमने की बात आती है तब हम कहीं ना कहीं यात्रा पर निकल जाते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा। और हमारा जो उदयपुर है बहुत ही खूबसूरत सा है, अरावली पर्वतों के बीच में बना हुआ है और इतनी प्रकृति है, सब तरफ हरियाली है, लेकिन प्रकृति की गोद में स्थित होने वाले श्रद्धालुओं के साथ प्रकृति प्रेमियों के लिए एक पसंदीदा जगह भी है।
0: बिल्कुल, उदयपुर की अरावली पहाड़ियों और घने जंगलों के बीच बसा कुकड़ेश्वर महादेव मंदिर, आज इसकी हम बात कर रहे हैं। एक बेहद ही प्राचीन, रहस्यमय और अलौकिक धार्मिक स्थल है ये। प्रकृति की गोद में स्थित होने के कारण यह स्थान श्रद्धालुओं के साथ साथ प्रकृति प्रेमियों की भी एक पसंदीदा जगह बन गई।
1: बिल्कुल सही का काम है नहीं आपने। ये जो कुकड़ेश्वर का जो मंदिर है और इसको स्थापित शिवलिंग स्वयंभू माना जाता है, यानी किसी इंसान द्वारा बनाया या स्थापित किया हुआ ये नहीं है, बल्कि आदि काल से यहाँ प्रकट हुए थे।
0: जी, नाम के पीछे एक अनोखा रहस्य भी है कि कुकड़ेश्वर नाम कैसे पड़ा। कहा जाता है कि इस घने जंगल में बहुत सारे जंगली मुर्गे, यानी स्थानीय भाषा में अगर कहा जाए तो कुकड़े जो बोलते हैं ना, उसे वे रहा करते थे। मान्यताओं के अनुसार एक बार जब मुगल सेना महाराणा प्रताप को ढूंढते हुए इस तरफ बढ़ रही थी, तब इन जंगली मुर्गों की तेज आवाज़ों के कारण मुगलों का ध्यान भटक गया, वे सतर्क हो गए, जिससे महाराणा प्रताप की जान बच गई।
1: और मंदिर के मुख्य गर्भगृह में प्राचीन शिवलिंग स्थापित है, इसके साथ ही भगवान गणेश, माता पार्वती और नंदी जी की सुंदर मूर्तियां भी विराजमान हैं। साधु संतों की तपस्या के लिए एक यज्ञ वेदी और एक हॉल भी बना हुआ है। यहां वर्तमान में रहने वाले महंत इस पूरे स्थान की देखभाल करते हैं। मंदिर के ठीक बगल में एक प्राचीन प्राकृतिक जलधारा बहती है, जिसे स्थानीय लोग अमर गंगा के नाम से भी जानते हैं। इसका पानी इतना साफ है कि क्रिस्टल क्लियर होता है और इसके अंदर मछलियां भी साफ दिखाई देती हैं। यहाँ का पानी वाकई में इतना साफ है और इतना बहता हुआ जल है कि आप उसको पी सकते हैं।
0: और अगर यहाँ जाने का हम समय की बात करें कि किस समय हम जाएं, तो सबसे अच्छा समय यहाँ जाने के लिए है मानसून का समय, और उसके ठीक बाद में जो बारिश का जो मौसम होता है ना, इस वक्त जब आप जाएंगे तब वहाँ का जो प्राकृतिक जो सुंदरता है उसे आप देखकर दिल आपका गदगद हो जाएगा। बारिश के दिनों में अरावली की पहाड़ियाँ पूरी तरह से यहाँ पे हरी भरी हो जाती हैं, झरने बहने लगते हैं, मंदिर के पास का नाला पूरे वेग से बहता है, जिससे जगह जन्नत जैसी लगती है।
1: बिल्कुल सही कहा। और इसकी दूरी की अगर बात करें तो ये स्टेशन से या सेंटर से 15-18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह मंदिर लखावली पंचायत समिति के अंतर्गत डागियों का गुड़ा क्षेत्र में पहाड़ियों के बीच बसा हुआ है। उदयपुर से बड़गाम होते हुए हाईवे पार करके पराया की भागल वाले रास्ते से यहाँ पहुँचा जा सकता है, और मुख्य सड़क या वाहन पार्किंग से मंदिर पद तक पहुँचने के लिए 500-700 मीटर तक एक छोटा सा, थोड़ा सा कच्चा सा पथरीला रास्ता है। घने पेड़ों के नीचे और प्राकृतिक पत्थरों के बीच से गुजरने वाला यह रास्ता बेहद रोमांचक है।
0: बिल्कुल, अगर आप शांति, आध्यात्म और एडवेंचर का एक साथ अनुभव करना चाहते हैं तो उदयपुर यात्रा के दौरान इस कुकड़ेश्वर महादेव के दर्शन जरूर करें और इस जगह को देखें और समझें और जाएं जरूर, हम यही कहेंगे। और साथ ही साथ जो हमारे जो महादेव जी हैं उन्हें जरूर नमन करें।

0: कामिनी, आपसे एक बात पूछूं?
1: बिल्कुल।
0: कि आप सबसे उठते ही सबसे पहला काम क्या करते हैं?
1: देखिए कि आजकल सुबह उठने की बात हो या रात को सोने की बात हो या कभी भी आप जब खाली बैठे हों, तब जब भी आपका मन या हाथ है ना, वो मोबाइल की तरफ जाता है कि मोबाइल में क्या चल रहा है, मोबाइल में क्या मैसेज आया है, मोबाइल में कौन सी रील देखें, कौन सा फिल्म हम चुनें या कौन सा सीरियल देखें।
0: कई बार ऐसा भी हो जाता है कि हमारे को मतलब ये सब चीज़ें देखने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन क्या करें, आदत पड़ गई है मोबाइल की। लेकिन इसके फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा हैं। आज का समय वो समय है जब कुछ भी किसी भी काम को लेकर अब परेशानी नहीं आती। छुट्टियों में कहीं जाना है, अनजान जगह के बारे में, वहाँ के मौसम के बारे में, वहाँ जाने का रास्ता, होटल, कैब, पेमेंट, ऑनलाइन शॉपिंग, हर तरह की जानकारी अब बहुत आसान हो चुकी है। हर तरह से हमारी मदद करता है AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज के समय में ये हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा बन चुका है। तो जागरूकता सेगमेंट में हम बात करेंगे AI और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में।
1: बिल्कुल, AI जो है हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक अभिन्न अंग बन चुका है। सुबह उठकर मोबाइल में फेस लॉक खोलने से लेकर रात को सोने से पहले तक हम अपनी हर चीज़ें चुनना और उसमें देखना यही करते हैं।
0: और AI की वजह से हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या क्या आसान हुआ है। अलेक्सा है या सिरी, सुबह 5 बजे का अलार्म लगाओ और या AI की नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग तकनीक पर काम करता है। गीज़र, AC

0: स्मार्ट लाइट्स इनके तापमान को और रोशनी को भी एडजस्ट करता है।
1: बिल्कुल, साथ ही साथ वॉइस असिस्टेंट जो है, गूगल असिस्टेंट या सीरी, जो बोलकर काम करने में हमें बहुत ज़्यादा मदद कर रहे हैं आजकल।
0: और जब हम टाइप करते हैं तो कोई कीबोर्ड पहले से अनुमान लगा लेता है कि हम अगला शब्द क्या लिखने वाले हैं और स्पेलिंग को भी ये सही कर देता है। आप जो भी वीडियो या पोस्ट देखना पसंद करते हैं उसी तरह की कई चीज़ें आपके स्क्रीन पर दिखाई देती रहती हैं। जैसे आप मेकअप करना सीखना चाहती हैं, या कोई रेसिपी देखना चाहती हैं, या लेटेस्ट फैशन की जानकारी चाहती हैं, तो अपने आप जो अपना देखना चाहती हैं वो आपको उसमें स्क्रीन पर दिखती रहेगी। इसे इंटरप्रेटिव सिस्टम भी कहते हैं।
1: साथ ही जब हमें कहीं जाना हो तो सबसे छोटा और तेज़ रास्ता गूगल मैप्स की मदद से हमें AI दे देता है।
0: और स्टूडेंट्स कठिन विषयों को आसान भाषा में समझ रहे हैं, कोडिंग या निबंध लिखने में अपनी पूरी पढ़ाई इसके माध्यम से ही कर रहे हैं। हाथों में बंधी ये स्मार्ट वॉच से हार्ट रेट, नींद के पैटर्न और बर्न की कैलोरी के बारे में भी आप जान सकते हैं। आप सारे दिन में कितने कदम चले ये भी जानकारी आपको मिल सकती है।
1: जी, साथ ही AI की मदद से हमें ईमेल कंटेंट राइटिंग, ड्राफ्ट करना, लेख लिखना या कोई रिपोर्ट तैयार करना, ये भी हम बहुत आसानी से AI की मदद से कर लेते हैं।
0: पुरानी कोई फिल्म देखना चाहते हो या पुराने गीत सुनना चाहते हो, ऑनलाइन शॉपिंग, कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हो, आपको उस शहर के मौसम में घूमने की जगह और रहने के सस्ते महंगे होटल्स, कैब बुकिंग, टिकट्स बुकिंग, सब सुविधाएं आपको इसके माध्यम से मिल जाती हैं। लेकिन हर चीज़ के फ़ायदे के साथ साथ कुछ सावधानियाँ भी रखनी ज़रूरी होती है। किसी भी आने वाले फर्जी फ़ोन या लिंक मैसेज पर विश्वास न करें। AI हमारे जीवन का हिस्सा है, लेकिन इसके गुलाम न बने। इसे एक समझदार टूल की तरह इस्तेमाल करें ताकि उत्पादकता बढ़े और जीवन बेहतर बन सके।
1: जी, स्वास्थ्य और फिटनेस में भी स्मार्ट वॉचेज AI की जो होती हैं वो हमें सटीक जानकारी देती हैं। साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में भी AI हमें बहुत मदद करता है। तो AI के जो हम साथ चल रहे हैं या AI जो हमारे साथ चल रहा है, वो हमारी रोज़मर्रा की जो जीवन शैली है उसमें एक हमारा साथी सा बन गया है। तो ऐसा लगता है कि AI के लिए तो हम ये कहें कि कोई तुम सा नहीं।
0: और इसके साथ ही अपने श्रोताओं से लेते हैं इजाज़त और प्रोग्राम का आखिरी गीत सुनवाते हैं श्रोताओं को। तो इस कार्यक्रम में मैं थी आपके साथ अनीता, और मेरे साथ थी
1: मैं थी कामिनी।
0: तो दीजिए इजाज़त।
1: नमस्कार।

नमस्कार उदयपुर, ये कार्यक्रम अभी आपने सुना आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से। सवेरे के 9:30 हो रहे हैं, लीजिए अब सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओ, मैं हूँ विमलेश।
1: और मैं हूँ अजीत। स्वागत है आप सबका उमंग कार्यक्रम में। आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुंदर विचार जिसे हमें भेजा है गांव गणेश धाम परसुली जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी जी ने। लिखते हैं,
2: है काम आदमी का दूसरे के काम आना।
1: क्या बात है काम आदमी का दूसरे के काम आना। धन्यवाद आप सबका इतने सुंदर विचार को भेजने के लिए। अब आइए सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है ग्राम ममना सरीला जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा जी का।
2: और अगला संदेश मिला है महाराष्ट्र से प्रथमेश हेड़के जी का। उन्होंने लिखा है, मुझे एनसीईआरटी का उमंग प्रोग्राम बहुत पसंद है, हर दिन हर बार हर रोज सुनता हूँ।
1: बहुत बहुत धन्यवाद इतने प्यारे संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है तहसील ठियोग जिला शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान जी का।
2: इलाहाबाद से रेशमा नाज डोम और बेबी अंसारी डोम।
1: आप सबको हमारा आभार संदेश भेजने के लिए। श्रोताओं संदेश जरूर भेजिए क्योंकि इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। और अब प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी। साथियों इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं पृथ्वी के प्रमुख मरुस्थलों की। कल हमारी चर्चा का विषय था गोभी का शीत मरुस्थल।
2: इन कड़ियों में हमने विशेष रूप से ये जाना था कि मरुस्थल या मरुभूम कहलाने के लिए किसी क्षेत्र में रेत ही रेत हो या बहुत गर्मी हो ऐसा बिल्कुल नहीं है।
1: जी हाँ श्रोताओं, मरुभूमि या मरुस्थल की परिभाषा उस क्षेत्र की निर्जलता या अति अल्प वृष्टि पर निर्भर करती है। तो विमलेश जी, आज हम किस शीत मरुस्थल की चर्चा करने जा रहे हैं? मेरे विचार से क्यों ना भारत के शीत मरुस्थलों की चर्चा की जाए।
2: अजीत जी, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं सोच रही थी कि आज हम भारत के शीत मरुस्थल की चर्चा करते हैं जो लद्दाख में है। आपको याद है एनसीईआरटी की ओर से मीडिया प्रशिक्षण कार्यक्रम में हम भी वहां जा चुके हैं।
1: जी हाँ, हमने उस इलाके को देखा भी है।
2: जी बिल्कुल, मुझे भी याद है। तो श्रोताओ, आज हम चर्चा करेंगे लद्दाख के शीत मरुस्थल की। इसे कोल्ड डेजर्ट भी कहते हैं। जैसा कि हमने सुना था, मरुस्थल का अर्थ सिर्फ रेत नहीं होता बल्कि वो जगह मरुस्थल कहलाती है जहां वर्षा बहुत कम होती है। तो श्रोताओं आपको बता दें कि लद्दाख में सालाना वर्षा बहुत कम होती है, लगभग 50 से 100 मिलीमीटर के लगभग।
1: लेकिन विमलेश जी ऐसा क्यों है? मेरा मतलब है कि वहाँ यानी लद्दाख में इतनी कम वर्षा क्यों होती है?
2: अजीत जी, इसका कारण यह है कि लद्दाख का क्षेत्र हिमालय पर्वत की रेन शेडो यानी वर्षा छाया में स्थित है। हिमालय पर्वत यहाँ आने वाली वर्षा को रोकता है। अजीत जी, मुझे तो ये भी याद है कि वहाँ जाने पर हमें शुरू में सांस लेने में भी थोड़ी कठिनाई हुई थी।
1: जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि वहाँ की हवा अधिक ऊंचाई के कारण बहुत पतली होती है और ऑक्सीजन कम मात्रा में मिलती है। इसलिए पहली बार जाने वालों को कुछ विशेष सलाह दी जाती है। बताइए क्या सलाह दी जाती है?
2: जी, वहाँ पहली बार जाने वाले लोगों को सलाह दी जाती है कि तेज न चलें, ज्यादा ऊंची चढ़ाई न चढ़ें और भारी शारीरिक काम जैसे ट्रैकिंग वगैरह एकदम से उत्साह में आकर न करें।
1: जी,
2: पहले वहाँ के वातावरण में अपने शरीर को अनुकूलित करें और फिर धीरे धीरे सामान्य गति में आएं।
1: जी बिल्कुल सही। श्रोताओं, यहाँ का तापमान सर्दियों में -20 डिग्री सेल्सियस या इससे भी नीचे जा सकता है।
2: जी,
1: लेकिन गर्मियों के दिनों में धूप तेज लगती है।
2: जी,
1: लद्दाख

0: का अर्थ ही है ऊंचे दर्रों वाली भूमि। श्रोता, एक बात और आपको बता दें कि यह दुनिया के सबसे ऊंचे मोटरेबल मार्गों में गिना जाता है।
1: अब बात करते हैं यहाँ पाए जाने वाले जीवों की, खास तौर से यहाँ याक, स्नो लेपर्ड, हिमालयी भेड़िया और नीली भेड़ पाई जाती है। और हाँ, लद्दाख की झीलें पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं, जैसे पेंगोंग झील। श्रोताओ, और अब जानते हैं यहाँ के लोग कैसे रहते हैं और क्या खाते हैं। अजीत जी, अब आपकी बारी।
0: तो विमलेश जी, यहाँ के मुख्य भोजन है स्कू और थुकपा।
1: जी,
0: ये गेहूं के आटे से बना होता है। पावा भी यहाँ बहुत लोकप्रिय है, जो जौ के सत्तू से बनाया जाता है। यहाँ की प्रसिद्ध मिठाई खुबानी से बनती है। यहाँ लोग अपने घर मोटी मिट्टी और पत्थरों से बनाते हैं, ताकि घरों में गर्मी बनी रहे। जहाँ तक खेती की बात है, यहाँ विशेष रूप से जौ और मटर जैसी फसलें उगाई जाती हैं।
1: अजीत जी, एक और रोचक बात श्रोताओं से साझा करना चाहती हूँ।
0: हाँ, जरूर कीजिए।
1: वो ये कि लद्दाख में एक पेड़ बहुत अधिक पाया जाता है, जिसे विलो कहा जाता है।
0: जी,
1: इनकी लकड़ी हल्की, मजबूत और लचीली होती है। इसी लकड़ी से क्रिकेट के बल्ले बनाए जाते हैं। दुनिया भर में इस लकड़ी की बहुत मांग है, इसलिए लद्दाख में इसकी खेती भी की जाती है।
0: जी, ये तो आपने बड़ी रोचक जानकारी हमें दी। विमलेश जी, आपको याद है जब हम वहाँ गए थे, मैग्नेटिक हिल?
1: बिल्कुल याद है।
0: जहाँ यदि वाहनों को बंद भी कर दिया जाए या न्यूट्रल गियर में भी रखा जाए तो वो खिसकने लगते हैं।
1: बिल्कुल।
0: क्या रहस्य है इसका, जरा श्रोताओं को बताइए।
1: अजीत जी, ये जगह लेह कारगिल मार्ग पर स्थित है। हमने भी तो इसका अनुभव किया था।
0: हाँ?
1: लोग अक्सर सोचते हैं कि वहाँ पहाड़ियों में कोई चुंबकीय शक्ति है जो वाहनों को खींचती है, लेकिन सच्चाई ये है कि वैज्ञानिकों के अनुसार वास्तव में वाहन वहाँ अपने आप नहीं चलते। ये एक दृष्टि भ्रम या ऑप्टिकल इल्यूजन है।
0: जी श्रोताओ, दरअसल बात यह है कि वहाँ की सड़क की बनावट ही ऐसी है कि जो सड़क हल्की ढलान पर नीचे जा रही होती है, वो आंखों को ऊपर ऊपर जाती दिखाई पड़ती है। इसी दृष्टि भ्रम से ऐसा लगता है कि वाहन अपने आप सरक रहे हैं। एक बात और आपको बता दें कि यहाँ से कुछ ही दूरी पर गुरुद्वारा पत्थर साहिब है, जो एक दर्शनीय स्थान है।
1: श्रोताओ, लद्दाख को लिटिल तिब्बत भी कहा जाता है। यहाँ बौद्ध संस्कृति, मठ, प्रार्थना चक्र और रंग बिरंगे खूबसूरत झंडे देखे जा सकते हैं। और तो और, सिंधु घाटी की सभ्यता को पालने वाली सिंधु नदी लद्दाख से ही गुजरती है। श्रोताओ, इस नदी को देखना भी हमारे लिए कभी न भूलने वाला अनुभव था।
0: जी, सुंदर नीला आकाश, रात में असंख्य चमकते हुए तारे,
1: जी,
0: रेत, बर्फ, सूखे पहाड़, झीलें और वहाँ की आध्यात्मिक संस्कृति। जब हम इन सारी बातों को देखते हैं तो हमें क्या लगता है विमलेश जी?
1: कि भारत के शीत मरुस्थल लद्दाख में हमें एक साथ मिलते हैं।
0: तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की जानकारी भारत के प्रसिद्ध शीत मरुस्थल लद्दाख की।
1: जी,
0: आशा है कि आपको ये जानकारी जरूर पसंद आई होगी। तो अब सुनिए आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से। प्रश्न है,
1: लद्दाख में बहुत अधिक मात्रा में पाए जाने वाले उस पेड़ का नाम बताइए जिससे क्रिकेट के बल्ले या बैट बनाए जाते हैं। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: लद्दाख में बहुत अधिक मात्रा में पाए जाने वाले उस पेड़ का नाम बताइए जिससे क्रिकेट के बल्ले या बैट बनाए जाते हैं। भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर, और आप हमारे ईमेल पर भी अपने संदेश या प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता नोट कर लीजिए। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। और हाँ,
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: और श्रोताओ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूपांतर यानी ऑडियो बुक्स सुनना चाहते हैं तो इन्हें आप NCERT यूट्यूब ऑफिशियल चैनल या दीक्षा पर सुन सकते हैं। दीक्षा पोर्टल पर आप पढ़ पाएंगे ढेर सारी शैक्षिक सामग्री और सुन व देख पाएंगे हमारे ऑडियो वीडियो कार्यक्रम भी।
1: जी, और अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है
0: भारत अर्थात इंडिया।
1: कक्षा 6 की समाज की अध्ययन की पाठ्य पुस्तक पर आधारित इस कार्यक्रम में रोचक ढंग से भारत देश के विभिन्न नामों के बारे में बताया गया है और उन नामों के पीछे की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का भी सप्रसंग विवरण किया गया है।

0: भारत अर्थात इंडिया।
1: दोस्तों, एक नजर अतीत की ओर श्रृंखला में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं दिल्ली के अंबेडकर स्टेडियम, जहां हो रहा है भारत और बांग्लादेश के बीच क्रिकेट मैच।
2: Wonderful shot through the deep. The scoop shot, it gets through. It's a big one. It's a huge boundary.

0: goes wide through the offside. He's got him. That's it. India win.
1: अनुष्का भीड़ की बातों को ध्यान से सुन रही थी। वो सोचने लगी,
2: हमारे देश के इतने सारे नाम, कोई इंडिया कहता है, कोई भारत कहता है, तो कोई हिंदुस्तान भी कहता है।
1: दोस्तों, अनुष्का का कौतूहल स्वाभाविक था। क्या आपने भी कभी इस प्रकार से सोचा? अगर सोचा तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं सोचा तो चलिए आज इस मनोरंजक और रोचक सच्चाई से पर्दा उठाते हैं। अनुष्का अपने स्कूल गई, लेकिन ये बात उसके दिमाग से नहीं गई थी। उसने ये बात अपनी सहेली जिशा से साझा की। तय ये हुआ कि वो अपने हिस्ट्री के अध्यापक से बात करेंगे। वो बात ध्यान से सुनते हैं और बोलने का मौका भी देते हैं।
3: सर, क्या हम अंदर आ सकते हैं?
4: कौन? ओ, अनुष्का, जिशा, तुम दोनों आ जाओ, आ जाओ, अंदर आ जाओ, आ जाओ। शाबाश।
3: क्या अभी आपके पास समय होगा?
4: तुम लोग बिल्कुल ठीक समय पर आए हो।
3: सर, उस दिन हम क्रिकेट मैच देखने गए थे।
4: हाँ, वो बांग्लादेश और भारत का।
3: जी वही। सर, उस दिन लोग वहाँ कुछ बातें कर रहे थे।
4: अच्छा।
3: सर, कोई कहता था कि इंडिया जीतेगा, तो कोई कहता कि भारत ने मैच जीता।
4: और
3: कोई कहता था कि हिंदुस्तान की टीम ने कमाल कर दिया। और
4: हाँ, बोलो।
3: सर, हमारी पुस्तक में देश का नाम भारतवर्ष भी तो है।
4: बिल्कुल।
3: लेकिन सर, दूसरे देशों के इतने सारे नाम तो नहीं होते। बांग्लादेश, पाकिस्तान, जापान, अमेरिका, इंग्लैंड जैसे देशों के नाम तो एक ही है। फिर हमारे देश के इतने ढेर सारे नाम क्यों हैं?
4: बहुत अच्छा सवाल। देखो बच्चों, आज का भारत एक आधुनिक राष्ट्र है, लेकिन ये आज से 500, 2000 या 5000 वर्ष पहले ऐसा नहीं था।
3: 5000 वर्ष पहले?
4: हाँ, इसके लिए हमें हजारों वर्ष पहले के इतिहास में जाना होगा।
3: जी, लेकिन हमें हजारों वर्ष पहले की जानकारी कैसे मिलेगी?
4: अच्छा, ये बताओ, तुमने ऋग्वेद का नाम सुना है?
3: जी सर, सुना तो है। ये एक प्राचीन ग्रंथ है।
4: प्राचीन ही नहीं, ऋग्वेद भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ है।
3: अच्छा।
4: इस ग्रंथ से हमें अपने देश के बारे में बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिल जाती हैं।
3: जैसे?
4: जैसे इस ग्रंथ के अनुसार हमारे देश के उत्तर पश्चिम भाग में एक वैदिक समूह निवास करता था।
3: वैदिक समूह?
4: हाँ, वैदिक समूह। इस समूह के ऋषियों और मुनियों द्वारा वैदिक ऋचाओं की रचना हुई। इस वैदिक समूह का नाम भरत था।
3: भरत? भरत नाम तो हमने सुना है।
4: अच्छा, भाई भरत नाम से बाद में बहुत से राजाओं को भी जाना गया।
3: ओह, भरत। अच्छा, तो ये बात है।
4: हाँ।
3: तो क्या इसी भरत नाम से देश का नाम भारत पड़ा?
4: बिल्कुल ठीक कहा तुमने अनुष्का, इसी नाम से देश का नाम भारत पड़ा, जिसे बाद में भारतवर्ष भी कहा जाने लगा। ये वैदिक समूह भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में यानी सिंधु घाटी क्षेत्र में निवास करता था। ऋग्वेद में इस भाग को सप्त सैंधव अर्थात सात नदियों की भूमि कहा गया है।
3: अच्छा।
4: हाँ, सैंधव शब्द सिंधु शब्द से आया है।
3: मैंने पढ़ा था कि सिंधु का मतलब होता है नदी।
4: बिल्कुल सही, इसका तात्पर्य सिंधु नदी से ही है। अच्छा, ये तो बात हुई ऋग्वेद की। अब सिंधु के बारे में एक और महत्वपूर्ण बात।
3: वो क्या सर?
4: वो ये कि छठी शताब्दी पूर्व एक फारसी सम्राट ने सैनिक अभियान किया और सिंधु नदी के इलाके पर नियंत्रण कर लिया। अपने लेखों और शिलालेखों में फारसियों ने भारत के सिंधु इलाके को हिद, हिदु या हिंदू कहा है।
3: फारसियों ने सिंधु को हिद, हिदु या हिंदू कहा है। भला ऐसा क्यों?
4: ऐसा इसलिए क्योंकि फारसी भाषा में सिंधु

0: शब्द का रूपांतरण हिंदू होता है।
1: अच्छा।
0: हाँ, क्योंकि स अक्षर उनकी भाषा में है ही नहीं।
2: है ही नहीं?
0: हाँ।
2: ऐसा कैसे?
0: ऐसा है, स की जगह उन्होंने ह का प्रयोग किया।
2: ओ।
0: हाँ, हिंदू। तो सिंधु रूपांतरित होकर बन गया
1: हिंदू,
0: हिंदू। शाबाश। लेकिन यहाँ ये जानना बहुत जरूरी है कि हिंदू शब्द से उनका तात्पर्य हिंदू धर्म से नहीं था।
2: तो फिर?
0: हिंदू शब्द एक भौगोलिक शब्द था जो सिंधु नदी या सिंधु की घाटी

0: नाम तुम्हें बताए?
1: आपने अब तक 3 ग्रंथों के नाम बताए।
0: अच्छा, तो कौन कौन से हैं वो 3 ग्रंथ?
1: सर, ऋग्वेद।
0: माल कर दिया तुमने, बहुत अच्छे। विष्णु पुराण में बच्चों हम पढ़ते हैं, वो देश जो समुद्र के उत्तर में और हिमाच्छादित
1: का भी नाम लिया था।
0: बिल्कुल,
1: क्या उससे भी हमारे देश की जानकारी मिलती है?
0: देखो, पहली बात तो ये है कि महाभारत भारत का।
1: वो क्या?
0: बताता हूँ बच्चों, वो है जम्बूद्वीप।
1: जम्बूद्वीप?
0: हाँ, जम्बूद्वीप। महाभारत में भारतवर्ष को जम्बूद्वीप भी कहा गया है।
1: जम्बूद्वीप?
0: हाँ।
1: ये नाम भला क्यों?
0: देखो, जम्बू का अर्थ होता है जामुन। इसे जम्बुल भी कहते हैं। जामुन का पेड़ उन दिनों इस भूभाग पर बहुत अधिक पाया जाता था, इसलिए भारत को जम्बूद्वीप भी कहा गया।
1: अच्छा।
0: हाँ, सम्राट अशोक ने भी अपने शिलालेखों में संपूर्ण भारत का वर्णन जम्बूद्वीप के नाम से भी किया है।
1: सर, मैंने सुना है कि उन दिनों हमारा देश बहुत बड़ा था।
0: बिल्कुल ठीक तुमने सुना है। उन दिनों भारत में आज के बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान भी सम्मिलित थे।
1: इतने सारे देश?
0: हाँ, और शायद इसी कारण से भारत को महाभारत भी कहा गया है।
1: अच्छा। सर, अभी तक हमने जाना कि हमारे देश को भारत, भारतवर्ष और जम्बूद्वीप कहा जाता था। सर, इंडिया और हिंदुस्तान भी तो हमारे देश को कहा जाता है।
0: बिल्कुल।
1: ये नाम कैसे आए?
0: लगता है सब कुछ जानकारी मानोगे। चलो ठीक है, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि इंडिया नाम कैसे आया। देखो बच्चों, इंडिया नाम इंडस से आया है। तुम्हें याद है ना कि सिंधु नदी को अंग्रेजी में इंडस रिवर कहते हैं?
1: जी सर।
0: हाँ, तो अभी मैंने बताया था कि भारत में फारसी लोग आए, लेकिन आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व यूनानियों का भी हमारे देश में आगमन हुआ।
1: अच्छा।
0: हाँ, यूनानी जब हमारे देश में आए तो उन्होंने सबसे पहले सिंधु नदी को पार किया।
1: ओ।
0: और सिंधु नदी को इंडोई या इंडिके कहा।
1: ऐसा क्यों कहा उन्होंने?
0: उनके साथ भी भाषा की समस्या थी।
1: ओ।
0: हाँ।
1: तो इसका मतलब है कि यूनानियों के लिए सिंधु कहना मुश्किल था और इंडो या इंडिके कहना ज्यादा आसान था।
0: हाँ। और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। अच्छा, तुम्हें एक बात और बता दूं, और वो ये कि प्राचीन यूनानी लोग भारत में रहने वालों को इंडोई कहते थे।
1: अच्छा। इंडोई यानी इंडिया के रहने वाले इंडोई कहे जाते थे।
0: बिल्कुल।
1: तो इस तरह से नाम पड़ा इंडिया।
0: हाँ।
1: और हिंदुस्तान?
0: देखो, हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग तुर्क और मुगलों ने किया। वो जिन इलाकों से आए थे उन इलाकों के नाम के आगे प्रायः स्थान शब्द हुआ करता था, जैसे
1: अफगानिस्तान।
0: बिल्कुल सही।
1: बलूचिस्तान।
0: सही।
1: तुर्किस्तान।
0: बिल्कुल। और उज़्बेकिस्तान वगैरह वगैरह। और बच्चों, शायद स्थान का अर्थ स्थान से रहा हो।
1: सर, अब हमें हमारे सवालों का हल मिल गया।
0: अच्छा?
1: हाँ, बिल्कुल।
0: अरे वाह, क्या बात है।
1: सर, आपने हमें बड़ी मजेदार जानकारी दी। हमारे देश के इतने सारे नाम हैं, लेकिन हमें किस नाम का प्रयोग करना चाहिए?
0: बड़ा अच्छा प्रश्न किया तुमने। देखो, हमारे संविधान की अंग्रेजी प्रति के पहले अनुच्छेद में ही ये स्पष्ट करते हुए लिखा गया है, इंडिया दैट इज भारत। हिंदी में कहा गया है, इंडिया जो कि भारत है।
1: अच्छा।
0: हाँ। अच्छा, ये बताओ, तुम्हें संविधान की प्रस्तावना याद है?
1: जी, प्रस्तावना की शुरुआत में कहा गया है, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया।
0: बहुत अच्छे। तो हमारे देश का नाम हुआ भारत, जिसे इंडिया भी कहते हैं। समझ में आया?
1: जी सर।
0: शाबाश। अच्छा, आज जो भी तुमने जाना है, समझा है, उस जानकारी को तुम कल क्लास में सबके साथ बांटोगे।
1: सबके साथ?
0: हाँ, सबके साथ।
2: तो साथियों, कैसी लगी आपको अपने प्यारे देश भारत अर्थात इंडिया के विषय में ये जानकारी? अच्छी लगी ना? इतने सारे नाम शायद ही किसी और देश के रहे होंगे। आज हमने जाना कि हमारे देश का नाम है भारत।

0: अर्थात इंडिया।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम भारत अर्थात इंडिया, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम पहली उड़ान।
2: इस कार्यक्रम में विश्व इतिहास में मनुष्य की पहली उड़ान के बारे में रोचक जानकारी दी गई है और बताया गया है कि कैसे गर्म गैस के गुब्बारे पर मनुष्य ने पहली बार उड़ान भरी। इस घटना ने भविष्य में आधुनिक वायुयानों के आविष्कार का मार्ग प्रशस्त किया।
3: आपने आकाश में उड़ते पक्षियों को तो देखा ही होगा, देखा है ना? पक्षियों को उड़ते हुए देखकर आकाश में उड़ने की लालसा मनुष्य के मन में शुरू से ही रही है, और आज मनुष्य रॉकेट, अंतरिक्ष यानों और हवाई जहाज की सहायता से आकाश में उड़ सकता है। मगर ये कैसे संभव हुआ, आइए आज हम आपको बताते हैं। आज से लगभग 200 वर्ष पहले की बात है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में दो भाई रहते थे, जोसेफ और स्टीफन, जिनकी आयु होगी लगभग 15-16 वर्ष। दोनों भाई अक्सर आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को देखते और हवा में उड़ने की लालसा किया करते। एक दिन की बात है, दोनों भाई घर में खाना खा रहे थे।
4: भाई वाह, आज तो मजा आ गया। कितना बढ़िया खाना बनाया है माँ ने, क्यों जोसेफ?
5: हाँ स्टीफन भाई, हमारी माँ से बढ़िया खाना भला और कोई बना भी सकता है?
6: तुम लोग खाना खाओगे या बातें ही करते रहोगे? जल्दी से खा लो बेटा, मुझे अभी कबूतरों को भी दाना पानी देना है।
5: अच्छा माँ, क्या मैं एक बात पूछ सकता हूँ?
6: हाँ पूछो बेटा।
5: क्या हम भी कबूतर की तरह नहीं उड़ सकते?
6: बेटा भला हम कैसे उड़ सकते हैं, हमारे पास पंख थोड़े ही हैं।
5: लेकिन माँ,
6: ओफो, तुमसे बातें करते करते मैं तो भूल ही गई कि चूल्हा भी बुझ रहा है। ठहरो जरा, जोसेफ
5: जी
6: जरा वो फूकनी तो देना बेटा।
5: अच्छा माँ, ये लो माँ।
6: ला।
4: ओ, कितना धुआं भर गया है कमरे में, जल्दी करो माँ।
5: मिल गया, हाँ मिल गया मुझे। अरे मिल गया मुझे।
6: क्या मिल गया
5: मुझे? माँ माँ ओ माँ,
6: क्या मिल गया? क्या मिल गया?
5: मुझे मिल गया।
4: क्या मिल गया भाई, क्या मिल गया?
6: सब क्या हो गया तुम्हें बेटा, बताओ तो सही क्या हो गया है?
5: माँ मुझे उड़ने का तरीका मिल गया। हाँ उड़ने का तरीका मिल गया।
4: जोसेफ होश में आओ भाई, क्या हुआ?
5: स्टीफन स्टीफन, माँ माँ माँ, सर इस कमरे के धुएं को देखो। हाँ इस कमरे के धुएं को देखो, इसमें इसमें क्या उड़ रहा है बताओ? बताओ उसमें क्या उड़ रहा है?
6: कुछ भी तो नहीं।
4: कुछ भी तो नहीं है।
5: ओ नहीं स्टीफन नहीं, ध्यान से देखो। हाँ ध्यान से देखो, क्या धुएं के साथ राख नहीं उड़ रही है? उड़ रही है ना?
4: वो तो है मगर
5: इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ स्टीफन कि धुआं राख को उड़ा सकता है।
4: हाँ हाँ हाँ हाँ, कहते तो तुम ठीक हो।
5: तो फिर क्यों ना हम कुछ प्रयोग करें, हैं?
4: हाँ
5: मुझे तो लगता है कि अगर हम किसी हल्के लिफाफे में धुआं भर दें तो वो जरूर ऊपर की ओर उड़ेगा।
4: हाँ हाँ हाँ हाँ, ये बात तो है। चलो चलो जोसेफ चलो, देखते हैं।
5: ठीक है आओ मेरे साथ।
6: अरे सुनो, अरे खाना तो खाते जाओ स्टीफन। जोसेफ सुनो तो,
3: और फिर क्या था, दोनों भाइयों ने झटपट कई प्रयोग कर डाले। इसमें कई बार उन्हें असफलता हाथ लगी, लेकिन वो पूरी लगन से अपने काम में जुटे रहे। और एक दिन सचमुच धुएं से भरा लिफाफा छत से जा टकराया। इस प्रयोग की सफलता से उत्साहित होकर दोनों भाई और अधिक परिश्रम से अपने प्रयोग करते रहे। उनकी योजना थी एक बड़ा गुब्बारा बनाकर उसे उड़ाने की, और आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई, उन्होंने एक ऐसा गुब्बारा बना ही लिया। सन 1783 सितंबर का महीना था। दोनों

0: भाई एक बड़े मैदान में अपने बनाए हुए गुब्बारे के पास खड़े थे। इस करतब को देखने के लिए मैदान में भारी भीड़ जमा थी।
1: अरे अरे
2: गुब्बारा गुब्बारा कहाँ उड़ेगा?
3: क्या बात है दोस्त, यहाँ तो बड़ी भीड़ है।
4: हाँ भाई भीड़ तो है,
5: लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि ये लड़के मजाक ही कर रहे हैं। अरे यार भला हवा में कोई चीज उड़ सकती है क्या?
3: अभी पता चल जाएगा, पर यहाँ तो इतनी भीड़ है कि इस तरफ से कुछ भी साफ साफ नहीं दिख पाएगा।
4: तो चलो उस तरफ चलते हैं, उधर भीड़ जरा कम है।
3: हाँ, आओ, आओ, यही ठीक रहेगा। आओ चलो।
5: भला कोई चीज उड़
1: नहीं सकती।
4: अरे भाई साहब जरा रास्ता दीजिए, आगे जाने
3: दीजिए। भाई साहब हट जाइए। आ गए आ गए, यहाँ से हम सब कुछ साफ साफ देख सकते हैं।
4: अरे अरे वो देखो वो सामने एक बड़ा सा गुब्बारा रस्सी से बंधा हुआ है।
3: अरे ये क्या, जोसेफ और स्टीफन गुब्बारे से एक टोकरे को बांध रहे हैं। वो देखो टोकरे में। हाँ
4: अरे अरे टोकरे में तो एक भेड़ है। अरे वो देखो एक मुर्गा और साथ में एक बत्तख भी है।
3: हाँ, क्या ये भी गुब्बारे के साथ उड़ेंगे?
4: दोस्त लगता तो कुछ ऐसा ही है। अरे अरे अरे अरे वो देखो स्टीफन हाथ से कुछ इशारा कर रहा है।
3: हाँ, और एक आदमी गुब्बारे की रस्सी खोल रहा है।
4: अरे अरे अरे वो गुब्बारा तो ऊपर की ओर जा रहा है। अरे
3: कमाल कर दिया
4: बच्चों ने। ये क्या हो रहा है, कहीं मेरी आंखें धोखा तो नहीं खा रही है? अरे देखो वो गुब्बारा तो वाकई ऊपर जा रहा है।
3: अरे सचमुच उड़ रहा है, सचमुच।
4: अरे वाह, अरे यार ये तो कमाल हो गया।
3: बहुत अच्छे, बहुत। देखो गुब्बारा बहुत ऊंचा चला गया।
4: अरे जबरदस्त, अरे इन दोनों लड़कों ने कमाल दिखा दिया, आज तक ऐसा नहीं हुआ।
3: वो देखो वो देखो गुब्बारा नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा, उधर उधर जा रहा है। देखो पेड़ों की तरफ,
4: अरे
3: देखो,
4: अरे अरे वो पेड़ों की तरफ जा रहा है। अरे बाप रे, अरे वो पेड़ से जाकर टकरा गया। अरे गिर गया, अरे गिर गया।
0: हाँ साथियों, ये थी जोसेफ और स्टीफन की पहली उड़ान। क्या आप जानते हैं ये गुब्बारा लगभग 8 मिनट तक हवा में उड़ा और बाद में एक पेड़ से जा टकराया। और हाँ, जिस रस्सी से टोकरा बंधा हुआ था वो रस्सी भी टूट गई और सभी यात्री धड़ाम से नीचे आ गिरे। सिर्फ मुर्गे का एक पंख टूटा, शेष यात्री यानी भेड़ और बतख बिल्कुल ठीक थे। ठीक इसके 2 महीने बाद यानी नवंबर सन 1783 में जोसेफ और स्टीफन ने एक गुब्बारा और उड़ाया, जिस पर खुद उन्होंने उड़ान भरी। ये गुब्बारा लगभग 900 मीटर ऊंचा उड़ा और इसने 2 किलोमीटर की यात्रा की। इस तरह शुरू हुआ उड्डयन का युग। लेकिन गुब्बारे में उड़ना बहुत जोखिम का काम था। तेज हवा गुब्बारे को किसी भी दिशा में उड़ा ले जाती थी। कई बार मनुष्य को इस उड़ान में अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ता था। लेकिन मनुष्य ने हार नहीं मानी और वो इस दिशा में खोज करता रहा। आखिर में अमेरिका के 2 भाइयों विल्बर और ऑलिवर राइट, जिन्हें हम राइट ब्रदर्स के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने हवाई जहाज का एक ऐसा नमूना विकसित किया जो पेट्रोल से उड़ सकता था। और इस तरह साकार हुआ मनुष्य का हवा में उड़ने का स्वप्न।
6: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पहली उड़ान, और अब इसी के साथ हमारा आज का प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
7: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
6: नमस्कार, नमस्कार।
8: उमंग उमंग उमंग उमंग
9: उमंग एनसीईआरटी का ये प्रायोजित कार्यक्रम अभी आपने सुना। आकाशवाणी का ये उदयपुर केंद्र है। सवेरे के ठीक 10 बज रहे

आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम शीर्षक पर आधारित। और शीर्षक गीत का ये कार्यक्रम आज बेस्ड है शब्द मिलने पर। तो मिलकर, मिलना, मिलो, ये मिलना मिलाना ही आज का हमारा शीर्षक है। तो शुरुआत करते हैं इस गीत से लता मंगेशकर और शबीर कुमार की आवाज़ में।

तुमसे मिलकर ना जाने क्यों। तो चलिए, तुमसे मिलकर, तुमसे मिलना, ये मिलना मिलाना आज चलता ही रहेगा क्योंकि आज का शीर्षक ही है हमारा मिलना। तो चलिए आगे इस शीर्षक पर हम एक अगला गीत और सुनवा रहे हैं फिल्म तेरे नाम से, आवाज़ उदित नारायण और अलका याग्निक की।

0: पापा लाइए 3,000।
1: क्यों भाई?
0: मेरी पॉकेट मनी।
1: अरे अभी तो सिर्फ 2,000 ही कैश है।
0: ए पापा, बुलेट ट्रेन के जमाने में बैलगाड़ी चला रहे हो? डिजिटल पेमेंट चलाओ। है नहीं, हाँ सीधे UPI से पेमेंट करो, इट्स इजी।
1: अरे वाह, मुझे भी सिखाओ। अपने 1,000 ले जाओ,
0: अपना मोबाइल लाओ।
1: ले ले।
2: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
3: हर लेन देन अब है आसान।
4: दादी कौन सा प्लांट है?
5: टेंजरीन, बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है।
6: फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक, अभी करता हूँ।
4: दादी रुको, लिंक में क्लिक मत करना।
6: क्यों?
4: ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी।
6: थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये देख तेरी समझदारी का फल।
7: आज मैं कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।

परिंदा इस फिल्म का ये गीत तुमसे मिलके अभी आपने सुना, आवाज़ सुरेश वाडेकर और आशा भोसले की। तो मिलना, मिलकर, मिलते हुए, इन्हीं शब्दों को आज हमने चुना है और इसी पर हम आपको अगला गीत सुनवा रहे हैं, फिल्म मैं हूं ना से। आवाज़ सोनू निगम, अल्ताफ हासिम, अनु मलिक, इन सभी की मिली जुली आवाज़ों में सुनिए तुमसे मिलके दिल का जो हाल क्या हुआ।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: कमर्शियल ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम आपको बता दें कि कार्यक्रम चल रहा है शीर्षक गीत का, फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम है और आज मिलने मिलाने पर हमने शीर्षक रखा है और इस वक्त हम आपको साजन फिल्म का ये गीत सुनवा रहे हैं। एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज़ है। गीत के बोल कुछ इस प्रकार हैं कि तुमसे मिलने की तमन्ना है,

तुमसे मिलने की तमन्ना है। साजन फिल्म का ये गीत मिलने पर अभी आपने सुना, तो आइए फिर मिलने पर एक गीत आपको सुनवाएं। फिल्म है फूल और कांटे, आवाज़ कुमार सानू और अलका याग्निक।

भी आपने सुना फूल और कांटे फिल्म के इस गीत में, जहां हम मिलने और मिलाने की बातें कर रहे हैं या मिलके हम कुछ करने की बातें कर रहे हैं, क्योंकि आज का शीर्षक हमारा है मिलना। तो आइए अगला गीत दिल कहीं होश कहीं कुमार सानू की आवाज़ में आप सभी को सुनवाते हैं।

आशिक टू इस फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना। शीर्षक गीत कार्यक्रम चल रहा है और आज का शीर्षक, जैसे कि हमने आपको बताया, मिलने पर। तो मिलकर, मिलना, और जब ना मिलो तब क्या होता है, सुनिए इस फिल्म के इस गीत में।

मिलो ना तुम तो हम घबराए ही। रांझा का ये गीत भी आपने सुना। आइए अगला और आखिरी नगमा इस शीर्षक गीत का हम आपको सुनवा रहे हैं, खट्टा मीठा फिल्म से आवाज़ लता मंगेशकर और किशोर कुमार की। और इस गीत के साथ ही इजाज़त चाहेगी आपकी रेडियो दोस्त कामिनी। नमस्कार।

66.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। सुबह के 11 बजने को हैं, श्रोताओं आइए सुनते हैं शास्त्रीय संगीत। आज आपको सुनवाते हैं राग अहिर भैरव, डॉक्टर गंगूबाई हंगल की आवाज़ में। तो आइए सुनते हैं ये राग।

0: क्या बात है, बड़े दिनों बाद।
1: हाँ यार। अच्छा सुन, दाढ़ी बनवाने का कितना होगा?
2: अरे वही अपना 60 रुपया।
1: अरे यार अभी सिर्फ मेरे पास 30 रुपए कैश है।
0: तो देख, दो तरीके हैं। पहला, आधी दाढ़ी करा ले।
1: और दूसरा?
0: अरे डिजिटल पेमेंट कर UPI से।
1: ये लो यार, UPI ने तो बचा लिया।
0: एक काम कर, फेशियल भी करा ले, डिजिटल पेमेंट कर देना।
3: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
4: हर लेन देन अब है आसान।
5: नई कार जीतने का मौका, वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है।
6: रुक जा बुड्ढू।
7: व्हाट? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं।
5: तो समझ गई ना, रिलैक्स।
8: पर कार जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते।
7: RBI कहता है, स्मार्ट बनो,
9: कूल रहो।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: श्रोताओं, आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है और आप सुन रहे हैं शास्त्रीय संगीत। आइए आपको सुनवाते हैं अगला राग, रामकृष्ण बोस की आवाज में राग गुजरी तोड़ी।

अभी आपने सुना शास्त्रीय संगीत। ये आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्ज पर। दिन के 11:30 हुए हैं। श्रोताओं, आइए सुनते हैं सुगम संगीत। आपको सुनवाते हैं जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाज में ये गजल।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं गजल। आइए आपको सुनवाते हैं अगला गजल चंदन दास की आवाज में। तो आइए सुनते हैं।

0: पापा
1: लाइए
0: 3,000।
1: क्यों भाई?
0: मेरी पॉकेट मनी।
1: अरे अभी तो सिर्फ 2,000 ही कैश है।
0: ए पापा, बुलेट ट्रेन के जमाने में बैलगाड़ी चला रहे हो? डिजिटल पेमेंट चलाओ। है नहीं, हाँ सीधे UPI से पेमेंट करो, इट्स इजी।
1: अरे वाह, मुझे भी सिखाओ। अपने 1,000 ले जाओ,
0: अपना मोबाइल लाओ।
1: ले ले।
2: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
3: हर लेन देन अब है आसान।
4: दादी कौन सा प्लांट है?
5: टेंजरीन, बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है।
6: फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक, अभी करता हूँ।
4: दादी रुको, लिंक में क्लिक मत करना।
6: क्यों?
4: ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी।
6: थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये ले तेरी समझदारी का फल।
7: RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए, उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: श्रोताओं, यह आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है और आप सुन रहे हैं सुगम संगीत। आइए आपको सुनवाते हैं अगला गजल पंकज उदास की आवाज में।

0: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
1: श्रोताओं, ये आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है और आप सुन रहे हैं सुगम संगीत। आइए आपको सुनाते हैं इस कार्यक्रम का आखिरी गजल चंदन दास की आवाज में।

इस गजल के साथ ही सुगम संगीत का कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।

मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज पर। यह आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। श्रोताओं, शुभ दोपहरिया, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे और स्वस्थ हैं। श्रोताओं, आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म संगीत। तो पहुंचा

अभी आपने सुना अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज़ में ये गाना। फिल्म था हाँ मैंने भी प्यार किया है। श्रोताओं, यह आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है और आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। आइए आपको सुनवाते हैं अगला गाना दाग फिल्म से। इसे गाया है कुमार शानू ने।

0: रुक जा, असली नोट से क्यों खेल रहा है?
1: ब्रो, ये फटा है।
2: सुन, कते फटे हैं पुराने नोट को?
3: बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं।
1: वाओ, नया नोट मिलेगा?
2: हाँ, जिससे तू हमें पिज़्ज़ा पार्टी देगा।
3: RBI कहता है, स्मार्ट बनो,
4: कूल रहो।
5: दी, ये देख, कैसे है?

0: दीपिका
1: हाँ मेरा फेवरेट कलर हमेशा शॉपिंग
2: आई नो माँ बट खर्चा करने की भी यही उम्र है राइट
3: सेविंग करने की भी यही उम्र है
4: आई नो पा सेव करो सही जगह निवेश करो रकम पर ब्याज मिलेगा जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा
2: आई नो ना
4: RBI कहता है
5: करो सही शुरुआत बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
6: श्रोताओं ये आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है और आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। आइए आपको सुनवाते हैं अगला गाना लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की आवाज में, फिल्म है हिना।

श्रोताओं, ये आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है और आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। आइए आपको सुनवाते हैं अगला गाना यशोदास की आवाज में। फिल्म है दादा।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: श्रोताओं, यह आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है और आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। दोपहर के 12:50 हो भी चुके हैं। आइए आपको सुनवाते हैं अगला गाना शब्बीर कुमार की आवाज में। फिल्म है हमारा खानदान।

अभी आपने सुना गीत फिल्म का ये गाना लता मंगेशकर की आवाज़ में। इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं, आइए अब जुड़ते हैं हमारे जयपुर अजमेर केंद्र से। वहां से सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार। समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं सिद्धार्थ जैन। पहली विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप आज से अहमदाबाद में शुरू हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। 5 दिन चलने वाली इस चैंपियनशिप का उद्देश्य विश्व स्तर पर बहु खेल प्रतियोगिता में योग को शामिल करना है। प्रतियोगिता में 60 देशों के 400 से अधिक प्रतिभागी 12 विभिन्न स्पर्धाओं में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। योगासन भारत की यह पहल वैश्विक स्तर पर योग के बारे में जागरूकता बढ़ाने का एक प्रयास है। इस चैंपियनशिप के दौरान खिलाड़ी कलात्मक और लयबद्ध योग डिवीजनों सहित 7 आधिकारिक योग श्रेणियों में हिस्सा लेंगे। केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देने के साथ साथ कारोबार को आसान बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। इन

0: सुधारों से निवेशकों का भरोसा बढ़ा है और भारत दुनिया में प्रतिस्पर्धी व्यापारिक केंद्र के रूप में मजबूत हुआ है। वर्ष 2016 में शुरू की गई स्टार्टअप इंडिया योजना नवाचार, उद्यमिता और निवेश आधारित विकास को बढ़ावा दे रही है। सरकार के प्रयासों के कारण देश में स्टार्टअप की संख्या इस साल मार्च तक 2,23,000 से अधिक हो गई है। वहीं जून 2021 में आयकर विभाग ने नया ई फाइलिंग पोर्टल शुरू किया ताकि करदाताओं को अधिक सुविधा और बेहतर ऑनलाइन सेवाएं मिल सकें। इसके अलावा 2017 में जीएसटी लागू किया गया जिससे अलग अलग कर व्यवस्थाओं की जगह एक सरल कर प्रणाली शुरू हुई। सरकारी खरीद प्रक्रिया को डिजिटल, सरल और सभी के लिए सुलभ बनाने के लिए वर्ष 2016 में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जैम की शुरुआत की गई। जैम पर अब तक कुल कारोबार 18 लाख करोड़ रुपए से अधिक का हो चुका है। केंद्र सरकार की वाइब्रेंट विलेज 2 योजना में चयनित गांवों में अंडरग्राउंड बंकर बनाए जाएंगे। युद्ध की स्थिति में खतरे का सायरन बजते ही ग्रामीण इन बंकरों में शरण ले सकेंगे। इस योजना में श्रीगंगानगर जिले के 68 सीमावर्ती गांवों का चयन किया गया है। जिला कलेक्टर डॉक्टर अमित यादव ने बताया कि इनमें सबसे अधिक 20 गांव घड़साना उपखंड क्षेत्र के हैं। इन गांवों में कम्युनिटी हॉल के नीचे इन बंकरों का निर्माण किया जाएगा। श्री यादव ने बताया कि वाइब्रेंट विलेज योजना का उद्देश्य चयनित गांवों को पक्की सड़कों और मोबाइल नेटवर्क से जोड़ने के साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा और पीने के पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं को मजबूत करना है। प्रदेश में वंदे गंगा जल संरक्षण जनअभियान के तहत जल संरक्षण को लेकर कई गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। इसी कड़ी में आज विभिन्न जिलों में निबंध, नारा लेखन, चित्रकला, खेलकूद प्रतियोगिताएं और नुक्कड़ नाटक आयोजित किए जा रहे हैं। इनके माध्यम से वर्षा जल संग्रहण और भूजल पुनर्भरण का संदेश दिया जा रहा है। वहीं सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से सरकारी भवनों में बने रेन वाटर हार्वेस्टिंग संरचनाओं की साफ सफाई की जा रही है। विभिन्न ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर जल चौपाल के कार्यक्रम भी रखे गए हैं। कल इस अभियान का समापन होगा। इस दौरान जिला स्तरीय समारोह में जल संरक्षण और जन भागीदारी के क्षेत्र में उत्कृष्ट काम करने वाले भामाशाहों, संस्थाओं, पंचायतों, नगर निकायों और जल योद्धाओं को जल गौरव सम्मान दिया जाएगा। शाम को सांस्कृतिक संध्या का आयोजन होगा। राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं भर्ती परीक्षा 2026 के 607 पदों के लिए आज से ऑनलाइन आवेदन किए जा रहे हैं। अभ्यर्थी 3 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन इस वर्ष 29 नवंबर को किया जाना प्रस्तावित है। उन्होंने बताया कि शैक्षणिक योग्यता, आवेदन प्रक्रिया, पाठ्यक्रम और अन्य जानकारी आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। गौरतलब है कि इसमें राज्य सेवा के 192 और अधीनस्थ सेवा के 415 पदों पर भर्ती की जानी है। और अब मौसम। प्रदेश में नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से आज कई इलाकों में सुबह बरसात हुई। भीलवाड़ा में ग्रामीण इलाकों में तेज बरसात का दौर चला। वहीं सवाई माधोपुर में हल्की बारिश हुई। मौसम विभाग ने आज अधिकांश जिलों के लिए आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। इन स्थानों पर अंधड़ के साथ मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। इस दौरान 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने का पूर्वानुमान है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। दिन के 1:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं ग्रामीण बहनों का पसंदीदा कार्यक्रम सहेलियारी बाड़ी।

0: राम
1: राम
0: राम
1: सा।
0: सा। देखो भाई सा कार्यक्रम रोटेम जुए वेवे आपा लई नवा आपाने बिना रे वास्ते भात भातरी जानकारी मनोरंजन करवारे वास्ते लावा बढ़िया बढ़िया सा गीत और अगर कोई संदेश वगैरह वे तो वे भी आपा आपाने बिना ने सुनावा सा।
1: हाँ
0: तो
1: सा
0: देखो आपाने बेना रो कार्यक्रम है और बेना रे वास्ते आपा जानकारी ले ना आवा तो सब पहली देखो विचार वाली बात मीने आपाने बेनाओ आपा बात करा कि जो आर्थिक सशक्तिकरण है वणी मीने महिला वाली जो है अग्रणी भूमिका किस तरह रह सके मतलब आगीवान भूमिका किस तरह देवे अन्य बारे में आपा बात करा। हाँ सा
1: बिल्कुल भाई साहब, देखो अनुश्री भाई साहब अपनी बेना भी यह बात जाने हैं कि आर्थिक सशक्त जदि वे वेगा तो हर समाज परिवार में वे आगे बढ़ेगा। और यदि आप ही महिला बेनरी बात करा तो आप ही बात करांगा कि हमारे आर्थिक वे सशक्त किसरे बने। कहीं भी समाज और देश रे विकास में अगर आप ही बात करा तो सबू पहली आप ही महिला रो नाम ला और वे भी महत्वपूर्ण भूमिका निभावे है। और आजकल आप ही देख ही रहा है कि चाहे गांव वो चाहे शहर वो अपनी जो महिला बेना है वे बढ़ चढ़ने हर चीज़ में हिस्सों ले रही है और आगे बढ़ रही है। यदि आप ही महिला आर्थिक रूप में सशक्त बनेगा तो वे न केवल अपने परिवार रो अपने समाज रो और अपने देश रो नाम रोशन करेगा। वटे ही अगर आर्थिक स्थिति री अगर बात करा अनुश्री वैसा तो मजबूत करे है वे वनारो। और देखो आत्मिक रूप में अगर वे मजबूत बनेगा तो देखो वे आगे बढ़वारी बनाने शक्ति भी मिलेगा और प्रेरणा भी मिलेगा। तो आप ही यूज कहंगा अपनी बेना ने कि आर्थिक सशक्त बने और आगे बढ़े सा।
0: देखो भाई साहब आज सरकार री बात करा या भात भातरी संस्था वाली बात करा तो वे भी बेना ने आत्मनिर्भर बनावर वास्ते कई तरह री योजना वा चलावे। आप अगर देखा स्वयं सहायता समूह है लखपति दीदी योजना मुद्रा योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ये ऐसी योजना वार ऐसो टाइम है जन मैंने कही है कि अपनी बेना ने रोजगार और स्वरोजगार अवसर मिले और अन्य योजना रे माध्यमों अपनी बेना जो छोटा छोटा व्यवसाय शुरू करें अपनी आय ने बढ़ाई सके हैं।
1: बिल्कुल सा, क्योंकि देखो छोटा छोटा जो व्यवसाय अपनी बेना घरों शुरुआत करे तो वे आगे जाने बहुत बड़ा पैमाना पे वे शुरू कर सके और आर्थिक रूप बढ़ाने बहुत सारी देखो अनुष्य भाई साहब सहायता भी मिले। ग्रामीण क्षेत्र की अगर बात करें तो अपनी महिला जो है वे डेयरी में पशुपालन में हस्तशिल्प में सिलाई कढ़ाई बुनाई में मसाला निर्माण में और अगरबत्ती निर्माण में जन्म देखो खाद्य प्रसंस्करण री अगर बात करा ये ऐसा बहुत सारा छोटा छोटा जो कार्य है वे अपनी महिला बेना घरों शुरुआत कर सके और अणा कार्यों जुड़ने आर्थिक रूप मजबूत बन सके। वटे अगर आप ही शहरी क्षेत्र में महिला री बात करा तो अपनी जो महिला जो शहरी क्षेत्र में रहवे वे शिक्षा रे क्षेत्र में स्वास्थ्य रे क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी और व्यापार और सेवा क्षेत्र में और बहुत सारा ऐसा क्षेत्र है अनुसूचित पैसा जटे वे अलग अपनी पहचान बनाई रही है और आर्थिक रूप सशक्त भी रही है सा।
0: हाँ जी बात है सा। देखो आर्थिक सशक्तिकरण रो सब मोटो लाभ ही यो से कि जो बेना है वे वना में आत्मविश्वास बढ़े है।
1: हाँ सा
0: जना एक औरत अपनी आय अर्जित करे तो वह परिवार रे वा जो महत्वपूर्ण निर्णय वे विमे भी अपनी भागीदारी है वह सुनिश्चित करी देवे। अंडे कही वे कि परिवार रो जीवन स्तर बेहतर वे और टाबरारी शिक्षा और स्वास्थ्य पे भी सकारात्मक प्रभाव पड़े है।
1: बिल्कुल हाँची बात कह रहा हूँ अनुश्री भाई साहब। और यदि आप ही बात करा अनेक महिला री तो आप ही देखो उद्यमी बनने वे अन्य महिला ने भी रोजगार उपलब्ध करावे। कहाँ की आप ही अगर गांव री बात करा तो बहुत सारी ऐसी चीज़ा है जो हस्तनिर्मित वे तो वे अपनी बेना अपने घर परिवार लेने अपने गाँव में जितनी भी बेना है वणा देखो रोजगार उपलब्ध करावे। अणु देखो अनुषी भाई साहब न केवल वणारे आर्थिक रूप में वे मजबूत बने हैं बल्कि वे समाज में अपनों अलग एक नेतृत्व करे हैं और वणा ने आगे बढ़ावा मिले। यही कारण है कि अपनी जो महिला है वह हर क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रही है। तो आपने भी यो समझना होगा कि जो महिलाएं री आर्थिक सशक्तिकरण केवल महिला तक ही सीमित नहीं है बल्कि वे परिवार समाज रो विकास रो एक आधार है। यदि महिला आगे बढ़ेगा तो परिवार समाज ने और देश ने भी आगे बढ़ाएगा सा।
0: बिल्कुल भाई साहब आपा तो आपानी हंगली बेना ने यू इसके वहाँ कि देखो आपा बेना है जो शिक्षा कौशल विकास और रोजगार का अवसर आपा आपां भी उपलब्ध कराओ और आपने आसपास जो लोग हैं बनाने भी उपलब्ध करावा, सहयोग करावा। तो अणी कही है कि जो बेना घर में बैठी है बनाने भी आत्मनिर्भर बनवा वास्ते आप प्रोत्साहित करी सकला। यो एक समृद्ध और विकसित समाज की पहचान यही से कि बेना

0: सख्त वेवे बिना आत्मनिर्भर वेवे और समाज रे आर्थिक सशक्तिकरण है वणी मीने आपनी अग्रवान भूमिका निभावे।
1: बिल्कुल सर, तो आप ही भी अग्रणी भूमिका निभावा अपने कार्यक्रम में, और अनुश्री भाई साहब को तो अपनी बहना ने प्यारा सो मनभावन एक गीत सुनावा सर।
0: बिल्कुल होना वासा।

0: तो एक लघु उद्योग है जिनमें देखो बहुत ही कम पूंजी में अने शुरुआत कर सका अपी और में अच्छी आय भी आपानी जो बेना है वे घर बैठा प्राप्त कर सके। विशेष रूप में आपानी महिला और युवा जो बेना है वे स्वयं सहायता समूह जुड़ने यो रोजगार जो है अच्छो साधन बन सके ऐसा।
1: सही है वैसा। देखो मोमबत्ती रो उपयोग आज खाली बिजली जावर पर प्रकाश वास्ते नहीं है, बल्कि आजकल सजावट, धार्मिक कार्यक्रम, त्योहार, जन्मदिन समारोह और इनमें भी आपा और अंडे अलावा उपहार रूप में भी अंडे उपयोग बढ़ी रो है। यो इस कारण है कि बाजार में आकर्षक और सुगंधित मोमबत्ती की मांग लगातार बढ़ी रही। अगर आपा हस्तनिर्मित मोमबत्ती बनावरा और सामान री बात कराते तो मोम बाती रंग और खुशबू रो उपयोगी में वेवे है। मोम ने गर्म करीन पिघलायो जावे और वणी में आवश्यकता अनुसार रंग और सुगंध मलई और अन्य बाद बादरा आकार या सांचा में नाकिन मोम ठंडो वेवा पे मोमबत्ती तैयार वे जावे। अणि काम रे वास्ते आपाने बहुत ज्यादा मशीनरी आवश्यकता नहीं वेवे अणि वास्ते इन्हें घरों आराम शुरू कर सका। हाँ
0: बिल्कुल सा। और अपनी बेना बाजार में कई प्रकार की जो मोमबत्तियाँ उपलब्ध है जैसे कि सजावटी मोमबत्तियाँ, सुगंधित मोमबत्तियाँ, फ्लोटिंग मोमबत्तियाँ और त्यौहार के लिए जो विशेष डिजाइन वाली जो मोमबत्तियाँ आवे, यदि उत्पाद की गुणवत्ता अच्छी वेगा और डिजाइन आकर्षक वेगा तो अपने जो ग्राहक है वे भी तेजी संख्या बनाई बढ़ेगा और अपने जो महिला बिना हस्तनिर्मित मोमबत्ती रो जो उद्योग एक बड़ो लाभ बनाने दे रही है। बन में कम निवेश की आवश्यकता वे लाल लारे परिवार रे अन्य सदस्य भी अणि कार्य में बिल्कुल सहयोग कर सके और महिला घर रे कामकाज लारे लारे अणि उद्योग ने अपनाई ने अपनी आय भी बढ़ाई सके और आर्थिक रूप आत्मनिर्भर बन सके सा।
1: वैसा देखो आज रो डिजिटल युग है। मोमबत्तियाँ री बिक्री केवल स्थानीय बाजार तक नहीं वे, सोशल मीडिया, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, मेला रे माध्यमों भी उत्पाद ने ग्राहक तक आपा पहुँचाई सका। हाँ और सरकार भी है स्वरोजगार और महिला उद्यमिता ने बढ़ावा दे रही है और अणि रे वास्ते बात बात रा प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता योजना भी दे रही है। अणा योजना रो लाभ उठाई ने अपन जो भी बहन यानी व्यवसाय ने शुरू करना चाहे वे कर सके है।
0: बिल्कुल सर। और लायर देखो प्रशिक्षण भी मिले तो आप अपनी बेना ऑनलाइन भी सीख सके और हस्तनिर्मित जो मोमबत्ती उद्योग है एक सरल उपयोगी और लाभदायक व्यवसाय आप अपनी बेना रे वास्ते है। तो थोड़ी सी मेहनत, रचनात्मकता और सही विपणन रे माध्यमों आप ही केवल सफल उद्यम और आप ही आगे बढ़ सका और यह न केवल रोजगार और साधन है बल्कि आप अपनी महिला बिना ने आत्मनिर्भर बनावे और एक सही दिशा में मनारे महत्वपूर्ण कदम उठावे सा।
1: बिल्कुल भाई साहब, सही बढ़िया जानकारी आपने बिना ने यह दी है कि हस्तनिर्मित मोमबत्ती उद्योग वे कणी तरह आपने घर माते तैयार कर सके है। अबे आपने कार्यक्रम ने आगे बढ़ावा और आपने जो बेना है वनारो मनोरंजन करता था का ये गीत और सुनाई दासा।
0: बिल्कुल हुणावासा।

तो अनुश्री भाई साहब बहुत ही प्यारो सो गीत छोटो सो संसार आपनो, और आपनो भी यो जो छोटो सो संसार है जो आपनी बहना सुन रही है कार्यक्रम, वणा ने आप ही कार्यक्रम में और जानकारी करावा, कार्यक्रम आगे बढ़ावा कि आप ही बतावा हस्तनिर्मित जो मोमबत्ती उद्योग है वणी के बारे में जानकारी करावा अनुश्री भाई साहब। तो

0: निमुड़ा निमुड़ा निमुड़ा निमुड़ा।
1: तो देखो अनुश्री भाई साहब प्यारो सो गीत हुणियो और अब देखो कार्यक्रम ने आगे बढ़ावा आप नित नई अपने बेना ने योजना की जानकारी करावा। तो आज जो योजना लेने आया है वह है दीनदयाल अंत्योदय योजना। यह भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है जिन्हें उद्देश्य है गरीब और जरूरतमंद परिवार ने आजीविका और बेहतर अवसर उपलब्ध कराई ने वणा ने आर्थिक रूप सशक्त बनाणो और अणी योजना रो नाम महान विचारक पंडित दीनदयाल उपाध्याय रे नाम पे राख्यो गयो है। वणा रो मानणो हो कि समाज रे अंतिम व्यक्ति तक विकास रो लाभ पहुँचाणो चाहे ताकि यही सोच आगे बढ़ाता थका दीनदयाल अंत्योदय योजना संचालित की दी जा रही है। सा
2: देखो अणी योजना रो मुख्य रूप ग्रामीण और शहरी गरीब परिवार वास्ते यह योजना काम करे है। ग्रामीण क्षेत्र में इन्हें राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन रे माध्यम लागू किदो है और शहरी क्षेत्र में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन एंडो संचालन वेरो है। योजना रे अंतर्गत गरीब परिवार विशेषकर बेना और अपने जो स्वयं सहायता समूह जोड़ियो जावे अणा ने समूह रा सदस्य जो है वे नियमित बचत करे और आवश्यकता पड़वा पे कम ब्याज पे ऋण भी प्राप्त कर सके यानी वे छोटे छोटे व्यवसाय शुरू कर ना पानी आय बढ़ाई सके है।
1: बिल्कुल आय बढ़ाई सके और अणी योजना में देखो अंडे तहत युवाओं ने विभिन्न व्यवसाय और रोजगार लिए कौशल प्रशिक्षण भी दिदो जावे। प्रशिक्षण प्राप्त करवा रे बाद जो अपने युवा है वे रोजगार प्राप्त करवा या स्वरोजगार शुरू करवा में वणाने सहायता दीदी जावे। वणियों कही है कि वणारे आर्थिक स्थिति मजबूत वेगा और वे आत्मनिर्भर बढ़ेगा। और देखो अणी योजना रो एक महत्वपूर्ण उद्देश्य अपनी महिला बहना रो भी है कि वे सशक्त बने। स्वयं सहायता समूह रे माध्यम अपनी महिला आर्थिक गतिविधियां में भाग ले रही है और परिवारी आय बढ़ावा में भी योगदान दे रही है। सा
2: बैसाणी योजना रे माध्यम कई परिवार डेयरी पशुपालन सिलाई खाद प्रसंस्करण हस्तशिल्प और दूजी जो लघु उद्योग योजना लघु उद्योग है बनाने वे शुरू कर सके अणी उनके रोजगार रा जो नया अवसर पैदा वे और ग्रामीण अर्थव्यवस्था है जो वह मजबूत वे केवारो मतलब यो

0: जैसे कि यह योजना जो है या खाली आर्थिक सहायता तक सीमित नहीं है, बल्कि लोगों ने आत्मनिर्भर भी बनाई रही है।
1: बिल्कुल सा अनुश्री भाई सा, या तो बहुत ही अच्छी योजना जो अपने बैनर वास्ते है और मंडी जानकारी कराई, और अभी कार्यक्रम में एक मन भावन गीत और होना सा।

0: बारीक पीस लेना है। पीसे तो को जो मिश्रण है बनाने कुछ मिनट तक अच्छे तरीके में आपने एक ही दिशा में हल्का हाथों फेंटना है। और अब आपने तेल गर्म वे जावे पचे छोटा छोटा आपने बड़ा बनाई ने मध्यम आंच पे बनाने सुनहरा वेवा तक तलना है। और बड़ा जदि तल जावे तो बनाने कुछ मिनट के लिए गुनगुना पानी में निकाल लेना है। और देखो अगर गुनगुना पानी में निबिल निकालो तो भी ये मुलायम ही रहेगा। और वनडे बाद देखो हल्का हाथों आपने निकालने और उनमें दही में डाल देना है। दही ने आप ही पहली आप ही कही करांगा कि बहुत अच्छे तरीका हूँ फेटने वन में नमक डाल दांगा सा।
1: बिल्कुल वैसा देखो अबे बड़ा तो आपने तैयार विस गया है जिसियान की आपकी है कि वणा में ने पानी में नाकिन भी आप ले सका हाँ और पानी में नी भी नाका तो वणा ने डायरेक्ट अगर आप दही में डालना तो भी वे बढ़िया इस लागे है। अबे ये जो बड़ा है वणा ने आपने प्लेट में लेना है वणा रे ऊपर आपने फेटियो तो को दही नाके देनो है। अंडे पछे आपने बूरो बुनियो तो को जीरो नाकनो है लाल मिर्च पाउडर नाकनो है कालो नमक छिड़कनो है। स्वाद बढ़ावर वास्ते आप आने मैंने इमली री खाटी मीठी चटनी भी नाकी सका हाँ। और आप चावा तो हरी चटनी और बारीक कटी तकी हरी धनिया री जो सजावट भी पे कर सका। अण्यू कही है कि जो दही बड़ा है वे ज़्यादा स्वादिष्ट और आकर्षण दिखे है। अंडे लारे लारे बैसा देखो कि जो आप ये वड़ा बनाया है अणा वड़ा रो आप चाट भी बनाई सका। इन्हें अणी दही वड़ा रो जैसे आप दही वड़ा प्लेट में ले ही रखिया हाँ तो वणा रे माथे जो आपने फलाहारी नमकीन आवे है वह नमकीन काटिन डाली देवा अनार रा दाना वे तो वे डाल देवा। या पचे आप जैसे थोड़ी सी पत्ता गोभी है और हरी मिर्ची है और जो थोड़ा सा कुटी तक की मूंगफली है ये सब डालिन अगर आप इन्हें चाट रे रूप में आप परोसा तो भी ये बहुत स्वादिष्ट लागे है। और देखो आप जो रूटीन रो जो सेगार करी रहा वणियों अलग यो सेगार करीना आपने एक अलग ही आनंद आवेला।
0: बिल्कुल सा। तो देखो अनुष्य भाई ये तो दही बड़ा री जो रेसिपी आपकी बताई अपनी बहना जरूर बनाएगा घरे फलारी। और देखो आज कार्यक्रम में खूब सारी जानकारी जो है वे अपनी बहना ने कराई। हाउ हाउ गीत अपनी बहना ने हुनाया। और अब देखो और भी बात करवारी इच्छा है लेकिन अपने कार्यक्रम नो टाइम वे गयो है तो विदा लासा पाचा मिलांगा राम
1: राम
0: राम
1: राम सा।
0: सा।

अभी आपने सुना बहनों का पसंदीदा कार्यक्रम सहेलिया रिवाड़ी। ये आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं, आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। तो आपकी रेडियो सेट पर आ रहा है ये गाना, फिल्म है खानदान। इसे गाया है लता मंगेशकर ने।

0: 10 लाख की लॉटरी मुझे,
1: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
2: RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से, वाह।
1: फसा।
3: अनजान ऐप से बचें।
2: RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: श्रोताओं, हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म संगीत। आइए आपको सुनवाते हैं अगला गाना चमत्कार फिल्म से। इसे गाया है कुमार शानू और साथियों की आवाज में।

श्रोताओं, ये आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है और आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। आइए आपको सुनवाते हैं इस कार्यक्रम का आखिरी गाना। फिल्म है अनुरोध और इसे गाया है किशोर कुमार ने।

इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत का सफर बस यहीं तक। ये आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। श्रोताओं, आइए सुनते हैं विकास चर्चा। आज का विषय है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना।

आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा 1 जून 2020 को की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य रेहड़ी पटरी और छोटे स्ट्रीट वेंडर्स को अपना काम फिर से शुरू करने के लिए बिना किसी गारंटी के आसान और किफ़ायती कार्यशील पूंजी पर लोन उपलब्ध कराना है। ऋण राशि की जो अवधि है, इस योजना के तहत लोन 3 किस्तों में प्रदान किया जाता है, जो पहली किस्त है 15,000 तक, या आप 12 महीने में चुका सकते हैं, और जो दूसरी किस्त है 25,000 रुपये तक, इस समय पर पहला लोन चुकाने पर 18 महीनों में चुकाने के लिए यह दूसरी किस्त आपको प्रदान की जाती है, और जो इसकी तीसरी किस्त है वह 50,000 रुपये तक की है। समय पर दूसरा लोन का यदि आप भुगतान कर देते हैं तो 36 महीने में चुकाने के लिए यह तीसरी किस्त भी आपको दी जाती है। नियमित समय पर लोन चुकाने वाले लाभार्थियों को सरकार की ओर से 7% की ब्याज सब्सिडी भी प्रदान की जाती है। इसमें डिजिटल प्रोत्साहन भी है। यदि आप डिजिटल लेन देन करते हैं तो आपको प्रति माह 100 रुपये तक का कैशबैक प्रोत्साहन भी मिलता है। यह योजना सभी शहरी, अर्धशहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में ऑन स्ट्रीट वेंडर्स के लिए उपलब्ध है जो वेडिंग करते हैं। वेंडर्स के पास शहरी स्थानीय निकायों UELB द्वारा जारी वेडिंग सर्टिफिकेट और पहचान पत्र होना चाहिए। इसको आवेदन करने के लिए आप जन समर्थ पोर्टल या माई स्कीम पोर्टल के माध्यम से सीधे ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं।

अभी आपने सुना विकास चर्चा, ये आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। आइए जुड़ते हैं हमारे दिल्ली केंद्र से, वहां से सुनते हैं हिंदी में दोपहर समाचार का आज का अंक। समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।

आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के बीच आज नई दिल्ली में वार्ता, ऊर्जा, सुरक्षा, व्यापार और निवेश प्रमुख मुद्दे। गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में उत्तर पूर्वी परिषद की बैठक शिलांग में जारी। पर्यटन, कृषि, आर्थिक गलियारे का विकास, बुनियादी ढांचा और संपर्क बढ़ाने पर चर्चा। दिग्गज फिल्म निर्माता पहलाज निहलानी का निधन। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान पर सैन्य कार्रवाई के विरोध में एकजुट। अमरीकी प्रतिनिधि सभा ने प्रस्ताव पारित किया। केरलम में दक्षिण पश्चिम मॉनसून शुरू और पहली विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप अहमदाबाद में शुरू। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ व्यापक चर्चा की। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की और ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा, ऑटोमोबाइल आदि क्षेत्रों में सहयोग के नए रास्ते तलाशे। मंत्रालय ने कहा कि दोनों नेताओं ने आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने तथा वैश्विक दक्षिण के हितों को आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। सुश्री रोड्रिगेज कल 5 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। उनके साथ विदेश मामलों, अर्थव्यवस्था और वित्त, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी और परिवहन मंत्रियों का प्रतिनिधिमंडल भी आया है। इससे पहले सुश्री रोड्रिगेज ने विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी मुलाकात से दोनों देशों के बीच सहयोग और मजबूत होगा। विदेश मंत्रालय ने बताया कि वेनेजुएला का प्रतिनिधिमंडल ऊर्जा, फार्मास्यूटिकल्स और ऑटो

0: मोबाइल क्षेत्रों से जुड़े कई स्थलों का दौरा करेगा। इसका उद्देश्य भारत की तकनीकी और औद्योगिक क्षमताओं का जायजा लेना तथा सहयोग के अवसरों का पता लगाना है। भारत ऊर्जा और निवेश के क्षेत्रों में वेनेजुएला का एक महत्वपूर्ण साझेदार रहा है। ब्रिटेन की विदेश और राष्ट्रमंडल मामलों की मंत्री यवेट कूपर भी आज प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगी। सुश्री कूपर आज शाम विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ बैठक करेंगी। वे दो दिन की आधिकारिक यात्रा पर कल रात नई दिल्ली पहुंची। विदेश मंत्रालय ने कहा कि उनकी यात्रा भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का अवसर प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज से ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक शुरू होगी। दो दिन की बैठक में चीन, ब्राजील, मिस्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात और दमन की यात्रा पर रहेंगे। वे गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री दमन में लगभग 2,970 करोड़ रुपए की लागत वाली विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। उत्तर पूर्वी परिषद एनईसी का 73वां पूर्ण सत्र मेघालय के शिलंग में चल रहा है। गृहमंत्री अमित शाह सत्र की अध्यक्षता कर रहे हैं। ये पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक है। बैठक में पर्यटन, कृषि, आर्थिक गलियारे के विकास, बुनियादी ढांचा और संपर्क बढ़ाने पर चर्चा हो रही है। बैठक में क्षेत्रीय विकास के महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए गठित मुख्यमंत्री उच्च स्तरीय कार्यबलों द्वारा की गई प्रगति पर चर्चा प्रमुखता से शामिल है। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय ने कहा कि इन विचार विमर्शों से राज्यों और हितधारकों के बीच समन्वित कार्रवाई को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, जिससे साझा विकास लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री श्रीकांतो मजूमदार, गृह सचिव गोविंद मोहन और मंत्रालय के सचिव संजय जाजू उपस्थित हैं। इसके अलावा मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड तथा सिक्किम के राज्यपाल और मुख्यमंत्री भी बैठक में शामिल हैं। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने बैठक को महत्वपूर्ण बताया।
1: ये बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग है नॉर्थ ईस्ट के लिए। इसके द्वारा है बहुत सारे स्कीम के बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में यहाँ पर डिसाइड होता है। और 2014 के बाद तो नॉर्थ ईस्ट का जो भी फंड है, डेवलपमेंट फंड है, इसके द्वारा बहुत सारे योजना शुरू हो चुका है, काम हो रहा है।
0: उत्तर पूर्वी परिषद पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए सर्वोच्च क्षेत्रीय योजना निकाय के रूप में कार्य करती है। ये क्षेत्र में समन्वित विकास को बढ़ावा देने और सहकारी संघवाद को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा है कि वैश्विक व्यवधानों और आर्थिक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत वैश्विक बाजार में अन्य देशों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। श्री प्रसाद ने नई दिल्ली में ग्लोबल बिजनेस रिसर्च कॉन्फ्रेंस जीबीआरसी के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने हाल ही में कई देशों के साथ संपन्न हुए मुक्त व्यापार समझौतों की सराहना भी की। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान द्वारा आयोजित जीबीआरसी का उद्देश्य वैश्विक व्यापार से जुड़े विषयों और चुनौतियों पर शोध के लिए चर्चा का अवसर प्रदान करना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गुजरात पुलिस ने राज्य में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन डेल्टा हंट की शुरुआत की है। इसके तहत पिछले 24 वर्षों में गुजरात में अवैध रूप से रह रहे 424 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 782 से अधिक संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ जारी है। यह अभियान राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा माने जाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ शुरू किया गया था। गांधीनगर में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री और गृहमंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि राज्य की सुरक्षा को खतरे में डालने वाले प्रत्येक घुसपैठिए का पता लगाया जाएगा, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उन्हें बांग्लादेश वापस भेज दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अवैध प्रवासियों को आश्रय, रोजगार या सहायता प्रदान करके कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।
2: 6200 से ज्यादा लोगों की तहकीकात की जा रही है, इनमें से 300

0: 66 लोग अभी तक बांग्लादेशी पाए गए हैं। साथ ही जिन लोगों ने उनको रहने के लिए घर दिया होगा और जिन्होंने उनको नौकरी दी है लेकिन पुलिस वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजे होंगे, उन पे भी एक कड़े कदम उठाने के लिए एक पूरी टीम इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। गुजरात पुलिस घर घर और गांव गांव तक ये तहकीकात चालू रखेगी।
1: बिहार के मुजफ्फरपुर में एक निजी अस्पताल में भीषण आग लगने से 3 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हुए हैं।

0: गांव तक ये तहकीकात चालू रखेगी।
1: बिहार के मुजफ्फरपुर में एक निजी अस्पताल में भीषण आग लगने से 3 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हुए हैं। ये घटना कल रात ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र में हुई। गंभीर मरीजों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। मुजफ्फरपुर के पुलिस अधीक्षक ने बताया कि घटना की जांच जारी है।
2: आईसीयू 14 फ्लोर पर है, उसी में आग लगने की बात है। शॉर्ट सर्किट से कुल 13 से 15 लोग भर्ती थे, लेकिन 3 लोगों की मृत्यु कंफर्म है। बाकी लोग अन्य जगह भेजा गया अलग अलग अस्पताल में इलाज के लिए। मृत्यु का आंकड़ा बढ़ सकता है हालांकि, लेकिन अभी सूची कहना जल्दबाजी होगी, हम लोग जांच कर रहे हैं।
1: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मालवीय नगर अग्निकांड के घायलों से मिलने आज साकेत के निजी अस्पताल पहुंची। मुख्यमंत्री ने घायलों तथा उनके परिजनों से बातचीत की और अधिकारियों को सभी आवश्यक सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए। श्रीमती गुप्ता ने प्रत्येक मृतक के परिजन को 10-10 लाख रूपये और गंभीर रूप से घायलों को 5-5 लाख रूपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा कि घायलों के चिकित्सा खर्च की व्यवस्था की जायेगी। मालवीय नगर में कल एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मृत्यु हो गई। दिल्ली पुलिस ने बताया कि मृतकों में 9 भारतीय और 12 विदेशी नागरिक हैं। वयोवृद्ध निर्माता और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड CBFC के पूर्व अध्यक्ष पहलाज निहलानी का आज मुंबई में निधन हो गया। वे 76 वर्ष के थे। 10 जनवरी 1950 को जन्मे निहलानी ने 1982 में आई फिल्म हथकड़ी से निर्माता के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। उन्हें 1986 में आई फिल्म इल्जाम से अभिनेता गोविंदा को पहला बड़ा ब्रेक देने का श्रेय दिया जाता है। जनवरी 2015 में निहलानी को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने सख्त नए दिशा निर्देश लागू किए, जिनके तहत ए रेटिंग वाली फिल्मों में भी कुछ अपशब्दों पर प्रतिबंध लगा दिया गया और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने या हिंसा दर्शाने वाली सामग्री को सीमित करने का प्रयास किया गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमरीकी प्रतिनिधि सभा ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के खिलाफ आगे की सैन्य कार्रवाई से रोकने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया है। ये चौथी बार है जब प्रतिनिधि सभा ने ट्रंप की युद्ध संबंधी शक्तियों को सीमित करने की कोशिश की है। आलोचकों का कहना है कि ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई को अमरीकी संसद की मंजूरी मौसम विभाग ने आज केरलम में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के आगमन की पुष्टि की है। मॉनसून 3 दिन देर से आया है। 1 जून से केरलम में मॉनसून के आने की संभावना थी। विभाग ने 9 जून तक केरलम और माहे में कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। केरलम से हमारी संवाददाता ने बताया है कि कई जिलों में तेज बारिश हो रही है।
3: केरलम के 6 जिलों में आज कुछ जगहों पर तेज बारिश की संभावना को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। राज्य के कई हिस्सों में बारिश हो रही है और आज केरलम में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के पहुंचने की संभावना है। केरलम में कई जगहों पर रात से अब तक लगभग 5 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। केरलम से स्मिथ एम पलुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आकर्षिता सिंह।
1: मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों के दौरान उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भी भारी वर्षा का अनुमान लगाया है। विभाग ने अगले 2-3 दिनों के दौरान लक्षद्वीप, तटीय कर्नाटक और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में भी इसी तरह की स्थिति का अनुमान व्यक्त किया है। दिन के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, छत्तीसगढ़, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में कुछ स्थानों पर आंधी की प्रबल संभावना है। गुजरात के अहमदाबाद में विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप के पहले संस्करण का शुभारंभ हुआ, जो वैश्विक खेलों में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम को इस भव्य आयोजन में वर्चुअल रूप से शामिल होकर अपनी शुभकामनाएं देंगे। पूरे विश्व से योग प्रेमी और एथलीट प्रतियोगिता के लिए एकत्रित हुए हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि चैंपियनशिप का मुख्य उद्देश्य विश्व स्तर पर बहु खेल प्रतियोगिताओं को योग में शामिल करना है।
4: वर्ल्ड योगासन के तत्वाधान में योगासन भारत द्वारा आयोजित इस ऐतिहासिक आयोजन का मुख्य उद्देश्य विश्व स्तर पर बहु खेल प्रतियोगिता में योग को शामिल करने का मार्ग प्रशस्त करना है। यह पहल वैश्विक

0: स्तर पर योग और कल्याण के बारे में जागरूकता फैलाने के साथ साथ योगासन को प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में बढ़ावा देने का एक प्रयास है। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: इस बीच प्रधानमंत्री ने देशवासियों से नियमित रूप से योग करने का आग्रह किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में एक संस्कृत श्लोक साझा करते हुए उन्होंने कहा कि योग के नियमित अभ्यास से शरीर स्वस्थ और मन शांत रहता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि योग को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाकर संतुलित, स्वस्थ और ऊर्जावान जीवन जिया जा सकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत और लाओस के बीच गहरे सभ्यतागत संबंध हैं और ये बौद्ध धर्म तथा रामायण की साझा विरासत में दिखाई देते हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में लाओस के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री थोंग सावन फोम विहाने से भेंट की। इस दौरान राष्ट्रपति ने कहा कि इस वर्ष दोनों देश राजनयिक संबंधों की स्थापना की 70वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, जो द्विपक्षीय संबंधों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में दोपहर के कारोबार में आज गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 149 अंक गिरकर 74,197 पर, जबकि निफ्टी 34 अंक फिसलकर 30,372 पर था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के बीच आज नई दिल्ली में वार्ता। ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और निवेश प्रमुख मुद्दे। गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में उत्तर पूर्वी परिषद की बैठक शिलांग में जारी। पर्यटन, कृषि, आर्थिक गलियारे का विकास, बुनियादी ढांचा और संपर्क बढ़ाने पर चर्चा। दिग्गज फिल्म निर्माता पहलाज निहलानी का निधन। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान पर सैन्य कार्रवाई के विरोध में एकजुट। अमरीकी प्रतिनिधि सभा ने प्रस्ताव पारित किया। केरलम में दक्षिण पश्चिम मॉनसून शुरू और अहमदाबाद में पहली विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप का शुभारंभ हुआ। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्स पर, ये आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। दिन के 2:30 हुए हैं। श्रोताओं, आइए सुनते हैं किसान भाइयों का दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत।

0: राम राम दाणा बैसा राम राम।
1: राम राम अनुश्री बैसा राम राम।
0: कृषि जगत कार्यक्रम होनवा वाला हंगला किसान भाई बहना ने भी आपानो
1: राम राम सा। तो देखो अनुश्री भाई साहब, आप ही देखो आया हाँ कार्यक्रम में। आपने किसान भाई बहनों के वास्ते बहुत अच्छी जानकारी आज लाया हाँ कि जो खेती बाड़ी में बीज उपचार की जो आवश्यकता है वणी के बारे में आज जानकारी करावंगा। क्योंकि देखो बीज उपचार है जो है वो आधुनिक खेती बाड़ी रो एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय और बुनियादी कारण आप ही कह सका। कणी भी फसल ने बेहतर उत्पादन के लिए केवल अच्छा बीज रो चयन करना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि वणियों बोलवा पहली बहुत सही तरीका रो उपचारित करना भी बहुत ही आवश्यक है। तो आपने किसान भाई अणी बात रो विशेष ध्यान रखे कि बीज उपचार रो मुख्य उद्देश्य बीज री मिट्टी और वन में जनित बीमारियां कीटा और फंगस रे जो फसल री शुरुआती अवस्था है वंडी रक्षा किसरे करनो है यह आज बतावांगा सा।
0: गणी हाउ जानकारी लेना या भाई सा देखो, यह तो अपने किसान भाई आरे वास्ते बहुत ही बढ़िया जानकारी है। क्योंकि फसल री पैदावार पहली बीज रो उपचार और बीज बढ़िया वेला तो फसल भी बढ़िया वेला। देखो रोग और कीटा रो आप जो प्रारंभिक सुरक्षा री अगर बात करा तो जनाण एक असुरक्षित बीज जो है मिट्टी में बोयो जावे तो वहीं पे मिट्टी और बीज में पहला मौजूद जो हानिकारक फंगस वेवे या बैक्टीरिया वेवे वे कीटा रा हमला रा खतरा वहीं माते ज़्यादा वे जावे है। तो आपने बीज रो उपचार पहली करनो है।
1: बिल्कुल सर।
0: और देखो वंडे अलावा देखो मृदा जनित रोग वेवे वंडो भी आपने ध्यान रखना है कि मिट्टी में मौजूद कवक बीज रा अंकुरित वेवों पहली बीजा ने सड़े सके है। तो बीज जनित रोग री बात अगर करा तो देखो कई बीमारियां बीज रे महीने वे सके और बनारी ऊपरी सतह जो वेवे वा सुप्त अवस्था में रेवे है। और बीज उपचार एक सुरक्षा कवच री तरह काम करे है। जणी में कही है कि पौधा रा शुरुआती जीवन में ही लागवा वाली जो बीमारियां है जैसे आन की आद्र पतन है या

0: जड़ सड़न है या तनो गलन है अणी बीमारियां ने आप बचाई सका। हाँ
1: बिल्कुल सा। और लारे अपने किसान भाई ने यो भी बतावा कि कीटों सुरक्षा किसरे करनो है, तो फसल रे शुरुआती 20 से 30 दिन जो है वह बहुत नाजुक है वे, तो आने दौरान देखो दीमक, सफ़ेद, गब्र और जो रस चूसा वाला जो कीट है वे बढ़ जावे तो मनाने कोमल पौधा ने भारी नुकसान में पहुंचाई सके। तो कीटनाशक और बीजोपचार करवा रे पहली अपने सुरक्षा मिले, तो मन में शुरुआती अवस्था में कीट पौधा ने नुकसान नहीं पहुंचावे, अणी रे लिए फसल रीढ़ी मजबूत वे। तो अपने किसान भाई ने अणी बात रो विशेष ध्यान रखना चाहवे सा।
0: बिल्कुल भाई साहब। और देखो उपचारित बीजारी अंकुरण क्षमता जो है बिना उपचारित बीजारी तुलना में घनी बढ़िया वेवे है। बीज उपचार पहली बीज रे चारों और नमी रो संतुलन बनियो रहे और वे एक साथ जल्दी अंकुरित वे जावे। जना खेत रा हंगला पौधा एक समान समय पे और स्वस्थ उगे तो आगे चालीन फसल रो प्रबंधन करनो और कटाई करनो भी आसान वे जावे है।
1: बिल्कुल सा। और अपने किसान भाई ने अनिरी भी जानकारी करावा कर जो मिट्टी की उर्वरता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो है, दहली जो फसला हैं दलहनी वनमें जैसे जैसे कि चना, मूंग, अरहर, सोयाबीन, जैविक बीज उपचार करने अपने कल्चर रो प्रयोग करना है। यह बैक्टीरिया पौधा री जड़ा में ग्रंथियां बनाई ने हवा में मौजूद नाइट्रोजन ने सोख लेवे है और वणा ने पौधा में उपलब्ध करावे है। अणु न केवल फसल री वृद्धि भी अच्छी वेवे बल्कि जो मिट्टी में उपजाऊ जो क्षमता है वने भी बढ़ावे है। लारे लारे यूरिया जैसा जो महंगा रासायनिक खादा है वणा पे भी निर्भरता अपने किसान भैरी कम भी जावे ऐसा।
0: देखो भाई साहब कई बार आपा देखा कि किसान फसल में बीमारी आवारे पछे जो महंगा कवकनाशी या कीटनाशक रो छिड़काव करे चणियों कई बहुत ज़्यादा खर्चो वे जावे, मेहनत भी लागे। अणेरे विपरीत बीज उपचार बहुत ही कम खर्च में वे जावे और इलाज परहेज रू बेहतर है कि आपा कह कि इलाज परहेज बढ़िया है। तो अणेरी स्तर पर आपा बीज उपचार करें फसल सुरक्षा रो सबसे सस्तो और प्रभावी तरीको अपनाई सका। जणियों कई वे कि देखो लागत में भी कमी आवे और आर्थिक लाभ भी बेचावे है।
1: बिल्कुल सा। और अब बताऊँ कि बीज उपचार और सही क्रम कैसो है कि देखो अगर बात करना FIR तो ने आप यूं हम जी सका क्रमबद्ध के सबू पहली अपने बीज ने फंगस जनित बीमारियों बचावे लिए कवकनाशी जैसे कि थीरम, डाइको, डर्मा अणु उपचारित करना है। आई रो मतलब है कीटनाशक, अणीरो बाद अपने जो कीट है वन में दीमक बचावर वास्ते कीटनाशी रो उपयोग अपने किसान भाई ने करना चाहे। आर री अगर बात करा तो राइजोबियम जैसे उर्वरक अंत में अपने जो दलहनी फसला है वनाने अपने फसला में PSB एजोबैक्टर जैसा जो जैव उर्वरक है वणों अपने टीको लगाना है और ये उपचारित करना है। और महत्वपूर्ण जो सावधानी अपने किसान भाई ने रखनी है वह है बीज उपचार हमेशा छायादार स्थान पे करना चाहे। रसायनारो उपचार करवारे बाद बीजा ने सीधा तेज धूप में कदी भी अपने नहीं सुखाना चाहे, अणु बीज अंकुरण क्षमता जो है वह नष्ट हो जावे ऐसा।
0: कुल मिलन वैसा आप यो कह सका हाँ कि बीज उपचार फसल प्रबंधन लिए एक मजबूत नींव है। झंडे बिना एक स्वस्थ फसल और बम्पर पैदावारी कल्पना आप नहीं कर सका हाँ। यो केवल पौधा ने जन्मजात बीमारियों मचावे है बल्कि किसान रे समय, श्रम और धनरी भी बचत करे, कृषि रा जोखिम ने कम करे और मुनाफा ने बढ़ावा वास्ते हर किसान ने बीज उपचार न अपनी खेती रो एक अनिवार्य हिस्सो बनावनो छावे।
1: बिल्कुल सा। तो आप ही भी अपने अपने किसान बहन यूज कहंगा कि वे अच्छी पैदावार वास्ते बीज उपचार अच्छो करे, बीजा रो चयन अच्छो करे ताकि हमारे जो फसल है वह अच्छी मिले सा। तो देखो अनुष्य वैसा कार्यक्रम में आया हाँ अपने किसान भाई और मनोरंजन करावा और होना प्यारा सो गीत
0: बिल्कुल होना सा।

0: असली नोट से क्यों खेल रहा है?
1: ब्रो, ये फटा है।
2: सुन, फटे फटे या पुराने नोट को
3: बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं।
1: वाओ, नया नोट मिलेगा?
2: हाँ, जिससे तू हमें पिज़्ज़ा पार्टी देगा।
3: आरबीआई कहता है, स्मार्ट बनो,
4: कूल रहो।
5: दी, ये देख कैसे?
6: हैप्पी बर्थडे भाई।
5: दीका,
7: हाँ मेरा फेवरेट कलर
6: हमेशा शॉपिंग।
8: आई नो माँ, बट खर्चा करने की भी यही उम्र है, राइट?
9: सेविंग करने की भी यही उम्र है।
10: आई नो पा, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
11: आई नो ना,
10: आरबीआई कहता है,
12: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
13: तो भाई साहब, गीत तो घणो बढ़िया सुनायो आप, और अबे आपा कार्यक्रम ने आगे बढ़ावा, तो कई जानकारी है सा?
14: तो देखो, अब आपने किसान भाई वास्ते जानकारी लाए, खरीफ जो फसला रे लिए उन्नत बीज रो चयन किसरे करनो है। आप ही खरीफ सीजन में जो भारतीय कृषि रे लिए बेहद महत्वपूर्ण समय वे जून रो। तो देखो, पूरी समय आप ही बात करा कि मानसून री तैयारी रो वे, और मानसून पे जो अगर आप ही बात करा तो बारिश पे निर्भर वे। तो अणी मौसम में मुख्य रूप में धान, मक्का, सोयाबीन, बाजरा, कपास और मूंग जैसी जो फसला है वे अपने किसान भाई उगावे है। तो खरीफ फसला में बम्पर पैदावार के लिए सब पहली अपने महत्वपूर्ण कदम उठानो है, उन्नत बीजा और सही बीजा रो चयन करनो। यदि बीज अपने उत्तम श्रेणी रो वेगा तो फसल में रोग कम लगेगा। विपरीत मौसम में जैसे कि सूखा या अत्यधिक बारिश अगर वेगी है तो वन में पौधा सुरक्षित रहेगा। तो देखो, आप ही बतावा कि जो उन्नत बीज है वंडा मुख्य मुख्य लाभ अपने किसान भाई ने किसरे मिले सा?
13: भाई सा, देखो उन्नत बीज रो चयन अगर करा तो वे आपा किस तरह कर सका? सबु पहली तो देखो, लाभ पहली तो आपा वनारा मापदंड बतावा कि अच्छा बीज रा पहचान करनो, चुनाव करनो, वनो परखनो जरूरी है। अंडे वास्ते आपाने देखनो है, देखो सबु पहली तो देखनी है प्योरिटी, मतलब अनुवांशिक और भौतिक शुद्धता। उन्नत बीज पूरी तरह साफ वेणा छावे, वना में कांकरा, भाटा या कणी भी तरह री मिट्टी या दूजी फसल जो है वंडा और खरपतवार बीज नहीं मिलना छावे। बीज दिखवा में एक समान कर रवेना छावे, एक रंग रवेना छावे।
14: बिल्कुल सा, और लारे यो भी बतावा कि देखो, उच्च अंकुरण क्षमता बीजा में वेनी चावे, हमेशा ऐसा बीजा रो चयन करनो चावे जनारी अंकुरण क्षमता कम कम 70-80% तक अधिक वे। प्रमाणित बीजा ने पैकेट या जानकारी लिखी थकी वेनी चावे सा।
13: और देखो, आगे बात करा तो रोग और कीट प्रतिरोधकता री बात करा तो खरीफ रा मौसम में नमी रा कारण कीटारो और फंगस रो हमलो ज्यादा वेवे। आणि वास्ते आपाने असी किस्मा रो चयन करनो है जो आपाने क्षेत्र में लागवा वाली मुख्य बीमारियां और कीटार प्रति रोग प्रतिरोधी वेवे। और साथ ही साथ जलवायु और मिट्टी रे अनुकूलन भी आपाने देखनो है कि आपाने क्षेत्र री जो मिट्टी है वा कसी है, दोमट है, काली है या रेतीली है, और वटे कतरी वर्का वेवे, और वंडा आधार पे आपाने किस्मा चुननी है। जैसे की कम पानी वाला क्षेत्र लिए सूखा ने सहन करवा वाली किस्म बेहतर वेवे, तो जटे ज्यादा बरसात वेवे वटे ऐसी फसल लेनी है जो ज्यादा पानी में उपज करे है।
14: बिल्कुल सा, और अभी बतावा कि जो आप चयनित जो बीज है वंडो आपने किसरे उपचार करनो है कि सबू पहली कवकनाशी जन्मे फंगस बचाव दवा आपने लगानी है। वनडे बाद दीमक और अन्य कीटों बचाव रे लिए दवा लगानी है। जैव उर्वरक रो प्रयोग करनो है जण में देखो फसल के अनुसार उपचारित बीजन ने करनो है ताकि जो पौधा ने अच्छो पोषण मिल सके सा।
13: बिल्कुल भाई सा, देखो कदी भी वेवे तो आपा बीज अच्छो वेवेला तो आपने हव फसल वेला। देखो मुख्य फसला री बात अगर आपा करा तो देखो धान है, मक्की है, सोयाबीन है।

0: है। ஆனா விசேஷ கிஸ்மாரே அகர் அப்ப லேவா தோ சால் பர் சபு ஜாதா அனாரி பேதாவார் வேவே ஹே ஓர் இனான லேன் ஆப்பா படியா ஆப்பா அகர் ராஜஸ்தான் ரி பாத் கரா தோ ராஜஸ்தான் மீன் அனா ஃபஸ்லா நே ஆப்பா படியா ஹவு ஆப்பா பேதாவார் கர் சகா ஓர் முனாஃபு கமாய் சகா ஹா
1: बिल्कुल सर। और घर पे आप अंकुरण परीक्षण भी कर सका अनु सीखवारे वास्ते बाजारू आप बीज खरीदने घर में पुराना बीजा रे अंकुरण क्षमता री जांच जो है वे आपने किसान भाई खुद कर सके। मिट्टी और पानी के अनुसार आपने चयन करना है। आपने आपने जो भी क्षेत्र है वन में विशेष मिट्टी जैसे कि रेतीली या भारी काली मिट्टी रे हिसाबों बीज रो चुनाव जो है वो आपने करना चाहे। बीजा रो प्रकार और अगर वंडी बात करा तो किसरे चुनना है कि उन्नत संशोधित बीज जनाने किसान भाई एक बार खरीदने अगली फसल के लिए अपने घर में ही सुरक्षित रख सके। संकर बीज की अगर बात करें तो बनारी पैदावार बहुत अधिक वेवे तो ये अपने अगर बीजा में ने कई बीमारी लग जा तो लड़वारी क्षमता वेवे तो ये साल अपने खरीदना चाहे। और प्रमाणित बीज जैसे कि सरकारी या अधिकृत जो संस्था है वनाया द्वारा परिचितों को बीज जो है वो अपने किसान भाई ने हमेशा लेना चाहे सा।
0: बढ़िया जानकारी आप दीदी हो वैसा देखो अबे आपने किसान भाइया ने आपके वो तो मनोरंजन करावा और बढ़िया सो गीत सुनाई दा सा।
1: बिल्कुल होना सा।

0: बहुत ही प्यारो गाणो जो है अनुश्री भाई साहब अपने किसान भाई बहन हुणियो। और अब देखो हाइड्रेशन योजना के बारे में जानकारी करावा कि खेती बाड़ी का जो काम है वे अपने किसान भाई बहन करे है खेता में। तो वणा देखो पानी अगर आपने बात करा डिहाइड्रेशन आपने बचनो है तो सब पहली कम लागत वाला हाइड्रेटिंग जो खाद्य पदार्थ है वे अपने किसान भाई ने सेवन रोज करना चाहे। क्योंकि देखो मौसमी फल जो है वे तरबूज अबार रोज आई रो है, वन में प्राकृतिक रूप में पानी वेवे शर्करा वेवे जो कि अपने शरीर ने तुरंत ऊर्जा देवे। लाया ला रहे खीरा ककड़ी खूब आई रही है तो वन में पानी की क्षमता खूब वेवे और यह शरीर ने ठंडक भी देवे ऐसा।
1: और आगे अगर बात करा भैसा तो देखो आपा लौकी री बात करा जो घी या लौकी शरीर ने ठंडो राखे और किडनी रे लिए भी लाभदायक वे। और मूली भी पानी री मात्रा बहुत ज़्यादा वे वे और पचावा में यह सहायक वे वे। टमाटर भी देखो अबारू खूब अहिरा है तो टमाटर में आपा इलेक्ट्रोलाइट और विटामिन वे वे। और खरबूजा जो है शरीर ने ठंडक देवे और ये अपने शरीर ने ठंडक राखे है।
0: बिल्कुल सर। प्राकृतिक पेय अगर बात करें तो अपने किसान भाई बहन देखो अपने लारे खेता पे ले जा सके नींबू पानी। तो खूब सारो नींबू पानी पीणो है, दन में छाछ रो उपयोग करना है, दन ने आप छाछ भी ले जा सका बोतल में भरने, सत्तू रो घोल आप वणाइन ले जा सका, वणु तुरंत अपने ऊर्जा मिले ताकत मिले और अपन देखो गर्मी राहत मिले। आपातकालीन अगर अपने खेत पे काम करता समय चक्कर आई रहा है तो ORS रो घोल भी आप ही बनाई सका। और देखो ORS रो घोल के वास्ते पानी और चीनी की आवश्यकता भी और हल्को आधो चम्मच सेंधो नमक। वणु कही है कि अगर आपने लूल भी लागी है तो वणु आपने बचाव वे सके ऐसा।
1: बिल्कुल वैसा देखो खेत में काम करता तक काबरू आप देखी रहा कि गर्मी घनी पड़ी रही है तो किसान भाई ने स्वास्थ्य रो ध्यान रखना जरूरी है क्योंकि स्वस्थ रह वाला तो इस आपा काम काज करी सकाला। तो यह तो आपा जानकारी दी दी है वैसा। और देखो पचे आपने चालवारो भी टाइम वेला तो फिर चालता चालता एक बढ़िया सो गीत और सुनाई था आपने किसान भाई ने।
0: बिल्कुल।

0: तो देखो अनुश्री भाई साहब, बहुत प्यारो गीत जो है वो अपने किसान भाई बहन हुणियों। खूब सारी जानकारी आज आपने अच्छी अच्छी कराई, हाउ हाउ गीत हुणाए। अब देखो कार्यक्रम नो टाइम वे गयो है, तो अपने किसान भाइयों और मिलांगा, खूब सारी बातें करांगा। लेकिन अब चालां सा,
1: हाँ
0: राम
1: सर,
0: राम
1: राम
0: सा।
1: राम सर।

अभी आपने सुना किसान भाइयों का कार्यक्रम कृषि जगत। ये आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। दिन के 3 बजने वाले हैं, आइए जुड़ते हैं हमारे दिल्ली केंद्र से। वहां से सुनेंगे हिंदी में समाचार। समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ व्यापक चर्चा की। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों नेताओं ने आपसी संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की और ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा, ऑटोमोबाइल आदि क्षेत्रों में सहयोग के नए रास्ते तलाशे। मंत्रालय ने कहा कि दोनों नेताओं ने आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। मंत्रालय के अनुसार दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने तथा वैश्विक दक्षिण के हितों को आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। सुश्री रोड्रिगेज कल 5 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। उनके साथ विदेश मामलों, अर्थव्यवस्था और वित्त, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा परिवहन मंत्रियों का प्रतिनिधिमंडल भी आया है। इससे पहले सुश्री रोड्रिगेज ने विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी मुलाकात से दोनों देशों के बीच सहयोग और मजबूत होगा। विदेश मंत्रालय ने बताया कि वेनेजुएला का प्रतिनिधिमंडल ऊर्जा, फार्मास्यूटिकल्स क्षेत्रों से जुड़े कई स्थलों का दौरा करेगा। इसका उद्देश्य भारत की तकनीकी और औद्योगिक क्षमताओं के साथ अवसरों की तलाश करना है। भारत ऊर्जा और निवेश के क्षेत्रों में वेनेजुएला का एक महत्वपूर्ण साझेदार रहा है। ब्रिटेन की विदेश और राष्ट्रमंडल मामलों की मंत्री यविट कूपर भी आज प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगी। सुश्री कूपर आज शाम विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ बैठक करेंगी। वे 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर कल रात नई दिल्ली पहुंची। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि उनकी यात्रा भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का अवसर प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज से ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक शुरू होगी। 2 दिन की बैठक में चीन, ब्राजील, मिस्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। उत्तर पूर्वी परिषद का 73वां पूर्ण सत्र मेघालय के शिलांग में चल रहा है। गृहमंत्री अमित शाह सत्र की अध्यक्षता कर रहे हैं। ये पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा कर रहे हैं। बैठक में पर्यटन, कृषि, आर्थिक गलियारे के विकास, बुनियादी ढांचा और संपर्क बढ़ाने पर चर्चा हो रही है।

0: पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय ने कहा कि इन विचार विमर्शों से राज्यों और हितधारकों के बीच समन्वित कार्रवाई को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, जिससे साझा विकास लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने बैठक के बारे में जानकारी दी है।
1: ये बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग है नॉर्थ ईस्ट के लिए। इसके द्वारा है बहुत सारे स्कीम के बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में यहाँ पर डिसाइड होता है। और 2014 के बाद तो नॉर्थ ईस्ट का जो भी फंड है, डेवलपमेंट फंड है, इसके द्वारा बहुत सारे योजना शुरू हो चुका है, काम हो रहा है।
0: वयोवृद्ध निर्माता और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड CBFC के पूर्व अध्यक्ष पहलाज निहलानी का आज मुंबई में निधन हो गया। वे 76 वर्ष के थे। 10 जनवरी 1950 को जन्मे निहलानी ने 1982 में आई फिल्म हथकड़ी से निर्माता के रूप में अपने करियर की शुरुआत की थी। 1986 में आई फिल्म इल्जाम से अभिनेता गोविंदा को पहला बड़ा ब्रेक देने का श्रेय उन्हें दिया जाता है। जनवरी 2015 में श्री निहलानी को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने सख्त नए दिशा निर्देश लागू किए, जिनके तहत ए रेटिंग वाली फिल्मों में भी कुछ अपशब्दों पर प्रतिबंध लगाया गया और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने या हिंसा दर्शाने वाली सामग्री को सीमित करने का प्रयास किया गया। मौसम विभाग ने आज केरलम में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के आगमन की पुष्टि की है। मॉनसून 3 दिन देर से आया है। 1 जून से केरलम में मॉनसून के आने की संभावना थी। विभाग ने 9 जून तक केरलम और माहे में कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने अगले 4 दिन के दौरान उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भी तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। अगले 2 से 3 दिन के दौरान लक्षद्वीप, तटीय कर्नाटक और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में भी इसी तरह की स्थिति का अनुमान है। दिन के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, छत्तीसगढ़, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में कुछ स्थानों पर आंधी की संभावना है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, मध्य प्रदेश, आंतरिक कर्नाटक, पंजाब, राजस्थान में भी इसी तरह की स्थिति रहने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। दोपहर के 3:05 हुए हैं। हमारी आज के इस सभा के प्रसारण अब यहीं पर विराम लेते हैं। सांध्यकालीन सभा के साथ शाम 5 बजे फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए।

मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजे हैं। हमारी आज की सांध्यकालीन सभा अब आरंभ होती है। आइए सभा की शुरुआत में हम सुनते हैं युवा साथियों का दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

0: सपनों को दे नई उड़ान, विचारों को दे नई पहचान, युवाओं की शक्ति और भारत का सम्मान।
1: ज्ञान की रोशनी, उम्मीदों का आसमान, लेकर आए हैं हम एक नया अभिमान।
0: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं युववाणी, जहां युवा सोच बनती है नई दिशा और नए भारत की परिभाषा।
1: और मैं हूं आपकी दोस्त दिव्या।
0: और मैं हूं गार्गी।
1: स्वागत है आपका युववाणी में। आज की इस खास प्रस्तुति में बात होगी इंडिया एट द रेट 2047 के सपनों और संकल्पों की, जल संरक्षण और रेजुविनेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज जैसे महत्वपूर्ण विषयों की।
0: मुलाकात होगी उन प्रेरणादायक लोगों से जिन्होंने अपने कार्यों से समाज में अलग पहचान बनाई, और जानेंगे देश के उभरते हुए यंग टेक्नोक्रेट्स के बारे में।
1: साथ ही नज़र डालेंगे आज के इतिहास के पन्नों पर, जानेंगे आज के जन्मदिवसों की खासियत।
0: मिलेगी आपको खेल जगत की ताज़ा खबरें और शेयर मार्केट के महत्वपूर्ण हलचलें भी। तो अगले कुछ मिनट हमारे साथ रहिए, क्योंकि युववाणी में मिलेगी जानकारी, प्रेरणा और नए भारत की कहानी।

0: तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे एक ऐसे विषय की जो हमारे वर्तमान और भविष्य दोनों से जुड़ा है। विषय है हमारा भारत 2047, जल संसाधनों का पुनर्जीवन।
1: दोस्तों, जब हम भारत एट द रेट 2047 की बात करते हैं तो हमारे मन में विकसित भारत की तस्वीर उभरती है। एक ऐसा भारत जो तकनीक, शिक्षा, स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था में आगे हो। लेकिन इन सब के लिए एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, पानी।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, जल ही जीवन है। यह सिर्फ एक कहावत नहीं बल्कि सच्चाई है। बिना पानी के न खेती हो सकती है, न उद्योग चल सकते और न ही हमारा दैनिक जीवन।
1: आज स्थिति यह है कि कहीं शहरों और गांवों में पानी की कमी महसूस की जा रही है, कहीं भूजल स्तर लगातार नीचे जा रहा है तो कहीं नदियां प्रदूषण का शिकार हो रही हैं।
0: ऐसे में भारत 2047 का सपना तभी पूरा होगा जब हम अपने जल संसाधनों को बचाने और पुनर्जीवित करने के लिए अभी से गंभीर प्रयास करें।
1: जी हाँ दोस्तों, भारत नदियों, झीलों, तालाबों और भूजल जैसे अनेक जल स्रोतों में समृद्ध देश है। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, नर्मद, गोदावरी और कावेरी जैसी नदियाँ करोड़ों लोगों की जीवन रेखा है।
0: बिल्कुल, लेकिन बढ़ती आबादी, शहरीकरण और जलवायु परिवर्तन के कारण इस संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है। इसलिए अब सिर्फ पानी का उपयोग ही नहीं बल्कि उसका संरक्षण भी बहुत ज़रूरी हो गया है।
1: तो दोस्तों, आइए अब हम जानते हैं कि हमारे सामने मुख्य चुनौतियाँ क्या है। सबसे बड़ी चुनौती है भूजल का अत्यधिक दोहन। कई क्षेत्रों में लोग ज़रूरत से ज़्यादा पानी निकाल रहे हैं। दूसरी चुनौती है जल प्रदूषण। उद्योगों का अपशिष्ट, प्लास्टिक कचरा और घरेलू गंदगी नदियाँ और तालाबों को प्रभावित कर रही है।
0: बिल्कुल, तीसरी चुनौती है वर्षा जल का उचित संग्रह न होना। बारिश का बहुत बड़ा हिस्सा बहकर निकल जाता है। और चौथी चुनौती है जलवायु परिवर्तन। कभी अत्यधिक बारिश होती है तो कभी सूखे जैसी स्थिति बन जाती है।
1: जी हाँ दोस्तों, पुनर्जीवन का अर्थ केवल पुराने तालाबों की सफाई नहीं, इसका अर्थ है जल स्रोतों को फिर से जीवंत बनाना।
0: जब किसी सूखे

तालाब सूखे हो चुके तालाब में फिर पानी भरने लगे, जब नदियाँ स्वच्छ हों, जब भूजल स्तर बढ़े और हर घर तक पर्याप्त पानी पहुँचे, तभी हम कह सकते हैं।

0: सदियों से तालाब, कुएं, बावड़ियां और झीलें जल संरक्षण का माध्यम रही हैं। राजस्थान की बावड़ियां और उत्तराखंड के पारंपरिक जल स्रोत इसका शानदार उदाहरण रहे हैं। आज आवश्यकता है कि इन पारंपरिक प्रणालियों को आधुनिक तकनीक से जोड़ा जाए।
1: बिल्कुल, अब सवाल ये उठता है कि युवा क्या कर सकते हैं इसके लिए?
0: बहुत कुछ कर सकते हैं। सबसे पहले पानी की बर्बादी को रोकें, घर में नल खुला ना छोड़ना, जरूरत के अनुसार पानी का उपयोग करना और दूसरों को जागरूक करना छोटी लेकिन महत्वपूर्ण शुरुआत हो सकती है। युवा जल संरक्षण अभिनयों में भाग लेकर समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं।
1: बिल्कुल, आज तकनीक भी जल संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।
0: स्मार्ट सेंसर, ड्रोन, सैटेलाइट और डेटा एनालिटिक्स की मदद से जल स्रोतों की निगरानी की जा रही है।
1: और तो और किसानों के लिए इरिगेशन और स्प्रिंकलर सिस्टम जैसी तकनीकें पानी की बचत में मददगार साबित हो रही है।
0: कल्पना कीजिए 2047 का भारत, एक ऐसा भारत जहां हर नागरिक को स्वच्छ जल उपलब्ध हो,
1: जहां नदियां स्वच्छ और आविरल बह रही हो, जहां हर गांव और शहर जल संरक्षण को अपनी जिम्मेदारी समझता हो,
0: जहां तकनीक और जन भागीदारी मिलकर जल संकट को अवसर में बदल चुकी हो।
1: दोस्तों, जल संरक्षण केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, हम सभी का कर्तव्य है।
0: यदि आज हम पानी की हर बूंद का महत्व समझेंगे तो आने वाली पीढ़ियों को जल संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: तो दोस्तों अब हम बात करेंगे भारतीय सिनेमा की दो ऐसी हस्तियों की जिन्होंने अपनी प्रतिभा और मेहनत से दर्शकों के दिलों में एक अलग ही पहचान बनाई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अभिनेता अशोक सराफ और प्रसिद्ध अभिनेत्री बीना राय के बारे में।
3: दो अलग अलग दौर, दो अलग अलग शैलियाँ, लेकिन दोनों का भारतीय सिनेमा में योगदान बेहद महत्वपूर्ण रहा।
2: दोस्तों जब भी मराठी सिनेमा और रंगमंच की बात होती है तो एक नाम बहुत सम्मान के साथ लिया जाता है, अशोक सराफ।
3: जी हाँ दोस्तों, अशोक सराफ, इनका जन्म 4 जून 1947 को मुंबई में हुआ था। उन्होंने अपने अभिनय का सफर की शुरुआत रंगमंच से की थी और धीरे धीरे फिल्मों की दुनिया में अपनी पहचान बनाई।
2: बिल्कुल, उनकी खास बात यह रही कि उन्होंने हास्य अभिनय को एक नई ऊंचाई दी। उनका अंदाज इतना सहज और स्वाभाविक था कि दर्शक खुद को उनमें जुड़ा हुआ और महसूस करते थे।
3: जी हाँ दोस्तों, कई बार कॉमेडी को इतना आसान माना जाता है लेकिन वास्तव में लोगों को हंसाना सबसे कठिन कामों में से एक है और अशोक सराफ ने यह काम दशकों से बहुत खूबसूरती से करते आ रहे हैं।
2: बिल्कुल, उन्होंने मराठी फिल्मों के साथ साथ हिंदी फिल्मों में भी काम किया है। उनकी कॉमिक टाइमिंग इतनी शानदार थी कि कई फिल्मों में उनकी मौजूदगी ही मनोरंजन की गारंटी बन जाती है।
3: उनकी लोकप्रियता सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं थी बल्कि टेलीविजन पर भी उन्होंने दर्शकों तक खूब मनोरंजन किया।
2: हर सफल व्यक्ति की तरह अशोक सराफ की यात्रा भी संघर्षों से भरी रही। उन्होंने छोटे छोटे अवसरों से शुरुआत की और धीरे धीरे अपनी मेहनत के दम पर एक बड़ा मुकाम हासिल किया।
3: उनकी कहानी हमें सिखाती है कि प्रतिभा के साथ धैर्य और निरंतर प्रयास भी जरूरी है। अशोक सराफ को उनके विनम्र स्वभाव और जमीन से जुड़ी व्यक्तित्व के लिए जाना जाता है।
2: बिल्कुल, कई कलाकार सफलता मिलने के बाद बदल जाते हैं लेकिन अशोक सराफ हमेशा सफल और सहज बने रहे।
3: शायद यही कारण है कि उन्हें केवल एक अभिनेता नहीं बल्कि एक प्रेरणादायक व्यक्ति के रूप में देखा जाता है।
2: युवाओं के लिए अशोक सराफ की कहानी एक महत्वपूर्ण संदेश देती है।
3: यदि आप अपने काम से प्रेम करते

0: और लगातार मेहनत करते हैं तो सफलता देर से सही लेकिन ज़रूर मिलती है।
1: बिल्कुल। अब बात करते हैं हिंदी सिनेमा की एक ऐसी अभिनेत्री की जिन्होंने अपने सौम्य व्यक्तित्व और प्रभावशाली अभिनय से दर्शकों के दिलों में विशेष स्थान बनाया है।
0: हम बात कर रहे हैं अभिनेत्री बीना राय की।
1: जी हाँ, बीना राय भारतीय सिनेमा के स्वर्णिम दौर की उन अभिनेत्रियों में शामिल है जिनकी स्क्रीन उपस्थिति बेहद प्रभावशाली मानी जाती थी।
0: बीना राय का जन्म 1930 के दशक में हुआ था। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत उस समय की जब भारतीय सिनेमा तेजी से विकसित हो रहा था।
1: बिल्कुल, उनकी सुंदरता, आत्मविश्वास और अभिनय क्षमता ने उन्हें जल्दी ही दर्शकों के बीच लोकप्रिय बना दिया।
0: बीना राय ने अपने कई यादगार फिल्मों में काम किया। उनकी सबसे चर्चित फिल्मों में ऐतिहासिक और सामाजिक विषयों पर आधारित फिल्में रही हैं।
1: बिल्कुल, विशेष रूप से ऐतिहासिक किरदारों को निभाने में उनकी अदाकारी का काफ़ी प्रशंसा हुई है। वे पर्दे पे जब भी आती थीं तो दर्शक उनके अभिनय और व्यक्तित्व से प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाते थे।
0: बीना राय की अभिनय शैली बहुत संतुलित और प्रभावशाली थी। वह अपने भावों और संवाद अदाकारी के माध्यम से पात्रों में जीवंत बना देती थी। आज भी उनकी फिल्मों को देखकर उस दौर के सिनेमा की गरिमा और खूबसूरती का अनुभव किया जा सकता है।
1: बिल्कुल, बीना राय का जीवन केवल अभिनय तक सीमित नहीं था। उन्होंने उस दौर में अपनी पहचान बनाई जब फिल्म उद्योग में महिलाओं के लिए अवसर और चुनौतियां दोनों अलग प्रकार की थी। उन्होंने अपनी प्रतिभा और आत्मविश्वास से यह साबित किया कि महिलाएं हर क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकती हैं।
0: आज की युवा पीढ़ी बीना राय के जीवन से आत्मविश्वास, समर्पण और मेहनत की सीख ले सकती है। सफलता केवल प्रतिभा से नहीं मिलती बल्कि अनुशासन और निरंतर प्रयास से मिलती है।
1: दोस्तों, अगर हम अशोक सराफ और बीना राय के जीवन को देखें तो दोनों में एक बात समान दिखाई देती है, वह है अपने काम के प्रति समर्पण। एक ने हास्य अभिनय के माध्यम से लोगों को मुस्कुराना सिखाया
0: तो दूसरी ने अपने अभिनय से भारतीय सिनेमा को गरिमा और गहराई प्रदान की। दोनों ने अपने अपने क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल की और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत बने।
1: बिल्कुल दोस्तों, किसी भी महान व्यक्ति की पहचान केवल उसकी उपलब्धियों से नहीं होती बल्कि उससे भी होती है कि वह समाज को क्या संदेश देकर जाता है। अशोक सराफ और बीना राय दोनों ने ही हमें यह सिखाया है कि मेहनत, लगन और सादगी सफलता की असली कुंजी है।

0: दोस्तों, आज के दौर में युवा केवल नौकरी तलाशने वाले नहीं हैं, बल्कि रोजगार देने वाले भी बन रहे हैं। नई सोच, नई तकनीक और बड़े सपनों के साथ भारत के युवा दुनिया में अपनी पहचान बना रहे हैं। अब हम बात करेंगे ऐसे ही दो युवा उद्यमियों के बारे में जिन्होंने संघर्षों को अपनी ताकत बनाया और एक सफल स्टार्टअप खड़ा किया।
1: जी हाँ दोस्तों, अब हम बात करेंगे संयम जैन और सनी जैन की, जिन्हें देश भर के लोगों ने शार्क टैंक इंडिया में देखा और सराहा।
0: बिल्कुल दोस्तों, हर सफलता के पीछे एक कहानी होती है। कुछ कहानियाँ आसान होती हैं और कुछ संघर्षों से भरी होती है।
1: जी हाँ दोस्तों, संयम और सनी जैन की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। दोनों सौतेले भाई हैं, लेकिन उनके रिश्तों में अपनापन और भरोसा हमेशा बना रहा।
0: बिल्कुल, जीवन में उन्होंने कई कठिन परिस्थितियों का सामना किया। कम उम्र में पारिवारिक चुनौतियाँ आईं, लेकिन उन्होंने हार मानने के बजाय आगे बढ़ने का रास्ता चुना।
1: एक दिलचस्प बात यह है कि संयम जैन की पढ़ाई में काफ़ी अच्छे थे, लेकिन उनका मन व्यवसाय और डिजिटल दुनिया में लगता था।
0: बहुत कम उम्र में उन्होंने ऑनलाइन बिजनेस और डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सीखना शुरू किया। जहां ज़्यादातर युवा केवल नौकरी के बारे में सोचते, वहीं उन्होंने खुद का व्यवसाय खड़ा करने का सपना देखा।
1: दोस्तों, सफलता की राह कभी सीधी नहीं होती।
0: संयम को शुरुआती दौर में धोखाधड़ी का सामना भी करना पड़ा था। उनके कुछ ऑनलाइन बिजनेस प्रयास असफल हुए और आर्थिक नुकसान भी हुआ,
1: लेकिन यही वह मोड़ था जहां उन्होंने हार मानने की बजाय सीखने का फैसला किया।
0: अक्सर लोग पहली असफलता के बाद रुक जाते हैं, लेकिन सफल लोग उसी असफलता को अगली सफलता की सीढ़ी बना लेते हैं।
1: इसके बाद दोनों भाइयों ने एक नया विचार सोचा। उन्होंने स्किन केयर और पर्सनल केयर के क्षेत्र में काम करने का निर्णय लिया और गर सोप नाम का एक ब्रांड शुरू किया।
0: बिल्कुल, उनका उद्देश्य था ऐसे उत्पाद बनाना जो आयुर्वेद और आधुनिक विज्ञान दोनों का संतुलन प्रस्तुत करे। शुरुआत छोटी थी, लेकिन सोच बड़ी थी।
1: दोस्तों, आज के समय में तकनीक का सही उपयोग किसी भी व्यवसाय को नई ऊंचाई तक पहुंचा सकता है।
0: बिल्कुल, संयम और सनी ने डिजिटल मार्केटिंग की शक्ति को समझा।
1: उन्होंने सोशल मीडिया, ऑनलाइन विज्ञापन और डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करके अपने ब्रांड को लोगों तक पहुंचाया,
0: और यही वजह रही कि उनका स्टार्टअप तेजी से आगे बढ़ने लगा।
1: इसके बाद आया वह अवसर जिन्हें उन्हें राष्ट्रीय पहचान दिलाई। उन्होंने शार्क टैंक इंडिया में अपनी कंपनी प्रस्तुत की। शार्क्स ने उनके बिजनेस को समझा। मार्केटिंग रणनीति और आत्मविश्वास में काफ़ी सराहना मिली।
0: बिल्कुल, उनकी कहानी सुनकर कई लोग भावुक भी हुए, क्योंकि इसमें संघर्ष, मेहनत और दृढ़ संकल्प तीनों दिखाई देते थे। शार्क टैंक में उन्हें

0: निवेश का प्रस्ताव भी मिला। आखिरकार उन्होंने निवेश स्वीकार किया और अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने का अवसर प्राप्त किया।
1: लेकिन दोस्तों, केवल निवेश ही सफलता नहीं देता, सफलता मिलती है सही दिशा, मेहनत और लगातार सीखते रहने से। आज भारत स्टार्टअप्स का देश बनता जा रहा है।
0: देश के युवा नए नए विचार लेकर सामने आ रहे हैं। संयम और सनी जैन इसी नई पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे बताते हैं कि सफलता के लिए हमेशा बड़ी डिग्री जरूरी नहीं होती, लेकिन सीखने की इच्छा और मेहनत जरूरी होती है।
1: दोस्तों, आज तकनीक केवल इंजीनियरों तक सीमित नहीं है। जो व्यक्ति तकनीक को समझता है और उसका सही उपयोग करता है, वह किसी भी क्षेत्र में सफलता पा सकता है।
0: बिल्कुल, चाहे वह स्किन केयर हो, शिक्षा हो, कृषि हो या स्वास्थ्य। यही कारण है कि आज के युवाओं को तकनीक के साथ साथ उद्यमिता की भी समझ विकसित करनी जरूरी है।
1: तो दोस्तों, आपके पास कोई नया आइडिया है तो उससे डरिए मत। छोटी शुरुआत भी बड़े परिणाम ला सकती है।
0: बिल्कुल, गलतियाँ होंगी, असफलताएँ आएंगी, लेकिन सीखना नहीं छोड़ना चाहिए। यही बात संयम और सनी जैन की यात्रा हमें सिखाती है।
1: दोस्तों, हर पीढ़ी में अपने नायक होते हैं। आज के दौर में ऐसे युवा उद्यमी ही हमारे नायक हैं, जो नए अवसर पैदा कर रहे हैं और दूसरों को प्रेरित कर रहे हैं।
0: संयम और सनी जैन की कहानी हमें बताती है कि परिस्थितियाँ चाहे कैसी भी हो, अगर इरादे मजबूत हो तो मंजिल ज़रूर मिलती है।

0: दोस्तों, अब हम बात करने जा रहे हैं भारतीय सिनेमा की एक ऐसी अभिनेत्री की जिन्होंने अपनी मेहनत, प्रतिभा और दमदार अभिनय से साउथ फिल्म इंडस्ट्री से लेकर बॉलीवुड तक अपनी अलग पहचान बनाई। हम बात कर रहे हैं प्रिया मणि की।
1: बिल्कुल, प्रिया मणि का जन्म 1984 को बेंगलोर, कर्नाटक में हुआ था। बचपन से ही वे पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद और अन्य गतिविधियों में भी काफ़ी सक्रिय थी। बहुत कम लोग जानते हैं कि फिल्मों में आने से पहले वे मॉडलिंग भी किया करती थी।
0: बिल्कुल, स्कूल के दिनों में ही उन्होंने कई प्रसिद्ध सिल्क ब्रांड्स के लिए विज्ञापन किए। उनकी प्रतिभा को देखकर मशहूर निर्देशक भारती राज ने उन्हें फिल्मों में आने का अवसर दिया। हालांकि उस समय प्रिया मणि अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहती थी, लेकिन किस्मत उन्हें अभिनय की दुनिया में ले आई।
1: बिल्कुल, प्रिया मणि ने अपनी पढ़ाई बेंगलुरु के श्री अरविंदो मेमोरियल स्कूल और बाद में बिशप कॉटन विमेंस क्रिश्चियन कॉलेज से पूरी की। वे अंग्रेजी, हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम समेत कई भाषाएं धाराप्रवाह बोल सकती हैं।
0: उनके फिल्मी सफ़र की शुरुआत साल 2003 में तेलुगु फिल्म एवरे अटागांडू से हुई। शुरुआती फिल्मों में उन्हें संघर्ष का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, लगातार अपने अभिनय को निखारती रहीं।
1: फिर आया साल 2007 और फिल्म परुथिविरन। इस फिल्म ने प्रिया मणि की ज़िंदगी बदल दी। ग्रामीण परिवेश पर आधारित इस फिल्म में उनके अभिनय ने दर्शकों को भावुक कर दिया और समीक्षकों को भी प्रभावित किया।
0: इस शानदार प्रदर्शन के लिए प्रिया मणि को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का सम्मान मिला। इसके साथ ही उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड और तमिलनाडु स्टेट फिल्म अवार्ड भी प्रदान हुए। यह उपलब्धि किसी भी कलाकार के लिए बेहद खास होती है।
1: बिल्कुल, इसके बाद प्रिया मणि ने कई भाषाओं की फिल्मों में लगातार शानदार प्रदर्शन किया। थिरकथा, राम पुथिया मुखम, रावणम, प्राचीयट्टम एंड द सेंट, विष्णुवर्धन और चारुलता जैसी फिल्मों में उनकी करियर को नई ऊंचाइयां दी।
0: खास बात यह है कि प्रिया मणि ने हर तरह के किरदार निभाने का साहस दिखाया, चाहे भावनात्मक भूमिका हो, एक्शन हो या गंभीर सामाजिक विषय, उन्होंने हर किरदार को पूरी ईमानदारी से निभाया।
1: साल 2012 में आई कन्नड़ फिल्म चारुलता के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड मिला। इस फिल्म में उन्होंने दोहरी भूमिका निभाई थी, जिसे दर्शकों और समीक्षकों ने खूब सराहा।
0: प्रिया मणि ने बड़े पर्दे के साथ साथ डिजिटल दुनिया में भी अपनी पहचान बनाई। वेब सीरीज द फैमिली मैन में उनके अभिनय के एक बार फिर साबित कर दिया कि किसी भी माध्यम से वह अपनी छाप छोड़ सकती हैं।
1: इसके अलावा वे नारप्पा, विराट पर्वम, जवान, आर्टिकल 370 और जवान ऑफिसर ऑन ड्यूटी जैसी चर्चित फिल्मों में भी नज़र आ चुकी हैं। आज भी वे भारतीय सिनेमा की सबसे सम्मानित अभिनेत्रियों में गिनी जाती हैं।
0: आपको एक और दिलचस्प बात बताएं कि प्रिया मणि प्रसिद्ध अभिनेत्री विद्या बालन के रिश्तेदार हैं। कला और संगीत का वातावरण उन्हें अपने परिवार से मिला है।
1: बिल्कुल, निजी जीवन की

0: करें तो साल 2016 में उन्होंने इवेंट ऑर्गेनाइजर मुस्तफा राज से सगाई की और 2017 में दोनों ने विवाह कर लिया। अलग अलग धर्मों से होने के बावजूद दोनों ने अपने रिश्ते को मजबूती से निभाया और समाज के सामने खूबसूरत उदाहरण पेश किया है।
1: प्रिया मणि केवल एक सफल अभिनेत्री ही नहीं बल्कि पशु संरक्षण और सामाजिक जागरूकता से जुड़ी अभिनयों में भी सक्रिय रूप से भाग लेती है। उन्होंने कई सामाजिक मुद्दों पर अपनी पहचान बुलंद की है।
0: राष्ट्रीय पुरस्कार, 3 फिल्मफेयर पुरस्कार और कई अन्य सम्मानों से सम्मानित प्रिया मणि का सफर यह सिखाता है कि अगर मेहनत और समर्पण सच्चा हो तो सफलता जरूर मिलती है।
1: और यही कारण है कि प्रिया मणि आज लाखों लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बन चुकी हैं।

0: चाहिए, वो भी ऐप से।
1: फसा। अनजान ऐप से बचें।
2: RBI कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: हॉलीवुड की दुनिया से कई सितारे आए और गए, लेकिन कुछ नाम ऐसे होते हैं जो सिर्फ अपनी कहानी की वजह से नहीं, बल्कि अपनी पूरी शख्सियत की वजह से इतिहास का हिस्सा बन जाते हैं। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी

0: अद्भुत कलाकार की जिनका नाम है एंजेलिना जॉली।
1: बिल्कुल, एक ऐसी एक्ट्रेस, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और ह्यूमैनिटेरियन जिन्होंने अपने काम से करोड़ों लोगों को प्रभावित किया। उनकी फिल्में दुनिया भर में अरबों डॉलर की कमाई कर चुकी हैं। उन्हें कई बार हॉलीवुड की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस भी माना गया है।
0: एंजेलिना जॉली का जन्म आज ही के दिन 1975 में कैलिफोर्निया में हुआ था। उनके पिता जॉन वाइट एक प्रसिद्ध अभिनेता थे, लेकिन एंजेलिना का बचपन संघर्षों से भरा रहा। माता पिता के अलग होने के बाद उनकी परवरिश उनकी माँ मार्केलाइन बेंटेंट ने की थी।
1: बिल्कुल, बचपन से ही उन्हें अभिनय में रुचि थी। उन्होंने ली स्ट्रेबर्ग्स थिएटर इंस्टीट्यूट में एक्टिंग सीखी और धीरे धीरे अपने सपनों को की ओर बढ़ने लगी।
0: उनके फिल्मी करियर की शुरुआत 1993 में साइबर 2 में हुई। इसके बाद हैकर्स फिल्म में उनकी भूमिका में लोगों का ध्यान आकर्षित किया, लेकिन उनकी असली पहचान बनी जॉर्ज वेलेस और जिया जैसी फिल्मों से, जिसमें उनके अभिनय को क्रिटिक्स ने खूब सराहा।
1: फिर आया साल 1999 और फिल्म गर्ल इंटरप्टेड। फिर इस फिल्म में लीजा रो का उनका किरदार आज भी याद किया जाता है। इसी भूमिका के लिए एंजेलिना जॉली ने एकेडमिक अवार्ड ऑफ बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस, गोल्डन ग्लोब अवार्ड और स्क्रीन एक्ट्रेस गाइड अवार्ड जीता।
0: जी हाँ दोस्तों, यह उनके करियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। इसके बाद वह हॉलीवुड की सबसे चर्चित अभिनेत्रियों में शामिल हो गई। साल 2001 में लारा क्रॉफ्ट टॉम राइडर रिलीज हुई और देखते ही देखते एंजेलिना जॉली दुनिया भर की एक्शन एक्टर्स में शामिल हो गई।
1: इस फिल्म की सफलता ने उन्होंने इंटरनेशनल सुपरस्टार बना दिया। उन्होंने इस किरदार के लिए मार्शल आर्ट ट्रेनिंग ली और अपनी फिजिकल परफॉर्मेंस से दर्शकों को प्रभावित किया।
0: इसके बाद मिस्टर एंड मिसेस स्मिथ, वांटेड, सॉल्ट, द ट्यूरिस्ट जैसी फिल्मों में उनका एक्शन अवतार देखने को मिला। खास बात यह है कि उस समय में प्रति फिल्म 15 से 20 मिलियन डॉलर तक फीस लेने के वाली हॉलीवुड की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली अभिनेत्रियों में ये शामिल हुई थी।
1: बिल्कुल, लेकिन एंजेलिना सिर्फ एक्शन रोल्स तक सीमित नहीं रही। उन्होंने माइटी हार्ट और चांगलिंग जैसी फिल्मों में बेहद गंभीर और भावनात्मक भूमिकाएं निभाई हैं।
0: फिल्म में क्रिस्टिन कॉलिंस के किरदार के लिए उन्हें एकेडमिक अवार्ड फॉर द बेस्ट एक्ट्रेस, बाफ्ता अवार्ड्स, गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स, स्क्रीन एक्टर गाइड अवार्ड्स के लिए नॉमिनेशन मिला था। यह उनके अभिनय कौशल का बड़ा प्रमाण था।
1: एनिमेशन की दुनिया में भी उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई है। शार्क टेल और कुंग फू पैंडा सीरीज में उनकी वॉइस एक्टिंग को भी काफ़ी पसंद किया गया है। कुंग फू पैंडा में उन्होंने टाइग्रेस नामक किरदार को अपनी आवाज़ दी थी।
0: साल 2014 में डिज्नी की फिल्म मेलिफिसेंट आई, जिसमें उन्होंने एक शक्तिशाली और रहस्यमय परी का किरदार निभाया। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बड़ी सफल साबित हुई और एंजेलिना की लोकप्रियता एक बार फिर नई ऊंचाइयों पर पहुंच गई।
1: बिल्कुल, बाद में उन्होंने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की फिल्म एटर्नल्स में थेना का किरदार निभाया, जिससे वे मार्वल यूनिवर्स का भी हिस्सा बन गई।
0: दोस्तों अब बात करते हैं उनके अवार्ड्स और अचीवमेंट्स की। एंजेलिना जोली को अपने करियर में कई अवार्ड्स मिले। एक अवार्ड एकेडमी का, एक अवार्ड ग्लोबल, तीन अवार्ड्स उनको गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स जीते। स्क्रीन एक्टर गाइड अवार्ड्स उन्हें दो मिले थे और टोनी अवार्ड्स उन्होंने एक जीता था।
1: तो दोस्तों अब हम बात करते जा रहे हैं एक ऐसे शख्स की जिन्होंने कॉमेडी फिल्मों, रेडियो, पॉडकास्टिंग और सामाजिक मुद्दों पर अपनी बेबाक राय से पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। ये है रसेल ब्रांड।
0: 4 जून 1947 को इंग्लैंड के एक्सेस में जन्मे रसेल ब्रांड का बचपन आसान नहीं था। छोटी उम्र में ही उन्होंने कई व्यक्तिगत और पारिवारिक चुनौतियों का सामना किया, लेकिन इन्हीं अनुभवों से उनके व्यक्तित्व को मजबूत बनाया।
1: अभिनय और मनोरंजन की दुनिया में उनकी रुचि बचपन से ही थी। स्कूल के नाटकों में हिस्सा लेने के बाद उन्होंने इटालिया कैंटी एकेडमी में प्रशिक्षण लिया। हालांकि उनका सफ़र कई मुश्किलों से भरा रहा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी।
0: साल 2000 में स्टैंड अप कॉमेडी के मंच पर कदम रखने के बाद रसेल ब्रांड ने धीरे धीरे अपनी अलग पहचान बनाना शुरू कर दी। उनकी बोलने की शैली, आत्मविश्वास और अलग तरह का हास्य लोगों को बेहद पसंद आने लगा।
1: टेलीविज़न की दुनिया में उन्हें बड़ी सफलता मिली। बिग ब्रदर बिग माउथ के होस्ट के रूप में इस शो ने उन्हें ब्रिटेन के सबसे चर्चित टीवी चेहरों में शामिल किया।
0: कॉमेडी की दुनिया में भी उनका योगदान काफ़ी बड़ा रहा। उन्होंने कई स्टैंड अप कॉमेडी शोज़ किए थे।
1: रसेल ब्रांड का जीवन सफलता, संघर्ष, लोकप्रियता, विवाद और लगातार बदलावों से भरा हुआ है। इस स्टैंड अप कॉमेडियन से लेकर अभिनेता, लेखक, पॉडकास्ट और सामाजिक टिप्पणीकार बनने तक का उनका सफर बेहद दिलचस्प रहा है।
0: और यही वजह है कि रसेल ब्रांड आज भी दुनिया में सबसे चर्चित मीडिया व्यक्तित्वों में गिने जाते हैं, जिनकी कहानी लोगों को सोचने, सीखने और चर्चा करने का अवसर प्रदान करती है।

0: 10 लाख की लॉटरी मुझे।
1: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
2: RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: हौसलों की उड़ान जब आसमान छू जाती है तो मंजिलों भी कदमों में झुक जाती है। कुछ कहानियाँ सिर्फ जीत की नहीं होती, वो जज्बे की पहचान बन जाती है। आज बात एक ऐसे खिलाड़ी की जिसने मुश्किलों को अपनी ताकत बनाया और दुनिया को दिखा दिया कि सपनों की कोई सीमा नहीं होती।
5: बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं भारत के स्टार पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद भगत की। 1988 को ओडिशा के बरगढ़ जिले में जन्मे प्रमोद भगत ने महज 5 साल की उम्र में पोलियो का सामना किया, जिससे उनके बाएं पैर का असर पड़ा। लेकिन जिस उम्र में कई लोग हार मान लेते हैं, उस उम्र में प्रमोद ने अपने सपनों को और मजबूत बना लिया।
4: 13 साल की उम्र में जब उन्होंने पहली बार बैडमिंटन मैच देखा तो इस खेल में उनका एक ऐसा रिश्ता बन गया जो उनको आज तक खास बनाए हुए। सिर्फ 15 साल की उम्र में उन्होंने सामान्य खिलाड़ी के खिलाफ अपना पहला टूर्नामेंट खेला और वहीं से शुरू हुआ एक शानदार सफ़र।
5: लेकिन यह सफलता एक दिन में नहीं मिली। 2009 से लेकर 2026 तक उन्होंने पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में कई स्वर्ण पदक अपने नाम किए। सियोल, स्टॉक, मैंडविल, बेसल, टोक्यो, पाटाया और मनामा जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारतीय तिरंगे को ऊंचा लहराया है।
4: एशियन पैरा गेम्स में प्रमोद भगत का प्रदर्शन शानदार रहा। जाकर्ता 2018 और हांगझोउ 2022 में उनको स्वर्ण पदक मिला। उन्होंने यह साबित किया कि दुनिया के सर्वश्रेष्ठ पैरा बैडमिंटन खिलाड़ियों में से एक है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं क्रिकेट की दुनिया के कुछ ऐसे खिलाड़ी की जिन्होंने हमें काफ़ी प्रेरणा दी है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे एक शानदार ऑलराउंडर की जिन्होंने अपनी बल्लेबाजी

0: गेंदबाजी और जज्बे से पूरी दुनिया का दिल जीत लिया। हम बात कर रहे हैं इंग्लैंड के टेस्ट कैप्टन बेन स्टोक्स की।
1: 4 जून 1991 को और न्यूजीलैंड के क्राइस्टचर्च में जन्मे बेन स्टोक्स बचपन में अपने परिवार के साथ इंग्लैंड आए थे। यहीं से शुरू हुआ उनका क्रिकेट सफ़र। बेहद कम उम्र में ही उन्होंने अपने खेल से सबका ध्यान आकर्षित शुरू कर दिया।
0: बेन स्टोक्स ने 2011 में इंग्लैंड के लिए वनडे और T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया था, जबकि 2013 में उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में कदम रखा। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा।
1: अगर उनके करियर का सबसे यादगार पल चुना जाए तो शायद 2019 क्रिकेट विश्व कप फाइनल सबसे ऊपर होगा।
0: उस ऐतिहासिक प्रदर्शन के लिए उन्हें फाइनल का मैन ऑफ द मैन चुना गया। यही नहीं, उसी साल उन्हें ICC क्रिकेटर ऑफ द ईयर और प्रतिष्ठित BBC स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2019 का अवार्ड भी मिला था।
1: 2022 में उन्हें इंग्लैंड टेस्ट टीम का कप्तान बनाया गया और उनकी कप्तानी में टीम ने नया आत्मविश्वास और नई सोच हासिल की। मैदान पर उनका जुझारूपन और नेतृत्व क्षमता उन्हें दुनिया के सबसे प्रभावशाली क्रिकेटरों में शामिल करती है।
0: तो दोस्तों, अब बात करते हैं आज के इतिहास की। 1896 में आज के दिन दिग्गज ऑटोमोबाइल कंपनी के संस्थापक हेनरी फोर्ड ने अमेरिका के डेट्रॉइट शहर में अपना पहला मॉडल प्रशिक्षण के लिए उतारा था। 1993 में क्रिकेट इतिहास में ऑस्ट्रेलिया के महान स्पिनर शेन वॉन द्वारा फेंकी गई करिश्माई गेंद को बॉल ऑफ द सेंचुरी नाम दिया गया था। साथ ही आपको बता दें, 1936 हिंदी सिनेमा के दिग्गज को और सदाबहार अभिनेत्री नूतन शर्मा का जन्म आज ही के दिन हुआ था, जिन्होंने बंदनी और सुजाता जैसी फिल्मों के लिए याद किया जाता है।
1: तो दोस्तों, अब समय है शेयर मार्केट की बात करने का। तो सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी 50 की। निफ्टी 50 लगभग 23,416 अंकों के स्तर तक बंद हुआ और इसमें इसे करीब 11 अंकों की बढ़त दर्ज की गई है। वहीं सेंसेक्स ने भी सकारात्मक रुख दिखाया और लगभग 74,360 अंकों के स्तर पर कारोबार दिखाई दिया है।

0: दोस्तों, जीवन में सीखने और आगे बढ़ने का सफर कभी रुकना नहीं चाहिए। हर नया दिन हमें कुछ नया जानने, समझने और बेहतर बनाने का अवसर देता है। तो श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। मैं थी आपकी दोस्त दिव्या, मेरे साथ है
1: गार्गी। नमस्कार।

0: आप सुन रहे थे युवा साथियों का मनपसंद कार्यक्रम युववाणी। ये आकाशवाणी उदयपुर है, शाम के 6 बजने को हैं। आइए आकाशवाणी दिल्ली से अब हम सुनते हैं हिंदी में समाचार।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और वेनेजुएला के बीच संबंधों पर चर्चा की तथा ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के नए अवसरों पर विचार विमर्श किया। विदेश मंत्रालय में पूर्वी क्षेत्र के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने कहा कि वेनेजुएला के पास दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार हैं। उन्होंने बताया कि आज की बातचीत का मुख्य विषय ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत करना था।
2: आर्थिक सहयोग को सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित न रखकर खनन, पशुपालन, परिवहन, कृषि उपकरण, ऑटोमोबाइल और दवा उद्योग जैसे क्षेत्रों तक विस्तारित करने पर चर्चा हुई। चर्चा का उद्देश्य ऐसे अवसर और तरीके तलाशना है जिनसे भारतीय कंपनियां वेनेजुएला के बाजार में सफलतापूर्वक अपना कारोबार बढ़ा सकें।
1: श्री टंडन ने कहा कि दोनों नेताओं ने अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी अपने विचार साझा किए। उन्होंने भारत वेनेजुएला संबंधों को और मजबूत बनाने तथा विकासशील देशों के हितों को आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। सुश्री रोड्रिगेज कल 5 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची थीं। उनके साथ विदेश मामलों, अर्थव्यवस्था और वित्त, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी और परिवहन मंत्रियों का प्रतिनिधिमंडल भी आया है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने पूर्वोत्तर में हिंसक के युग का अंत किया है और इस क्षेत्र को विवादों के केंद्र से अवसरों के केंद्र में बदल दिया है। पूर्वोत्तर परिषद के 73वें पूर्ण सत्र में भाग लेने के बाद सोशल मीडिया पोस्ट में गृहमंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर परिषद इस क्षेत्र के विकास के लिए रणनीतिक योजना बनाने का कार्य कर रही है। सत्र में भाग लेने वाले पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि सभी नेता मजबूत और अधिक समृद्ध पूर्वोत्तर के निर्माण के अपने संकल्प में एकजुट हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में परिचालन दक्षता बढ़ाने के लिए फील्ड कमांडरों के वित्तीय अधिकार 2 गुना करने को मंजूरी दे दी। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इन उपायों से 1,25,000 करोड़ रुपए से अधिक की खरीद में सुविधा होगी। मंत्रालय ने कहा कि वित्तीय शक्तियों में वृद्धि 100% तक की गई है और कुछ मामलों में ये 2 गुने से भी अधिक है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में भारत की पहली फ्लेक्स फ्यूअल यात्री कार का लोकार्पण किया। इसका निर्माण मारुति सुजुकी ने किया है। इस अवसर पर श्री पुरी ने कहा कि यात्री वाहनों में फ्लेक्स फ्यूअल तकनीक की शुरुआत केवल एक नए वाहन की शुरुआत नहीं है बल्कि भारत की ऊर्जा परिवर्तन यात्रा का एक नया अध्याय है। श्री नितिन गडकरी ने कहा कि फ्लेक्स फ्यूअल वाहनों से प्रदूषण कम करने, कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता घटाने और विदेशी मुद्रा की बचत करने में मदद मिलेगी। इससे देश को लगभग 1.5 लाख करोड़ रूपये की विदेशी मुद्रा की बचत हो सकती है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में असाधारण प्रगति की है और गैर जीवाश्म ईंधन उत्पादन क्षमता के मामले में विश्व के शीर्ष उत्पादकों में से एक बनकर उभरा है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि इस योजना की सफलता का मुख्य कारण यह है कि देश के नागरिकों ने यह समझ लिया है कि वे अपनी छतों पर बिजली खुद पैदा कर सकते हैं और बिजली बिल 0 हो सकता है। इसके अलावा श्री जोशी ने आज विभिन्न मंत्रालयों और संस्थानों के अधिकारियों के साथ बैठक में सरकारी भवनों के छतों पर सौर ऊर्जा प्रणाली लगाने की प्रगति की भी समीक्षा की। भारत सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गया है। गोवा के मडगांव में कल भारत ने सेमीफाइनल में भूटान को 1-0 से हराया। भारतीय टीम 6 साल बाद सैफ चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंची है। फाइनल शनिवार शाम 6:30 बजे से खेला जाएगा। 5 बार की विजेता भारतीय टीम और मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश आमने सामने होंगे। जकार्ता में इंडोनेशिया ओपन सुपर सीरीज बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज का दिन भारत के लिए मिला जुला रहा। पुरुष डबल्स में MR अर्जुन और हरिहरन की जोड़ी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। भारतीय जोड़ी ने मलेशियाई जोड़ी एरोन ताई और कैंग खाईजिंग को कड़े मुकाबले में हराया, लेकिन पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी कड़े संघर्ष के बावजूद पराजित हो गए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मीडियम वेव 266.66 यानी 1125 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय 6:05 हुए हैं। आइए आपको सुनवाते हैं फिल्म संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं कल की आवाज़ फिल्म के इस गाने के साथ, जिसे कुमार सानू और आशा भोसले ने गाया है। संगीत निर्देशन नदीम श्रवण का है।

0: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
1: आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
4: आप भी अपने उत्पाद का विज्ञापन आकाशवाणी पर कीजिए और अपने व्यापार को आकाश की ऊंचाई तक पहुंचाइए। अधिक जानकारी के लिए नजदीक के आकाशवाणी केंद्र से संपर्क करें या हमें मेल कीजिए salesairjc@gmail.com यानी salesairjc@gmail.com पर। हमारे चैनल हमेशा तत्पर, हमेशा सुरीले सफर पर।
5: आकाशवाणी उदयपुर से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। फिल्म संगीत कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवाते हैं दिल फिल्म से ये गाना, जिसे उदित नारायण के साथ साधना सरगम ने गाया है। मधुर संगीत आनंद मिलिंद का है।

0: आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। सर्वोच्च न्यायालय ने अदालतों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर मसौदा जारी किया। कोई भी न्यायिक निर्णय केवल एआई की ओर से उपलब्ध करवाए गए विश्लेषण पर आधारित नहीं होगा। राजस्थान से राज्यसभा की 3 सीटों पर चुनाव के लिए भाजपा के 2 प्रत्याशियों का ऐलान। सतीश पूनिया और अलका गुर्जर को उम्मीदवार बनाया। देश की पहली फ्लेक्स फ्यूल कार आज नई दिल्ली में लॉन्च की गई। और ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कहा, राज्य सरकार हर घर और खेत तक निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए लगातार प्रयास कर रही है। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने अदालतों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर मसौदा जारी किया है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि कोई भी न्यायिक निर्णय केवल एआई की ओर से उपलब्ध कराए गए विश्लेषण और एल्गोरिथम निर्णय लेने पर आधारित नहीं हो सकता। मसौदे पर लोगों से इस महीने की 20 तारीख तक सुझाव मांगे गए हैं। इस ड्राफ्ट में एआई सहायता प्राप्त कार्यों, केस प्रबंधन, कानूनी अनुसंधान, दस्तावेज सारांश, अनुवाद और प्रतिलेखन की अनुमति दी गई है। हालांकि इसमें सभी अदालती कामकाज को मानव नियंत्रण में रखना अनिवार्य किया गया है। प्रस्तावित मसौदा एआई को निर्णय देने, सजा तय करने, गवाहों की विश्वसनीयता का आकलन करने और कानूनी परिणामों का निर्धारण करने से रोकता है। भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश की 3 सीटों पर होने वाली राज्यसभा चुनाव के लिए अपने 2 प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। पार्टी ने सतीश पूनिया और अलका गुर्जर को अपना उम्मीदवार बनाया है। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह ने आज राजस्थान सहित 5 राज्यों के लिए अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की। राज्य में 3 सीटों पर राज्यसभा चुनाव होने हैं। इसके लिए 8 जून तक नामांकन दाखिल किए जा सकते हैं। 18 जून को मतदान होगा और उसी दिन नतीजे घोषित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेज की आज नई दिल्ली में मुलाकात हुई। इस दौरान दोनों देशों के बीच ऊर्जा, निवेश, स्वास्थ्य और ऑटोमोबाइल सहित अन्य क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर विचार किया गया। पूर्वी क्षेत्र के सचिव रुदेंद्र टंडन ने मीडिया से बातचीत में बताया कि इस बैठक में ऊर्जा क्षेत्र की साझेदारी करने पर विशेष रूप से चर्चा की गई। प्रधानमंत्री श्री मोदी का कल गुजरात और दमन दौरे का कार्यक्रम है। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि शासन व्यवस्था को बेहतर बनाने और जनहित योजनाओं के क्रियान्वयन में प्रौद्योगिकी ने अहम भूमिका निभाई है। एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में नई दिल्ली में आज आयोजित सुधार उत्सव में उन्होंने ये बात कही। श्री रिजिजू ने कहा कि तकनीक को अपनाने से मंत्रालयों को लाभार्थियों के जीवन में बड़े बदलाव लाने में मदद मिली है।
1: भारत के कोने में बैठने वाला एक महिला भी हमारा स्कीम का लाभ उठा करके जिंदगी में, तो ये कितना कि हमारा मिनिस्ट्री का स्कीम से लोगों का जिंदगी में बदलाव आया है। 2047 में हमको टारगेट सेट करना ही है, और जब हिंदुस्तान का आजादी का 100 साल पूरा होगा 2047 में, कोई गरीब नहीं बचेगा हिंदुस्तान।
0: संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने परीक्षा प्रक्रिया को और सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए फेस ऑथेंटिकेशन प्रणाली शुरू की है। आयोग ने इसका सफल उपयोग हाल ही में हुई सिविल सेवा और भारतीय वन सेवा की प्रारंभिक परीक्षाओं में किया है। यूपीएससी अध्यक्ष डॉ अजय कुमार ने बताया कि इसके तहत आवेदन भरते समय उम्मीदवार की जो फोटो अपलोड की जाती है उसका मिलान कर देखा जाता है कि वही अभ्यर्थी परीक्षा देने आया है। जाने माने फिल्म निर्माता पहलाज निलहानी का आज मुंबई में निधन हो गया। वे 76 वर्ष के थे। 1982 में हथकड़ी फिल्म से अपने करियर की शुरुआत करने वाले श्री निलहानी ने आग ही आग, शोला और शबनम, आंखें, दिल तेरा दीवाना और तलाश सहित कई प्रसिद्ध फिल्में बनाई। वे केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष भी रहे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur यूट्यूब

0: दिल फिल्म के इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है।
1: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 इयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
0: मीडियम वेव 266.66 यानी 1125 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी उदयपुर है। शाम के 6:30 होने को हैं। आइए आकाशवाणी जयपुर अजमेर से अब हम जुड़ते हैं और सुनते हैं प्रादेशिक समाचार और जिले की चिट्ठी बस थोड़ी ही देर में।

0: राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। देश की पहली फ्लैक्स फ्यूल यात्री कार आज लॉन्च की गई। फ्लैक्स फ्यूल ऐसे वाहन होते हैं जो पेट्रोल और एथेनॉल के विभिन्न मिश्रणों पर चल सकते हैं। ये 20% से लेकर 100% एथेनॉल तक के ईंधन का उपयोग कर सकते हैं। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने नई दिल्ली में इसकी लॉन्चिंग की। इस मौके पर श्री पुरी ने फ्लैक्स फ्यूल तकनीक को देश में ऊर्जा परिवर्तन यात्रा का नया अध्याय बताया। उन्होंने कहा कि इसका बड़े पैमाने में इस्तेमाल होने से एथेनॉल आधारित परिवहन को बढ़ावा मिलेगा। श्री गडकरी ने कहा कि फ्लैक्स फ्यूल वाहन प्रदूषण कम करने, कच्चे तेल के आयात की निर्भरता घटाने और विदेशी मुद्रा की बचत करने में सहायक सिद्ध होंगे। उन्होंने कहा कि इससे लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा की बचत हो सकती है। राजस्थान को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लक्ष्य के तहत बिजली उत्पादन निगमों की ओर से किए गए बेहतरीन प्रदर्शन को लेकर ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने आज जयपुर में प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश में बिजली उत्पादन, आपूर्ति व्यवस्था और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं पर विस्तार से चर्चा की। श्री नागर ने किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध करवाने के प्रयासों के बारे में भी बताया। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार हर घर हर खेत तक निर्बाध बिजली आपूर्ति करने के लिए लगातार कोशिश कर रही है।
1: जयपुर में रूफ टॉप कई जगह लग रहा है, लेकिन वो दिन के समय जो रूफ टॉप लग रहा है वो वापस हमें ट्रांसमिशन में आता है। ऐसे कई हमने जीएसएस चिन्हित किए हैं जहां हमारे पास वो ट्रांसमिशन में वापस आता है, तो वही उसी जीएसएस पर हम बैटरी स्टोरेज लगाएं और उसको वहीं स्टोर करें, वहीं उसको उपयोग करें, ताकि वो ट्रांसमिशन पर हमारा जब पीक आवर्स के टाइम लोड पड़ता है जो वो ना पड़े और वो वहीं डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से वहीं पर ही का उपयोग हो जाए, इस पर निरंतर हम काम कर रहे हैं।
0: देश में सरकारी भवनों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के निर्धारित लक्ष्य का 80% काम अब तक पूरा हो चुका है। केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने आज विभिन्न मंत्रालयों और संस्थानों के अधिकारियों के साथ बैठक की। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पर बताया कि देशभर में 53,000 से अधिक सरकारी भवनों पर कुल 855 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा प्रणालियां लगाई जा चुकी हैं। प्रदेश में इलेक्ट्रिक बसों के संचालन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर विकास और आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने आज जयपुर में इस संबंध में बैठक ली। इस दौरान विभिन्न शहरों में इलेक्ट्रिक बसों के लिए डिपो, चार्जिंग स्टेशन बनाने और अन्य कार्यों की समीक्षा की गई। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री ई बस सेवा योजना के तहत राजस्थान को 1,150 बसें आवंटित की गई हैं। ये जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, अलवर और कोटा सहित 8 शहरों में चलाई जाएंगी। इन बसों का ट्रायल हो चुका है। इसके लिए आवश्यक सुविधाओं का तेजी से विकास किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 साल की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रदेश भाजपा की ओर से राज्यव्यापी अभियान चलाया जाएगा। विश्वास से विकास, सेवा से सुशासन नाम का ये जनसंपर्क अभियान 21 जून तक चलेगा। कार्यक्रम की सहसंयोजक अपूर्वा सिंह ने आकाशवाणी को बताया कि इस दौरान विभिन्न गतिविधियां होंगी।
2: विश्व पर्यावरण दिवस के दिन एक पेड़ माँ के नाम की मुहिम चलाई जाएगी, जिसमें विभिन्न बूथों पर गांवों में ढाणियों में समस्त जन को जागरूक भी किया जाएगा पर्यावरण के प्रति, पर पर्यावरण के आगे कैसे संरक्षित करना है इसका पाठ भी उनको पढ़ाया जाएगा। 5 जून के बाद में विशेष संपर्क अभियान चलाया जाएगा, जिसमें विभिन्न स्थानों पर स्वच्छता के कैंप, वृक्षारोपण के कैंप और इन 12 वर्षों में जो प्रगति के पथ निर्मित हुए हैं वहां पे भ्रमण करने का, उन प्रगति के जो इमारतें हैं वहां पर जाकर विकास की सूचक से रूबरू होने का मौका मिलेगा।
0: राज्यपाल हरिभाऊ बागड़ी ने लोगों से पर्यावरण अनुकूल जीवनशैली अपनाने का आह्वान किया है। विश्व पर्यावरण दिवस से पूर्व राज्यपाल ने अपने संदेश में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत छायादार पौधे लगाने और उनकी उचित देखभाल करने की अपील की है। वहीं पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन बनाने और नागरिकों को पौधरोपण के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से कल से हरियालो राजस्थान 2026 अभियान की शुरुआत हो रही है। मुख्यमंत्री लाल शर्मा जयपुर से इसकी शुरुआत करेंगे। विश्व वानिकी वृक्ष उद्यान में होने वाले इस कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, विद्यार्थियों

0: विद्यार्थियों, स्वयंसेवी संस्थाओं और आम लोगों की भी सहभागिता रहेगी। प्रदेश भर में विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर कई कार्यक्रम रखे गए हैं। इस मौके पर पाली के जवाई क्षेत्र में विशेष स्वच्छता कार्यक्रम चलाया जाएगा। वहीं ब्यावर के टूरिस्ट विलेज देवमाली गांव में सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। दक्षिण पश्चिम मानसून का आज देश में आगमन हो गया है। केरलम से मॉनसून ने प्रवेश किया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि अगले 2-3 दिनों में मॉनसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल नजर आ रही हैं। इससे राजस्थान में भी आंधी बारिश की गतिविधियां बनी रहने की संभावना है। इस बीच राज्य में आज से नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ है। इससे उदयपुर जिले में दोपहर बाद बरसात हुई। वहीं डूंगरपुर के सांबला में ओले भी गिरे। चूरू जिले के बीनासर, सातड़ा और सहला सहित कई गांवों में तेज अंधड़ के बाद अच्छी बारिश हुई। मौसम विभाग ने आज 9 जिलों में आंधी बारिश का ऑरेंज अलर्ट बताया है। वहीं जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर और सिरोही को छोड़कर बाकी स्थानों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। नए पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से कुछ भागों में अगले 3 दिनों तक तेज आंधी और बारिश की गतिविधियां जारी रह सकती हैं। वहीं कुछ हिस्सों में 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अंधड़ चलने की आशंका है। राज्य सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के वर्ष 2025 बैच के 7 प्रशिक्षु अधिकारियों को सहायक कलेक्टर के रूप में नियुक्त किया है। इस संबंध में जारी अधिसूचना के अनुसार जयपुर, कोटा, बीकानेर, उदयपुर, भरतपुर, अजमेर और जोधपुर जिलों में इन्हें पदस्थ किया गया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने अदालतों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर मसौदा जारी किया। कोई भी न्यायिक निर्णय केवल एआई की ओर से उपलब्ध करवाए गए विश्लेषण पर आधारित नहीं होगा। राजस्थान से राज्यसभा की 3 सीटों पर चुनाव के लिए भाजपा के 2 प्रत्याशियों का ऐलान। सतीश पूनिया और अलका गुर्जर को उम्मीदवार बनाया। देश की पहली फ्लैक्स फ्यूल कार आज नई दिल्ली में लॉन्च की गई। और ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कहा, राज्य सरकार हर घर और खेत तक निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप सिद्धार्थ जैन से कोटा जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका लेख आशीष मेहता ने तैयार किया है। जिले में इन दिनों मौसम के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। जहां एक ओर पूरे महीने में भीषण गर्मी और हीट वेव का दौर बना रहा, वहीं महीने के आखिरी दिनों में आंधी और बारिश की गतिविधियों ने जिलेवासियों को प्रभावित किया। इसी सिलसिले के साथ जून महीने की भी शुरुआत हुई। इससे लोगों को प्रचंड गर्मी से तो निजात मिली, लेकिन अभी भी दिन का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। अस्पतालों में हीट वेव से प्रभावित लोगों के उपचार के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। बदलते मौसम के बीच जिले में इन दिनों जनगणना 2027 के पहले चरण के तहत मकानों की गिनती और सूचीकरण का काम किया जा रहा है। प्रगणक घर घर जाकर डेटा इकट्ठा कर रहे हैं। इस दौरान वे लोगों से 33 सवालों के जवाब पूछकर सूचना एकत्रित कर रहे हैं। जनगणना निदेशक विष्णु चरण मलिक बीते दिनों कोटा आए और उन्होंने जनगणना कार्य की प्रगति के संबंध में बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को सभी जानकारियां वास्तविक स्थिति के अनुरूप ही दर्ज करने के निर्देश दिए। साथ ही डेटा की गुणवत्ता, सत्यापन प्रक्रिया और तकनीकी पहलुओं पर चर्चा की गई। जिले में इन दिनों भूजल संरक्षण और वर्षा जल संग्रहण को लेकर वंदे गंगाजल संरक्षण जनअभियान चलाया जा रहा है। अभियान की शुरुआत पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने चंबल रिवर फ्रंट से की। यह अभियान कल संपन्न होगा। 15 दिन के इस अभियान के दौरान जल संरक्षण और साफ सफाई से जुड़ी विभिन्न गतिविधियां आयोजित की गई। इनमें कलश यात्रा, सरोवर और पीपल पूजन, ग्राम सभाओं का आयोजन, जल संरचनाओं की सफाई, प्रभात फेरियां, साइकिल रैली जैसी गतिविधियां शामिल हैं। 3 जून को ऊर्जा विभाग द्वारा जिले भर में ट्रांसफॉर्मर्स के आसपास साफ सफाई की गई। संभागीय आयुक्त अनिल कुमार अग्रवाल ने दिघोद के डूंगरजय स्थित कमल सरोवर में ग्रामीणों और अधिकारियों के साथ श्रमदान करते हुए घाटों की सफाई की। कृषि विज्ञान केंद्र में जिला स्तरीय कार्यक्रम रखा गया। इसमें जिले में 100 से अधिक किसानों और कृषि वैज्ञानिकों ने भाग लिया। जिले की महिला किसान वंदना गौड़ और किसान राहुल नागर को सौर ऊर्जा के

0: क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए जिला स्तरीय पुरस्कार दिया गया। कोटा का ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट अगले वर्ष अक्टूबर तक तैयार हो जाएगा। दिसंबर से नियमित व्यावसायिक उड़ानें शुरू होंगी। लोकसभा अध्यक्ष ने एयरपोर्ट परियोजना की प्रगति को लेकर नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। संभागीय आयुक्त तथा कोटा और बूंदी के जिला कलेक्टर सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। बीते महीने जिले को कई विकास कार्यों की सौगात मिली। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने हाल ही में लाड़पुरा विधानसभा क्षेत्र की मानस गांव, रंगपुर, किशनपुरा, तकिया, ताथेड़, आरामपुरा, खेड़ा रामपुर, भीमपुर, जाखोड़ा, अरंडखेड़ा, अरलिया, जागीर, गंदीफली और गोदलिया हीड़ी ग्राम पंचायतों में कई विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इन पर 18,29,00,000 रुपए खर्च किए जाएंगे। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने पिछले दिनों सांगोद स्थित अपने निजी आवास पर ERCP और बिजली विभाग से जुड़े उच्च अधिकारियों और अभियंताओं की समीक्षा बैठक ली। बैठक में परवन वृहद सिंचाई परियोजना की प्रगति, बिजली कनेक्शन और क्षेत्र की विभिन्न लिफ्ट परियोजनाओं पर चर्चा की गई। ऊर्जा मंत्री ने धुलेट टू लिफ्ट परियोजना से तत्काल कनेक्शन जारी करने को कहा, ताकि कनवर क्षेत्र के 14 गांवों को जल्द से जल्द पानी मिल सके। इसके साथ ही उन्होंने देवली लिफ्ट परियोजना से भी शीघ्र पानी देने के निर्देश दिए। श्री नागर ने मंडीता, कुंदनपुर, विनोद खुर्द और मंडाप गांव का दौरा किया। उन्होंने ग्रामीणों से संवाद किया और क्षेत्र में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों का जायजा लिया। जिला कलेक्टर पीयूष सामरिया ने बीते दिनों युवा आवास प्रबंधन समिति की समीक्षा बैठक की। युवा मामले और खेल मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार गठित की गई इस कमेटी के साथ कोटा में बन रहे यूथ हॉस्टल के प्रबंधन, रख रखाव सहित विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की गई। जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को सभी निर्माण कार्य जल्द पूरा करने और स्टाफ नियुक्त करने के निर्देश दिए। कोटा जिले की चिट्ठी में इतना ही। नमस्कार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर रूपेश है, प्रादेशिक समाचार। पहली आज री खास खास खबरां। सर्वोच्च न्यायालय अदालता माए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रा उपयोग रो मसौदो जारी करियो। कोई भी न्यायिक फैसलो केवल AI री कानून मुहैया कराया गया, विश्लेषण माथे आधारित नी वेला। राजस्थान सू राज्यसभा री 3 सीटा माथे चुनाव खातर भाजपा रा 2 प्रत्याशी ऐलान, सतीश पूनिया और अलका गुजर ने उम्मीदवार बनाए गयो। देश री पहली फ्लेक्स फ्यूल कार आज नई दिल्ली में लॉन्च करी गई। और ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर कया, राज्य सरकार हर घर और खेत में लगातार बिजली पुगाबा खातर कोशिश कर रही है। समाचार आरएस आ गए, मैं रचना पारिक और अब है समाचार विगतवार। सुप्रीम कोर्ट अधीनस्थ अदालत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने काम में लेवन रो मसौदो जारी करियो। इनमें साफ किनो है कि कोई भी न्यायिक फैसलो केवल AI री कानून मुहैया कराया गया, विश्लेषण और एल्गोरिदम फैसला लेबा माथे आधारित नी सकेला। मसौदा माथे लोगानु इन मीनारी 20 तारीख तय सुझाव मांगा गया है। इन ड्राफ्ट में AI सहायता प्राप्त काम, केस प्रबंधन, कानूनी अनुसंधान, दस्तावेज सारांश, अनुवाद और प्रतिलेखन री मंजूरी दी गई है। हालांकि इनमें सगड़ा अदालती कामकाज ने मानव नियंत्रण में राखनो जरूरी करियो गयो है। प्रस्तावित मसौदो AI ने फैसला लेबा, सजा तय करबा, गवाहारी विश्वसनीयता को आंकलन करबा और कानूनी नतीजा तय करबा सु रोके है। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की 3 सीटा माथे होबा वाला राज्यसभा चुनाव खातर आपरा 2 प्रत्याशियों रो ऐलान करियो है। पार्टी सतीश पूनिया और अलका गुजर ने आपरो उम्मीदवार बनायो है। भाजपा रा राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह आज राजस्थान समेत 5 राज्यां खातर आपरा प्रत्याशियों रो नाम ऐलान करियो है। राज्य में 3 सीटा माथे राज्यसभा चुनाव वेला इन खातर 8 जून तय नामांकन

0: दाखिल करया जा सके है। 18 जून ने वोट पड़ेला और उन्हीं दिन नतीजा ऐलान करया जावेला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वेनेजुएला री कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रीगेज री आज नवी दिल्ली माए मुलाकात भी। इन दौरान दोनों देशों के बीच ऊर्जा, निवेश, स्वास्थ्य और ऑटोमोबाइल समेत दूजा हल्का माए इमदाद बढ़ा बारे संभावना मात है विचार करो गयो। पूर्वी हलकारा सचिव रुद्रेंद्र टंडन मीडिया सु बातचीत माए बताया कि इन बैठक माए ऊर्जा हलकारी साझेदारी करबा माथे खास रूपू चर्चा करी गई। प्रधानमंत्री श्री मोदी रो काल गुजरात और दमन दौरा रो कार्यक्रम है। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू कया के शासन व्यवस्था ने चोखो बनाबा और जनहित योजनावां ने चलाबा माए प्रौद्योगिकी महती भूमिका निभाई है। एनडीए सरकार रा 12 बरस पूरा हो बारे मौके नई दिल्ली माए आज राख्या सुधार उत्सव माए या बात की गई। श्री रिजिजू कया के तकनीक ने काम में लेबा सु मंत्रालय रा लाभार्थियों रा जीवन माए बड़ो बदलाव लियाबा माए इमदाद मिली है।
1: भारत के कोने में बैठने वाला एक महिला भी हमारा स्कीम का लाभ उठा करके जिंदगी में, तो ये कितना कि हमारा मिनिस्ट्री का स्कीम से लोगों का जिंदगी में बदलाव आया है। 2047 में हमको टारगेट सेट करना ही है, और जब हिंदुस्तान का आजादी का 100 साल पूरा होगा 2047 में कोई गरीब नहीं बचेगा हिंदुस्तान।
0: संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी परीक्षा प्रक्रिया ने और सुरक्षित और साफ गोई बनाबा खातर फेंस ऑथेंटिफिकेशन प्रणाली शुरू करी गई है। आयोग इंडो सफल इस्तेमाल हाल ही मायवी सिविल सेवा और भारतीय वन सेवारी शुरुआती परीक्षा माय करियो। यूपीएससी अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार बताया रे इंडरे तहत आवेदक भर्ती टेम उम्मीदवारी जो फोटो अपलोड करी जावे है उनरो मिलान कर देखियो जावे है के उन्हें अभ्यर्थी परीक्षा देबा आयो है। जानिया मानिया फिल्म निर्माता पहलाज निहलानी आज मुंबई माए देवलोक वह गया। वह 76 बरस रहा। बरस 1982 माए हथकड़ी फिल्मों आपरा कामरी शुरुआत करबा वाला श्री निहलानी आगिया, शोला और शबनम, आंखें, दिल तेरा दीवाना और तलाश समेत कई नामजोग फिल्मा बनाई। वे केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड रा अध्यक्ष भी रिया। ये समाचार आप आकाशवाणी रा जयपुर अजमेर केंद्रों सुन रिया हो। देश री पहली फ्लेक्स फ्यूल यात्री कार आज लॉन्च करी गई। फ्लेक्स फ्यूल वाहन पेट्रोल और एथेनॉल रा मेल सु चाल सके है। ये 20 लेर 100% एथेनॉल ने ईंधन रा रूप माए काम माए ले सके है। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी और केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी नई दिल्ली माए इनरी लॉन्चिंग करी। राजस्थान ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनावारा लगस रहते बिजली उत्पादन निगम रिकानियों करया गया चोखा प्रदर्शन ने लेर ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर आज जयपुर में प्रेस वार्ता करी। इन दौरान वना प्रदेश में बिजली उत्पादन आपूर्ति व्यवस्था और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनावां माते विस्तारों चर्चा करी। श्री नागर किसाना ने दिन माए बिजली मुहैया कराबा खातर आबाद की। ऊर्जा मंत्री कया के राज्य सरकार हर घर हर खेत ताई लगातार बिजली पुगावा खातर कोशिश कर रही है।
2: जयपुर में रूफ टॉप कई जगह लग रहा है, लेकिन वो दिन के समय जो रूफ टॉप लग रहा है वो वापस हमें ट्रांसमिशन में आता है। ऐसे कई हमने जीएसएस चिन्हित किए हैं जहां हमारे पास वो ट्रांसमिशन में वापस आता है, तो वही उसी जीएसएस पर हम बैटरी स्टोरेज लगाएं और उसको वहीं स्टोर करें, वहीं उसको उपयोग करें, ताकि वो ट्रांसमिशन पर हमारा जब पीक आवर्स के टाइम लोड पड़ता है जो वो ना पड़े और वो वहीं डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से वहीं पर ही का उपयोग हो जाए, इस पर निरंतर हम काम कर रहे हैं।
0: देश माए सरकारी भवना माथे सौर ऊर्जा संयंत्र लगा बारा तय लगसरो 80% काम हाल तय पूरो वैग्यो है। केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रह्लाद जोशी आज न्यारा न्यारा मंत्रालय और संस्थानारा अहलकाना सागे बैठक करी। श्री जोशी सोशल मीडिया माथे बताया कि देश भर में 53,072 सरकारी भवना माथे कुल 855 मेगावाट बूतारी सौर ऊर्जा प्रणालियां लगाई।

0: ਲਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक बसा चलाबा खातर इंफ्रास्ट्रक्चर विकास और जरूरी व्यवस्थावा पक्की कर बारू काम चल रियो है। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास आज जयपुर में इन बाबत बैठक ली। इन दौरान न्यारा न्यारा शहरा में इलेक्ट्रिक बसा खातर डिपो चार्जिंग स्टेशन बनाबा और दूजा कामारी समीक्षा करी गई। बतायो जावे है कि प्रधानमंत्री ई बस सेवा योजना के तहत राजस्थान ने 1150 बसा आवंटित करी गई है। ये जयपुर जोधपुर बीकानेर अजमेर अलवर और कोटा समेत 8 शहरा माए चलाई जावेला। इन बसारो ट्रायल वह चुकियो है। इन खातर जरूरी सुविधा बांत है तेजियों विकास काम करियो जा रियो है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री अगुवाई वाली केंद्र सरकार 12 बरस की उपलब्धियां ने जन जन ताई पुगाबा खातर प्रदेश भाजपा री कानियों राज्यव्यापी अभियान चलायो जावेला। विश्वास सु विकास सेवा सु सुशासन नाम रोयो जनसंपर्क अभियान 21 जून तई चालेला। कार्यक्रम री सह संयोजक अपूर्वा सिंह आकाशवाणी ने बतायो के इन दौरान न्यारी न्यारी गतिविधियां वेला।
1: विश्व पर्यावरण दिवस के दिन एक पेड़ माँ के नाम की मुहिम चलाई जाएगी, जिसमें विभिन्न बूथों पर गांवों में ढाणियों में समस्त जन को जागरूक भी किया जाएगा पर्यावरण के प्रति और पर्यावरण के आगे कैसे संरक्षित करना है इसका पाठ भी उनको पढ़ाया जाएगा। 5 जून के बाद में विशेष संपर्क अभियान चलाया जाएगा, जिसमें विभिन्न स्थानों पर स्वच्छता के कैंप, वृक्षारोपण के कैंप और इन 12 वर्षों में जो प्रगति के पथ निर्मित हुए हैं वहां पे भ्रमण करने का, उन प्रगति के जो इमारतें हैं वहां पर जाकर विकास की सूचक से रूबरू होने का मौका मिलेगा।
0: राज्यपाल हरिभाव बागड़े लोगों पर्यावरण मुजब जीवन शैली बना बारी अरज करी। विश्व पर्यावरण दिवसों पहली राज्यपाल आपरा संदेश माए एक पेड़ माँ के नाम अभियान रे तहत छायादार पौधा लगाबा और वारी चोखी देखभाल कर बारी अरज करी। अठीने पर्यावरण संरक्षण ने जन आंदोलन बनाबा और नागरिका ने पौधा लगाबा खातर जाग जगा बारा लगसू कालू हरियालो राजस्थान 2026 अभियान री शुरुआत वेरी है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा पूर्व इंडी शुरुआत करेला। विश्व वानिकी वृक्ष उद्यान माए होबा वाला इन कार्यक्रम माए जन प्रतिनिधि पढ़निया स्वयं सेवी संस्थावा और आम लोग मौजूद रहेला। प्रदेश भर माए विश्व पर्यावरण दिवस रे मौके कई कार्यक्रम रखा गया। इन मौके पालीरा जवाई हल्का माए खास स्वच्छता कार्यक्रम चलायो जावेला। इन मौके ब्यावरा टूरिस्ट विलेज देवमाली मा सिंगल यूज प्लास्टिक रे खिलाफ जागरूकता अभियान चलायो जावेला। दक्षिण पश्चिमी मानसून आज केरलम सो देश माए आग्यो है। भारत रा मौसम विज्ञान महकमो इनरी पुष्टि करी है कि आवता 2-3 दिन माए मानसून आगे बढ़ सके है। इनसो राजस्थान माए भी आंधी बारिश हो बारो अंदाजो है। इन बीच राज्य माए आज सो नयो पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय वियो है। इनसो उदयपुर जिला माए दोपहर पाछे मेह बरस्यो। वठीने डूंगरपुर रा सांबला माए ओला पड़िया। चूरू जिला रा बीनासर सातड़ा और सहला समेत कई गांव माए तेज अंधड़ रे पाछे चोखो मेह बरस्यो। मौसम महकमो आज 9 जिला माए आंधी बारिश रो ऑरेंज अलर्ट बतायो। वठीने जैसलमेर बाड़मेर जालोर और सिरोही ने छोड़कर बाकी ठोड़ा माथे येलो अलर्ट जारी करियो गयो है। विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप रा पहला संस्करण शुरुआत आज अहमदाबाद में भी। 5 दिन रा इन आयोजन में देश दुनिया रा करीब 500 एथलीट भाग ले रिया है। बाड़मेर में आज उत्तर पश्चिमी रेलवे रा पहला वाटर रिसाइकलिंग संयंत्र रो उद्घाटन करियो गयो। उत्तर पश्चिमी रेलवे रा महाप्रबंधक अमिताभ रेलवे स्टेशन माथे इनरी शुरुआत करी। करीब 2.5 करोड़ रुपया री लागत बढ़िया इन कारखाना रेलवे लीलन री धुलाई माए काम माए लियो गयो पानी दोबारा काम माए लियो जा सकेला। और अब है आखिर माए खास खबर एक फेरू। सर्वोच्च न्यायालय अदालत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग रो मसौदो जारी करियो। कोई भी न्यायिक फैसलो केवल एआई री कानून मुहैया कराया गया विश्लेषण माथे आधारित नहीं वेला। राजस्थान और राज्यसभा री 3 सीटा माथे चुनाव खातर भाजपा रा 2 प्रत्याशी ऐलान। सतीश पुनिया और अलका गुर्जर ने उम्मीदवार बनायो गयो। देश री पहली फ्लेक्स फ्यूल कार आज नवी दिल्ली माए लॉन्च करी गई। और ऊर्जा मंत्री हीरा लाल नागर कया राज्य सरकार हर घर और खेत ताई लगातार बिजली पुगाबा खातर कोशिश करी है। इंद्र सागे ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो भी हो माँ को आगलो समाचार बुलेटिन काल सुमार है 9 बजे हिंदी माए प्रसारित करियो जावेला। नमस्कार।

मीडियम वेव 266.6 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। शाम के 7 बजे हैं। हमारे ग्रामीण परिवार अब सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम खेती और घर।

0: राम राम धारणा भाई सा राम राम
1: राम राम बेड़ा भाई राम राम
0: कार्यक्रम होने वाला सभी किसान भाइयों ने भी अपनो
1: राम राम सा
0: देखो सा खेती और घर कार्यक्रम रो टेम वेगियो और सबने पतो है कि खेती और घर कार्यक्रम में गशो कार्यक्रम है क्या इनमें आप अच्छी अच्छी जानकारी दा चाहे वह फसलों जुड़ी थकी हुए बीजों जुड़ी थकी हुए तरह तरह योजना री बात हुए पशुधन री बात हुए समाज री बात हुए परिवार री बात हुए मौसम री बात हुए और लाल लाल आप प्यारा प्यारा रास्ता ने गीतों भी आप मनोरंजन करावा
1: बिल्कुल सा। तो देखो आज चौपाल री बात में आपने किसान भाई बिना वास्ते जानकारी लाया है कि मक्का री प्रमुख जो किस्म है वंडी जानकारी अगर आप ही अपने किसान भाई ने कराओ तो देखो मक्का भारत री एक महत्वपूर्ण खाद्यान्न और औद्योगिक फसल बने कही सका अनेरो उपयोग देखो भोजन पशु आहार और स्टार्च रे माध्यमों बड़ा बड़ा उद्योग और वंडे पैमाना पे वेतवाई रो है। और अब भी बात करा कि अणि क्षेत्र और मौसम री तो खरीफ रबी और जायद रे लिए मक्का री कई उन्नत और संकर किस्म जो है वह विकसित की दी लगी है। तो वणारी अधिक उपज रे वास्ते आप सब पहली बात करेंगा कि अधिक उपज देवा वाली जो संकर किस्म है ये किस्म आधुनिक तकनीकों तैयार की दी गई है जो कम समय में भारी पैदावार देवे और अनारे लोग रोगों लड़वारी जो क्षमता है वह अना मैंने बहुत अधिक वैसा
0: बिल्कुल बढ़िया बात होती है। अनि मैंने देखो गंगा 11 या कई भारत में बहुत लोकप्रिय और पुरानी और भरोसेमंद किस्म है। लगभग आप देखो 110 लोगों ने 115 दाना में पकने तैयार भी जावे। अंडा दाना पीला और आकर्षक भी है और यह किस्म मुख्य रूप खरीफ रे मौसम रे बात है बहुत अच्छी मानी गई। अंडी औसत पैदावार रही अगर आप बात करें तो 50-60 क्विंटल प्रति हेक्टर है सा।
1: बिल्कुल सा। और अब बात करें दक्कन री तो 103 या दक्षिण और मध्य भारत रे बेहतरीन जान में किस्म मिले है। अणीरा दाना थोड़ा मोटा और कड़ा वेवे यह सूखा सहन और करवारी क्षमता वेवे और लगभग 100-100 दाना में अंडी जो पौधे वा तैयार भी जावे। बायोसीड रे अगर बात करा तो अंडो नंबर है 9621 या निजी क्षेत्र में एक बहुत ही लोकप्रिय हाइब्रिड किस्म है या अपने उच्च उत्पादकता और चमकीला नारंगी पीला दाना रे वास्ते या किस्म जो है वह जानी जावे ऐसा।
0: बिल्कुल सा। और देखो जल्दी पाको वाली किस्म यानी कि 90 दिनों भी कम रही अगर आप बात करें तो कम वर्षा वाला क्षेत्र जटे की आप देखो फसलों के बीच में समय कम वेवे और जल्दी पकवा वाली जो किस्म वे वरदान साबित हुए। अभी बटे प्रकाश या किस्म ऐसी है कि 80-85 दिन महीने पाकने तैयार भी जावे और जल्दी तैयार वेवरे बावजूद अंडी पैदावार भी बहुत बढ़िया वेवे। लगभग 40-45 क्विंटल प्रति हेक्टर ही दरू या वेवे और यह वाणा क्षेत्र बात बहुत बढ़िया है जटे की पानी री कमी वेवे सा।
1: बिल्कुल सा। और अब दूसरी बात करा पूसा अर्ली हाइब्रिड री जो मंडी किस्म है अंडे मैंने 80-85 दना में या जो पौधे व तैयार भेजा वे अनेरा पौधा मध्यम ऊंचाई रा वेवे और यह खरीफ री शुरुआती मौसम रे लिए बहुत ही उपयुक्त है। अबे बतावा कि पोषण भरपूर किस्म सामान्य मक्का में आप कुछ आवश्यक अमीनो एसिड जैसा कि लाइसिन और ट्रिप्टोफेन री कमी वेवे तो वैज्ञानिक कुपोषण दूर करवा रे लिए क्वालिटी प्रोटीन मैच जो है वंडी किस्म तैयार की दी है। तो अंडे मैंने सबू पहली जो किस्म है वह शक्तिमान 1 और शक्तिमान 2 ये दो किस्म जो है वह उच्च गुणवत्ता वाली प्रोटीन अण में खूब सारो पाया जावे है। यह बिहार उत्तर प्रदेश झारखंड जैसा राज्य में काफ़ी लोकप्रिय है। अनेरो उपयोग मुख्य रूप में पौष्टिक पशु आहार और पोल्ट्री फीड बनावा में वेवे है। अबे बात करा HQPM 1 री तो यह भी एक बेहतरीन न्यूट्रिशनल किस्म है जो लगभग 100 दना में पक जावे है और अनेरो दाणो पीलो वेवे पैदावार अंडी काफ़ी अच्छी वेवे 50-55 क्विंटल हेक्टर प्रति या वेवे है सा।
0: बिल्कुल बढ़िया बात है सा। और देखो विशेष उपयोग वाली जो किस्म है अंडी अगर आप बात करें तो बाजार में आप देखो सीधे खावा और व्यावसायिक लाभ कमाओ रहते बहुत सारी किस्म की मांग और जो आप

0: बात बताइए आना किस्मारी वाणारी शहरा में बहुत तेजियों बढ़ रही है। अब एंड मैंने स्वीट कॉर्न वेगी यानी कि माधुरी और प्रिया आनी किस्म रे दाना मैंने चीनी री मात्रा अधिक वेवे और ये खावा में बहुत मीठा और स्वादिष्ट लावे। आना ने पकवा मैंने हरी अवस्थ में ही तोड़ ली तो जावे और भुट्टा प्रेमी जो वे और होटला में एंडी भारी मांग बढ़ी रेवे साहु।
1: बिल्कुल साहब, अब पॉपकॉर्न की बात करें तो आनी में जो दाना है वे छोटा वेवे, कड़ा वेवे और गोल वेवे। गर्म करवा पे ये बहुत ही अच्छी तरह का फूले है, जिन्हें के आप ही पॉपकॉर्न कहवा। किसाना रे लिए एक अत्यधिक मुनाफा वाली नकदी फसल है। कुल मिले ने आप यो कहूंगा कि मक्का री जो प्रमुख किस्म री, अगर आपने किसान भाई ने जानकारी कराई है तो मक्का री सही किस्म रो चयन करता समय किसाना ने आप इस क्षेत्र री मिट्टी, पानी री उपलब्धता और बुआई रे मौसम यानी कि खरीफ या रबी रो विशेष ध्यान रखना चाहवे। रबी जो है सर्दिया रे मौसम में मक्का री फसल पकवा में थोड़ो समय अधिक लगावे, लगभग 120 से 140 रे दन में या पक जावे, लेकिन अणी दौरान पैदावार खरीफ रे मुकाबला ज़्यादा स्थिर और अधिक मिले। तो सही हाइब्रिड और बीज आपी उचित अच्छी वाला किस्म वाला लांगा तो आपने किसान भैरी जो पैदावार है वह बहुत ही अच्छी वेगा सा।
0: बिल्कुल सही बात की सा। और देखो अब कार्यक्रम में आपको तो एक अच्छा सुरास्ता लोग की थोड़ा वा सा
1: होना सा।

0: तो देखो भेड़ा भाई प्यारो सो गीत हुणियो और आपने किसान भाई ने जानकारी कराई और अभी कार्यक्रम में और भी जानकारी करावा मौसम संबंधी।
1: बिल्कुल सही बात है सर। देखो कही कि अपने कार्यक्रम रो एकमात्र उद्देश्य यो है कि भाई जितना भी अपने किसान भाई हैं भाई बहना है वे अपन सबने पता है कि दिन रात खेता में मेहनत करे। हाँ और अपने कार्यक्रम रो एकमात्र उद्देश्य भी यही है कि भाई ये जितनी मेहनत करे अना ने पूरा पूरा फल मिलना चाहे।
0: हाँ
1: लेकिन कतरी बार कही हुए कि छोटी सी लापरवाही आवे कि अना ने यो पता नहीं हुए कि आओ वाला दो चार दिन गेड़े मौसम कशो रहेगा आनी जानकारी रहे भाव हूँ कही है कि अना ने नुकसान भी हो जाए क्योंकि कहिए कि धारणा भाई साहब आप देखो कि आजकल मौसम रो भरोसा नहीं। कतरी बार तेज आंधी तूफान है, कतरी बार बिल्कुल वर्का नहीं है, कतरी बार तेज वर्का है, तो मौसम रो कोई भरोसा नहीं। तो आज आप अपने कार्यक्रम में मौसम की जानकारी दें ताकि ये हावचेत महीने काम कर सके साहब।
0: हाँ सर, तो देखो आपने बात करा कि मौसम विज्ञान विभाग जयपुर प्राप्त सूचना के आधार पर आगामी दिनों में मौसम जो है वो

0: शुष्क रहेवारी संभावना है। हवारी गति 3 से 6 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगा। दक्षिण पश्चिम चालवार अधिकतम तापमान अगर बात करा तो 41 से 42 और न्यूनतम 25 से 26 रहेवारी संभावना है ऐसा।
1: बिल्कुल सा। और अगर आप सामान्य जानकारी बात करें तो मिट्टी में नमी बनाए रखो और बातें कही है कि पत्तियां रे बीच में सूखी जो घास वे और फसल रे अवशेषा ने उपयोग कर लेना चाहे और गर्म हवा रे जो बचाव रे बात है आप देखो खेतारी जो सीमा वे वणी पे पिंट्रेक्स स्ट्रिप्स या जूट री जाली लगानी चाहे सा।
0: बिल्कुल सा। और अब देखो गेहूं री बात करा तो अनाज रे भंडारण में रखवा पहली भंडार घर रे अच्छी तरीके अपने सफाई कर देनो चाहे वने सूखो कर देनो चाहे अनाज ने अच्छे तरीके धूप में ही सुखाई ने कूड़ो कचरो जलाई ने या दबाई ने नष्ट कर देनो चाहे। दाणा में अगर नमी है तो 12% ज़्यादा नहीं वेनी चाहे नहीं तो अनाज खराब हो जाएगा। भंडार गृह की छत दीवार और फर्श पर एक मग मिलाथियन 50 EC ने 100 भाग पानी में मिलाई ने छिड़काव करनो चाहे। और यदि पुरानी बोरियाँ प्रयोग करनी है तो पड़िया थका वणा ने अपने 1 भाग मिलाथियन व 100 ग्राम पानी रे घोल में 10 मिनट तक भिगोई ने पचे छायादार जगह पे सुखानी चावे सा।
1: बिल्कुल सा। और अगर आप मूंगरी बात करें तो सिंचाई अन टाइम में मूंगरी फसल फूल आवा या फली वनवारी अवस्था में वे तो अवस्था में नमी री कमी पैदावार घट जावे। अंडे बात है कि एक टाइम रहता था हल्की हल्की सिंचाई जारी रखनी चाहे और गर्म मौसम में आप देखो थ्रिम्स रो प्रकोप भी बढ़ जावे। अंडे बात है नियमित रूप निगरानी करता रहो सा।
0: बिल्कुल सा। कपास री बात करा तो अणी सप्ताह में अपने किसान भाई कपास री बुवाई लिए खेता ने तैयार करे और गुणवत्तापूर्ण प्रमाणित बीज कणी विश्वसनीय स्रोतु खरीदे। सब्जियां की बात करें तो देखो बेल वाली जो भी सब्जियां है कुष्मांडा कुलरी सब्जियां वणा में लाल भ्रंग कीट अंकुरित व नई पत्तियां ने खाई ने फसल में हानि पहुंचावे तो अणीरी रोकथाम रे लिए अपने किसान भाई कार्बेरिल 5% चूर्ण 25 किलोग्राम प्रति हेक्टरी दरू सुबह या हांजे भुरकाव करनो है सा।
1: बिल्कुल सही बात है सा। और अणी मैंने यहाँ पर जायद मूंगफली की बात करा तो खरपतवार रे प्रकोप ने नियंत्रित करवा बात है और उचित पैंगिंग रे बात है इंटरकल्चर ऑपरेशन और हाथों घुड़ाई री आवश्यकता वे तो यो टाइम पे ध्यान रखना है सा।
0: बिल्कुल सा। और भिंडी की बात करा तो तेज हवा चालवारी संभावना देखता था किसाना ने भिंडी और अन्य सब्जियों की तुड़ाई करवारी सलाह दी जावे ताकि संभावित जो नुकसान है वणु अपने किसान भाई बच सके। और ग्रीष्मकालीन हरा चारा की बात करें तो गर्मिया रे महीना में हरा चारा की कमी काफ़ी आम है अणी रे लिए। हरा चारा वाली जो फसलें हैं जैसे कि ज्वार बाजरा मक्का लोबिया आदि री बुवाई अपने किसान भाई ने कर लेनी चाहे। और ढांडा चौपारी की बात करें भेड़ा भाई तो देखो गर्मी रो टेम है अपने किसान भाई ने आप यूज कहंगा कि 2 टाइम ताज़ा जो पानी है वो अपने ढांडा चौपाने पिलाणो है। और लारे लारे देखो हरो चारो भी खिलाना है और हरो चारो नहीं खिले तो 4 महीने आपने खनिज लवण मिलाना है ताकि वहाँ ने पोषक तत्वारी पूरी जो है मिल सके। और लारे लारे अभी यो भी जानकारी करावा कि देखो मौसम संबंधी अगर अभी जानकारी दी थी तो बारिश आवारी संभावना है तो वनडे पहले अपने ढांडा चौपाने टीकाकरण अवश्य कराना है। तो देखो बेड़ा भाई या तो मौसम संबंधी जानकारी सामान्य खेती बाड़ी री और ढंडा चौपारी जानकारी कराई। और अब कार्यक्रम में आया हाँ प्यारा सो एक गीत होना सा।
1: बिल्कुल होना सा।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: तो देखो सर, अच्छो सो आप राजस्थानी लोकगीत हुनियो। और देखो आप अपने कार्यक्रम में हर दिन आप केंद्र सरकार और राज्य सरकार की कणी कणी योजना की जानकारी दा।
3: हाँ सर,
2: आज आप अपने कार्यक्रम में जो जानकारी लाया हाँ और योजना री अच्छी योजना वह यह है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना कई है सा।
3: बिल्कुल सर, तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन जो योजना है भारत सरकार द्वारा वर्ष 2007 या शुरू की दी गई यह केंद्र की योजना है और अनिल के जो योजना रो मुख्य उद्देश्य है वह है उन्नत तकनीक माध्यमों चावल गेहूं दाला और मोटा जो अनाज है तिलहन रो उत्पादन बढ़ानो और भूमि री उर्वरता ने बढ़ानो है सा।
2: बिल्कुल सा, और अंडे अगर मुख्य उद्देश्य री बात करें तो खाद्यान्न उत्पादन में निरंतर वृद्धि करना है। उन्नत बीज और उर्वरक और कृषि उपकरण रे वितरण रे जरिए आप देखो किसान ने आय बढ़ानो है। मिट्टी रे स्वास्थ्य और उर्वरकता में सुधार करना है। अंडे अलावा कई शामिल किस्म फसलां कई कई है बात बताओ सा।
3: बिल्कुल सा, और में दो बहुत सारी जो फसलां है वनडी शुरुआत में केवल चावल गेहूं और दलहन शामिल है। वनी रे बाद अनिरा जो दायरा है वे बढ़ने अण में तिलहन और पोषक अनाज जो कि मोटा अनाज और श्री अन्न में भी शामिल की दो है। वन में आप ये बतावा कि नवीनतम जो अपडेट है कि 2024-26 ने हाल ही में सरकार द्वारा मिशन नाम बदलने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन NFSNM कर दी दो है। झंडे तहत पोषण क्षमता निर्माण और नई उन्नत जो किस्म है वणी रे बीजा पे विशेष जोर दी दो जाई रो है सा।
2: बिल्कुल सा, और अणी योजना में ने किसान भाई बहना ने मिलवा वाली जो सुविधा है अगर वंडी ये बात करा तो देखो कही है कि अणी मैंने किसान ने घना हारा लाभ प्रदान किया था जावे। वणी मैंने उच्च उपज वाली किस्म जन है कि HYV जन मैंने बीजा रो उत्पादन वेग्यो या वितरण वेग्यो। उन्नत बीज उपकरण यानी कि सूक्ष्म पोषक तत्व और जैव उर्वरक पे सब्सिडी है। किसानों के प्रशिक्षण और प्रदर्शन की बात करा तो वणी में भी अणी मैंने सुविधा है सा।
3: बिल्कुल सा, और अणी योजना रो लाभ किससे लेवे तो आप ही बतावा किसान भाई ने कि यदि आप अणी योजना रो लाभ उठानो चाहो तो आप अपने राज्य रे कणी भी कृषि विभाग ये अपने क्षेत्र रे ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों संपर्क कर सको। अनिरे अतिरिक्त जो पाइपलाइन और स्प्रिंकलर फव्वारा जो और पंप सेट जैसी जो सुविधा है वणु भी आप राज्य रे कृषि पोर्टल जैसे कि ई कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल रे माध्यमों ऑनलाइन जो है वे पंजीकरण अपने जो किसान भाई है वे कर सके। और योजना की जो विस्तृत पूरी जानकारी है वह दिशा निर्देश के लिए आप राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन NFSM आधिकारिक वेबसाइट पर जाइने आप अपनी पात्रता और अन्य योजनाओं जुड़ी थकी जो भी जानकारी है वह अणु हासिल कर सको। तो या तो ही बेड़ा भाई योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन अब कार्यक्रम में एक और मनभावन राजस्थानी लोकगीत होना सा।
2: बिल्कुल सा।

0: तो देखो बेड़ा भाई प्यारो सो गीत गुण्यो। और अब देखो कार्यक्रम में आपी जानकारी करामा अपने किसान भाई बहना ने बीजोपचार रा लाभ कई कई है। तो देखो किसान भाई बीजोपचार जो है वो आधुनिक खेती बाड़ी रो एक अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सों है। और बीज बोवाओ पहली वणा पे रासायनिक जैविक और भौतिक पदार्थारी परत चढ़ाणो या वणा ने विशेष प्रक्रियाओं गुजारणो ही आपी बीजोपचार कहलावे है। सा सरल और आसान शब्दों में कहाँ तो देखो जैसे नवजात शिशु ने बीमारियों बचावा रे लिए जो विशेष टीका लगाया जावे वणा ने बीजाओं सुरक्षित रखवा रे लिए बीजोपचार किदो जावे। तो आप ही बतावा कि जो बीजोपचार रा मुख्य मुख्य जो लाभ है तो सब पहली जो लाभ अपने किसान भाई ने मिले वो है कि रोगा और कीटा रे प्रारंभिक सुरक्षा वणा ने मिले। तो देखो किसान भाई मिट्टी और बीज में कई तरह रा हानिकारक फंगस बैक्टीरिया और कीट्स बैठे वे जो अपने नजरे नहीं आवे। तो बीजोपचार ऐसी विधि है जणू बीजा रे चारों ओर एक सुरक्षा कवच बन जावे है। और ये अंकुरण रे समय लागवा वाला जो प्रमुख रोग है जैसे कि जड़ गलन कालर गलन और उकटा रोग ये पौधा की रक्षा करे। और अनेरे अलावा जो ये शुरुआती अवस्था में रस चूसा वाला कीट जैसे कि थ्रिप्स और एफिडस रे जो हमलाओं वणा ने रोके है सा।
1: बिल्कुल साहब, रानी मैंने अंकुरण क्षमता में ने सुधार की बात करा तो अनुपचारित बीज री तुलना में अनुपचारित बीज अंकुरण दर री अगर आप बात करें तो काफ़ी अधिक वे। और आप देखो उपचार के कारण बीज रे अंदर ही जो सुसुप्त अवस्था वे सही समय पे टूटे। और आप देखो लगभग सही सभी बीज एक हाथे और स्वस्थ रूपों अंकुरित वे और खेत में खाली जगह बिल्कुल नहीं बचे और फसल घनी वे साहब।
0: बिल्कुल सर, प्रतिकूल मौसम में लड़वारी जो शक्ति है वह मिले। कभी कभी बीज बोवारे बाद भी मौसम जो है कतरी बार खराब हो जावे तो ऐसा महीने अचानक सूखो पड़वा लाग जा अत्यधिक नमी वेवा लाग जा और बीजोपचार बीजा ने तनावपूर्ण

0: परिस्थितियों सहवारी जो ताकत है वह देवे है, जड़ में विपरीत मौसम में भी जो पौधा है वे जीवित बने थका रहे वैसा।
1: बिल्कुल सा, और जड़ारो बेहतर विकास और पोषण की बात करें तो यदि बीजा ने राइजोबियम और पीएसबी और अजोटोबैक्टर और जैसे जैविक टीकाओं उपचारित किया जावे तो वे हवा में नाइट्रोजन सोखना, मिट्टी में मौजूद अघुलनशील फास्फोरस गोलवारों काम करे और अणी में जड़ारो विकास तेजी में बेवे और पौधों मिट्टियों ज़्यादा पोषक तत्व खींच पावे सा।
0: बिल्कुल सा, और मैं बतावा जो लाभ री बात बताई रहा तो लागत में कमी और अधिक मुनाफा अपने किसान भाई ने मिले। शुरुआती बीमारी अगर पतो लग जाए तो बाद में पूरी खड़ी फसल पे महंगी कीटनाशी दवा और छिड़काव करना पड़े। बीजोपचार बहुत कम खर्च में वे जावे और ये बाद में बड़ा खर्चा ने टाल देवे। स्वस्थ पौधा रे कारण अंत में पैदावार जो है वह 15-20% तक बढ़ जावे तो आपने किसान भाई ने लाभ मिले सा। अब ये बतावा कि बीजोपचार सही क्रम कसो है तो अधिकतम लाभ पावार वास्ते देखो सबू पहली आप FIR की बात करा तो सबू पहली कवकनाशी, वंडे बाद कीटनाशी और वंडे बाद जैविक टीका, ये पूरा क्रम है। तो अणी क्रम में आप ही बतावा के सबू पहली आप जैविक और रासायनिक बीजोपचार विधि जने घर पे उपलब्ध चीजा जैसे कि गौमूत्र, छाछ और दवा रे माध्यम आप ही बीजोपचार कर सका। और देखो ये सब जो चीजें आप ही बताई और लाभ जो बताए वे अपने किसान भाई रे कठिन कठिन काम आएगा। तो सब पहले आप यो इस कहूँगा कि देखो बीजोपचार अपने खेती बाड़ी रो एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, तो अपने जो किसान भाई है वे बीजोपचार करने ही खेता में करे काम। तो देखो बेला भाई यह तो जानकारी कराई बीजोपचार का लाभ, और अब कार्यक्रम में एक और मन भावन गीत होना सा।
1: बिल्कुल सा।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: तो देखो भेड़ा भाई, प्यारो सो गीत हुणियो, लरा लरे हुणिया संदेश। और अभी कार्यक्रम में आप ये जानकारी करावा अपने किसान भाई ने बीज अधिनियम और विनिमय दे वास्ते। तो सबू पहली आप ही बात करा अंडे पंजीकरण रे लिए, तो सभी बीज कंपनियां उत्पादक और डीलर रे पंजीकरण अनिवार्य है। राज्य बीज प्रमाणन एजेंसी केंद्र सरकार पोर्टल पर पंजीकरण और यूनिक आईडी लाइसेंस नंबर जारी कर सका। हाँ सा
3: बिल्कुल सा। और एनिमी ने अगर आप बीज उत्पादन की बात करें तो स्वीकृत किस्म और वेराइटी और उपयोग एनिमी ने निर्धारित आइसोलेशन और दूरी स्वच्छ खेत बीज उपचार उचित कृषि प्रथा और रिकॉर्ड रो रख रखाव भी एनिमी ने आवे सा। अब कई प्रमाणन और परीक्षण की बात करें तो अधिकृत निरीक्षक और फील्ड निरीक्षण और लेब रा नमूना परीक्षण भी गयो, अंकुरण शुद्धता नमी स्वास्थ्य अनुवांशिक शुद्धता ये भी अणिमेनी सावे सा।
2: बिल्कुल सा। और अभी बतावा कि जो अभी बताई रहा बीज अधिनियम रे वास्ते तो लेलनिंग और पैकेजिंग री बात करा तो प्रमाणित टैग लेबल अनिवार्य, प्रत्येक पैकेट पे QR कोड, लेबल रो पे आवश्यक जानकारी जन्मे किस्म बैच नंबर अंकुरण री शुद्धता नमी कति प्रतिशत है, उत्पादन तिथि वैधता निर्माता रो नाम और लाइसेंस नंबर ये सब है। और लारे बतावा कि वितरण और बिक्री री तो केवल लाइसेंसधारी डीलर द्वारा बिक्री वेवे और उचित भंडारण और हैंडलिंग भी वेवे। बिल रसीद जारी करनो अनिवार्य है और स्टॉक रो रिकॉर्ड रखनो भी अनिवार्य है सा।
3: बिल्कुल सा। और आणि मैंने निरीक्षण री बात करा तो बीज निरीक्षक द्वारा नियमित निरीक्षण, स्टॉक दस्तावेज और गुणवत्ता जाँच और आप देखो कि संदिग्ध बीज नमूना सील करने प्रयोगशाला परीक्षण भी आने में नहीं सावे सा।
2: बिल्कुल सा। और अभी बतावा कि जो किसान अधिकार है किसान बीज बचाई सके उपयोग कर सके और देखो अन महीने दूसरों ने बांट भी सके, पारंपरिक प्रथा रो संरक्षण कर सके, उचित मूल्य जो गुणवत्ता वाला बीज है वन प्राप्त करने वाला अधिकार कर सके, निगरानी और डिजिटल ट्रेसबिलिटी री अगर बात करा तो QR कोड स्कैन नू पूरी जानकारी उपलब्ध कराई सके और बीज पोर्टल पर डेटा अपलोड कर सके। और अभी बात करा दंड और प्रावधान ने तो नकली घटिया बीज पे 30 लाख तक रो जुर्मानो है, दोषी पाया जावे पे 3 वर्ष रो कारावास है और लाइसेंस रद्द और कानूनी कार्यवाही अलग वेगा। किसाना ने व्यथा का जो नुकसान है वंडी भरपाई भी वेगा, अपेक्षित लाभ भी जटे बात करा तो उत्पादन और आय में वृद्धि वेगा और अपने किसान भाई ने सुरक्षा और विश्वास मिलेगा, नकली बीज पर रोक लगेगा और सतत सुनिश्चित जो अपने खेती बाड़ी रो जो प्रावधान है वो अपने किसान भाई ने मिलेगा सा।
3: बिल्कुल सही बात है सा। तो आना बता रो ध्यान रखना है और अबे आपको तो एक अच्छो राजस्थानी लोकगीत होने दा सा।
2: होना सा
3: धर्मशाला।

0: तो देखो बेड़ा भाई प्यारो सो गीत हुणियो, लार लार हुणे संदेश, और देखो आज कार्यक्रम में खूब सारी जानकारी कराई, हाउ हाउ गीत हुणाया, और अब देखो कार्यक्रम में टाइम वे गयो है, तो विदा लासा, जय जवान
1: जय किसान।

हमारे ग्रामीण परिवार अभी सुन रहे थे कार्यक्रम खेती और घर। हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज़ पर। रात के 8 बजे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

कयामत से कयामत तक, इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज़ में। फिल्म संगीत कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब हम सुनते हैं अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में दिल है कि मानता नहीं, इस फिल्म का ये नगमा।

सूर्यवंशम इस फिल्म से अभी आप सुन रहे थे कुमार सानू को। फिल्म संगीत का कार्यक्रम चल रहा है आकाशवाणी उदयपुर से। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब हम आपको सुनवाते हैं दिल है तुम्हारा फिल्म का नगमा, जिसे संगीतबद्ध किया है नदीम श्रवण ने, गीत को आवाज़ दी है शान और कविता कृष्णमूर्ति ने।

आकाशवाणी उदयपुर से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में आइए अब सुनते हैं हंगामा फिल्म का ये गाना, जिसे शान और साधना सरगम ने गाया है।

हम आपके दिल में रहते हैं, इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू की आवाज़ में। आइए अब कार्यक्रम के अंत में चलते चलते हम आपको सुनवाते हैं हम इस फिल्म का गाना। सुदेश भोसले, मोहम्मद अजीज और उदित नारायण और लता मंगेशकर की आवाज़ें हैं।

0: हम फिल्म के इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम यही समाप्त होता है। हम आकाशवाणी उदयपुर से बोल रहे हैं। रात के 8:45 होने को हैं। आइए आकाशवाणी दिल्ली से अब हम सुनते हैं समाचार संध्या और रात 9 न्यूज 8:09।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। भारत और वेनेजुएला ने द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ऊर्जा, व्यापार, स्वास्थ्य सेवा तथा अन्य क्षेत्रों में सहयोग के नए अवसर तलाशने पर चर्चा की। गृहमंत्री अमित शाह ने पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों से नई पीढ़ी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और ब्लॉकचेन के बुनियादी ढांचे पर ध्यान देने को कहा। अहमदाबाद में विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप का शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि इससे योगासन को वैश्विक खेल पहचान मिलेगी। पेट्रोल और एथेनॉल की अलग अलग मात्रा के मिश्रित ईंधन से चलने वाली देश की पहली फ्लेक्स फ्यूल यात्री कार लॉन्च। मानसून ने दी केरलम में दस्तक। केरलम, कर्नाटक और तमिलनाडु में अगले 7 तक मूसलाधार बारिश का अनुमान। और भारतीय मुक्केबाज जैस्मिन लेम्बोरिया विश्व बॉक्सिंग रैंकिंग में पहले स्थान पर पहुंची। प्रिया घंघास और विश्वनाथ सुरेश ने शीर्ष 3 में जगह बनाई। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत और वेनेजुएला के बीच संबंधों पर चर्चा की तथा ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने

0: के नए अवसरों पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर बताया कि दोनों देशों के बीच ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज, तकनीक, कृषि, स्वास्थ्य और लोगों के बीच आपसी संपर्क जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि लैटिन अमरीका में एक महत्वपूर्ण साझेदार के रूप में वेनेजुएला के साथ भारत का घनिष्ठ सहयोग विकासशील देशों के उत्थान के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। बैठक के बाद विदेश मंत्रालय में पूर्वी क्षेत्र के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने मीडिया को बताया कि आज की बातचीत का मुख्य विषय ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत करना था।
1: आर्थिक सहयोग को सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित न रखकर खनन, पशुपालन, परिवहन, कृषि उपकरण, ऑटोमोबाइल और दवा उद्योग जैसे क्षेत्रों तक विस्तारित करने पर चर्चा हुई। चर्चा का उद्देश्य ऐसे अवसर और तरीके तलाशना है जिनसे भारतीय कंपनियां वेनेजुएला के बाजार में सफलतापूर्वक अपना कारोबार बढ़ा सकें।
0: गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने पूर्वोत्तर में हिंसा के युग का अंत करके इस क्षेत्र को विवादों के केंद्र से अवसरों के केंद्र में बदल दिया है। पूर्वोत्तर परिषद के 73वें पूर्ण सत्र में भाग लेने के बाद सोशल मीडिया पोस्ट में गृहमंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर परिषद इस क्षेत्र के विकास के लिए रणनीतिक योजना बनाने का कार्य कर रही है। बैठक में गृहमंत्री ने मुख्यमंत्रियों से कहा कि वे कानून व्यवस्था पर ध्यान देने के बजाय नागरिकों के अधिकारों की रक्षा पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि उग्रवाद अब कोई मुद्दा नहीं रह गया है। उन्होंने राज्यों को नई पीढ़ी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का बुनियादी ढांचा तैयार करने को भी कहा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी तथा केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में भारत की पहली फ्लेक्स फ्यूल यात्री कार का लोकार्पण किया। इसका निर्माण मारुति सुजुकी ने किया है। इस अवसर पर श्री पुरी ने कहा कि यात्री वाहनों में फ्लेक्स फ्यूल तकनीक की शुरुआत भारत की ऊर्जा परिवर्तन यात्रा का एक नया अध्याय है। श्री नितिन गडकरी ने कहा कि फ्लेक्स फ्यूल वाहनों से प्रदूषण कम करने, कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता घटाने और विदेशी मुद्रा की बचत करने में मदद मिलेगी।
2: हमारे देश से करीब 22 से 23 लाख करोड़ रुपए हम फॉसिल फ्यूल के इंपोर्ट के लिए खर्चा करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हमको आत्मनिर्भर भारत बनाना है। अगर आत्मनिर्भर भारत बनाना है तो हमें इंपोर्ट को कम करना पड़ेगा और एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा। हमारे देश में अगर ये इंपोर्ट को कम करना है तो हमें अल्टरनेटिव फ्यूल और बायो फ्यूल पर काफी काम करने की आवश्यकता थी, और इसलिए ये जो इंडस्ट्री है यही हमारे देश के ग्रोथ इंजिन है।
0: फ्लेक्स फ्यूल वाहन पेट्रोल और एथेनॉल के विभिन्न मिश्रणों पर चल सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार सरकार के पिछले 12 वर्षों के विभिन्न क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम इस श्रृंखला में बात करेंगे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों के बारे में।

0: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देने के साथ साथ कारोबार को आसान बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। इन सुधारों से निवेशकों का भरोसा बढ़ा है और भारत दुनिया में प्रतिस्पर्धी व्यापारिक केंद्र के रूप में मजबूत हुआ है। 2016 में शुरू की गई स्टार्टअप इंडिया योजना नवाचार, उद्यमिता और निवेश आधारित विकास को बढ़ावा दे रही है। सरकार के प्रयासों के कारण देश में स्टार्टअप की संख्या 2016 में लगभग 500 से बढ़कर इस साल मार्च तक 2,23,000 से अधिक हो गई है। वहीं जून 2021 में आयकर विभाग ने नया ई फाइलिंग पोर्टल शुरू किया ताकि करदाताओं को अधिक सुविधा और बेहतर ऑनलाइन सेवाएं मिल सकें। महाराष्ट्र के ठाणे के चार्टर्ड अकाउंटेंट मनोज बासेर ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में किए गए सुधारों से अर्थव्यवस्था को स्थिरता मिली है।
1: केंद्र सरकार के अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष कर के ऊपर किए गए रिफॉर्म्स देश की इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा स्टेप है स्टेबिलिटी के लिए। अप्रत्यक्ष कर के रिफॉर्म से वन नेशन वन टैक्स का एडवांटेज काफी क्लियरिटी देता है कि हमें बिजनेस कैसे करना है, लोगों को टैक्स के बारे में पूरा नॉलेज और क्लियरिटी आती है। इससे एक देश की इमेज भी बहुत अच्छी हुई है और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हुई है।
0: वहीं सरकारी खरीद प्रक्रिया को डिजिटल, सरल और सभी के लिए सुलभ बनाने के लिए 2016 में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम की शुरुआत की गई। जेम पर अब तक कुल 18 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार हो चुका है। जेम से जुड़ी एक विक्रेता कामिनी गुप्ता ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि जेम की प्रक्रिया काफी सरल और पारदर्शी है और सरकारी खरीदारों तक पहुँच प्रदान करता है।
2: ये डिजिटल खरीद मंच है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और इनकी जो टेक्निकल टीम है और जो भी हमारे लोग जुड़े हैं जेम से, ये एक प्राइवेट कंपनी की तरह काम करते हैं। इनका सहयोग मिलता रहता है। एमएसएमई, स्टार्टअप, महिला उद्यमियों और निर्माताओं को सीधे सरकारी खरीदारों तक पहुंच प्रदान करता है।
0: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई के पंजीकरण को आसान बनाने के लिए केंद्र सरकार ने उद्यम पंजीकरण पोर्टल की शुरुआत की। इस पोर्टल पर पंजीकरण की संख्या अक्टूबर 2020 में 10,000 थी, जो बढ़कर अब 8,31,000 से अधिक हो गई है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
4: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
3: ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि योग मानवता को भारत का एक अनमोल उपहार है। अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि योग मन, शरीर और आत्मा को एकजुट करता है। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि प्रथम विश्व योग चैंपियनशिप योगासन को वैश्विक खेल पहचान दिलाएगी और युवाओं के लिए व्यापक अवसर उपलब्ध कराएगी।
5: इस चैंपियनशिप के माध्यम से योगासन को एक कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स के रूप में नई पहचान मिलेगी। मुझे विश्वास है कि भविष्य में योगासन भी अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद में अपनी जगह बनाएगा, चाहे ओलंपिक्स हो या मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट्स हो। हम जितनी मेहनत करेंगे सुखद परिणाम आ भी सकता है।
3: हमारी संवाददाता ने बताया कि विश्व योगासन चैंपियनशिप का आयोजन युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, आयुष मंत्रालय और भारतीय खेल प्राधिकरण के सहयोग से किया गया है।
6: अहमदाबाद का एक्का एरिना आज से शुरू हुई पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप के साथ ही एक बड़े ऐतिहासिक बदलाव का गवाह बन रहा है। इस वैश्विक प्रतियोगिता में अमेरिका, घाना, केन्या और मलेशिया सहित 60 से अधिक देशों के 400 से अधिक प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। मेजबान भारत ने 6 आयु श्रेणियों में मुकाबले के लिए अपनी 122 सदस्यों की टीम उतारी है। परणा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
3: जकार्ता में इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में एमआर अर्जुन और हरिहरन अमसाकुरणन ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष डबल्स में आज भारतीय जोड़ी ने मलेशिया के एरोन ताई और कैंग खाईजिंग को शिकस्त दी। विश्व बॉक्सिंग रैंकिंग में जैस्मिन लंबोरिया ने महिलाओं की 57 किलोग्राम भार वर्ग में नंबर एक स्थान हासिल कर लिया है। वहीं प्रिया घांघस 60 किलोग्राम भार वर्ग और विश्वनाथ सुरेश 50 किलोग्राम भार वर्ग में शीर्ष तीन में

0: जगह बनाने में सफल हुए हैं। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने परीक्षा प्रक्रिया को और अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए फेस ऑथेंटिकेशन प्रणाली की शुरुआत की है। आयोग ने इस तकनीक का सफल उपयोग हाल ही में आयोजित प्रारंभिक सिविल सेवा परीक्षा और इस वर्ष हुए भारतीय वन सेवा परीक्षा में किया। भारतीय जनता पार्टी ने आज राज्यसभा चुनाव और उपचुनाव के लिए अपने 11 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी। पार्टी ने मध्य प्रदेश से राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल को उम्मीदवार बनाया है। राजस्थान से डॉ अलका गुर्जर और डॉ सतीश पूनिया को मैदान में उतारा गया है। राज्यसभा की 24 सीटों के लिए चुनाव 18 जून को होने हैं। इसके अलावा ओडिशा, महाराष्ट्र और तमिलनाडु की एक एक सीट पर भी उपचुनाव कराए जाएंगे। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने आज एक नए डिजिटल पोर्टल की घोषणा की, जिससे अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के सहयोग से विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य भारत के शोध तंत्र को मजबूत करना है। और बात मौसम की, दक्षिण पश्चिम मानसून आज केरलम पहुंच गया। मौसम विभाग ने केरलम और कर्नाटक में अगले 7 दिनों तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। तमिलनाडु में भी तेज बारिश हो सकती है। माहे, पुदुचेरी और काराईकाल में भी कल तेज बारिश की संभावना है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है। बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, झारखंड और पश्चिम राजस्थान में भी कल गरज के साथ बिजली चमकने की संभावना है। इस बीच दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आज तेज बारिश हुई। लोगों को गर्मी और उमस भरे मौसम से थोड़ी राहत मिली। आज रात भी हल्की वर्षा की संभावना है। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने अगस्त सितंबर सत्र के लिए अपने इंटर्नशिप कार्यक्रम में भाग लेने के लिए महिलाओं से आवेदन आमंत्रित किए हैं। इसमें छात्राएं, शोधकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षक शामिल हो सकते हैं जो किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक गैर शैक्षणिक संस्थान से जुड़े हों। आवेदन ऑनलाइन पोर्टल wcd.intern.nic.in के माध्यम से किए जा सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और वेनेजुएला ने द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ऊर्जा, व्यापार, स्वास्थ्य सेवा तथा अन्य क्षेत्रों में सहयोग के नए अवसर तलाशने पर चर्चा की। गृहमंत्री अमित शाह ने पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों से नई पीढ़ी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और ब्लॉकचेन के बुनियादी ढांचे पर ध्यान देने को कहा। अहमदाबाद में विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप का शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि इससे योगासन को वैश्विक खेल पहचान मिलेगी। पेट्रोल और एथेनॉल की अलग अलग मात्रा के मिश्रित ईंधन से चलने वाली देश की पहली फ्लेक्स फ्यूल यात्री कार लॉन्च। और मानसून ने दी केरलम में दस्तक। केरलम, कर्नाटक और तमिलनाडु में अगले 7 दिन तक मूसलाधार बारिश का अनुमान। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani and I'm Saira Mujtaba with the news at 9. The headlines. India and Venezuela review full spectrum of bilateral relations and explore new avenues of cooperation in energy, trade and healthcare. Home Minister Amit Shah asked the chief ministers of northeastern states to focus on AI, machine learning and blockchain infrastructure for new generations. World Yogasan Sports Championship begins in Ahmedabad. Prime Minister Narendra Modi hopes it will give Yogasan a global sports identity. India launches first flex-fuel passenger vehicle operating on a wide range of ethanol-petrol blends. Southwest monsoon hits Kerala. IMD forecasts heavy to very heavy rainfall over Kerala, Karnataka and Tamil Nadu during the next 7 days. And in world boxing rankings, India's Jasmine Lamboria climbs to world number 1, while Priya Ghangas and Vishwanath Suresh enter into top 3. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today held talks with Acting President of Venezuela, Delcy Rodriguez, in New Delhi. The two leaders reviewed the full spectrum of bilateral relations and explored new avenues of cooperation in energy, trade, investment, healthcare and automobiles, among others. In a social media post, Mr. Modi said they had extensive discussions on expanding cooperation in energy, critical minerals, technology, agriculture, health and people-to-people ties. He said that as a valued partner in Latin America, India's close

0: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
1: आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: सुगम संगीत आज के इस कार्यक्रम में हम

आशा भोसले की गाई हुई इस गज़ल के साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। आइए अब आपको लिए चलते हैं फिल्मी गीतों की सुरीली दुनिया में और सुनते हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत।

0: सिंगम रिटर्न्स इस फिल्म का गाना अभी आप सुन रहे थे अंकित तिवारी और तुलसी कुमार की आवाज़ों में। फिल्म संगीत कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं वरुण जैन और शिल्पा राव की आवाज़ में स्त्री 2 फिल्म का ये नगमा।
1: फिर से

सुनील कामत की आवाज़ में भाग जोनी, इस फिल्म का गाना भी आपने सुना, एक दीवाने की दीवानियत। आइए अब इस फिल्म का गीत हम सुनते हैं विशाल मिश्रा की आवाज़ में।

विक्की विद्या का वो वाला वीडियो। आइए कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं विशाल मिश्रा और हंसिका पारिक की आवाज में ये गाना।

0: इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत में कुछ पुराने समय के गाने। जी हाँ, कुछ ऐसे गीत जो सुनने में तब भी इतने ही जवां थे जितने की आज

सरगम फिल्म के इस गाने के बाद आइए आर डी बर्मन के संगीत निर्देशन में सुनते हैं रोमांस फिल्म का गाना, जिसे अमित कुमार और लता मंगेशकर ने गाया है।

आकाशवाणी उदयपुर से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत आपकी कसम। आइए अब इस फिल्म का नगमा सुनते हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में। संगीत निर्देशन आर डी बर्मन का है।

गैम्बलर फिल्म के इस गाने के बाद हाथ की सफाई, इस फिल्म का गीत हम सुनते हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। इस गीत को संगीतबद्ध किया है कल्याण जी वीरजी शाह ने।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में गाइड फिल्म का गीत अभी आपने सुना। आकाशवाणी उदयपुर से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। फिल्म संगीत कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं हेमलता की आवाज के साथ। फिल्म का नाम है दुल्हन वही जो पिया मन भाए।

0: भ्रष्टाचार फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम यही समाप्त होता है।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें,
3: मेल कीजिए salesairjc@gmail.com यानी salesairjc@gmail.com पर। हमारे चैनल हमेशा तत्पर, हमेशा सुरीले सफर पर।
0: ये आकाशवाणी उदयपुर है, रात्रि के 11 बजने को हैं। आइए आकाशवाणी दिल्ली से अब हम सुनते हैं समाचार, पहले हिंदी और फिर अंग्रेजी में।
4: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत और वेनेजुएला के बीच संबंधों पर चर्चा की तथा ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के नए अवसरों पर विचार किया। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर बताया कि दोनों देशों के बीच ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज, तकनीक, कृषि, स्वास्थ्य और लोगों के बीच आपसी संपर्क जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि लैटिन अमरीका में एक महत्वपूर्ण साझेदार के रूप में वेनेजुएला के साथ भारत का घनिष्ठ सहयोग विकासशील देशों के उत्थान के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। बैठक के बाद विदेश मंत्रालय में पूर्वी क्षेत्र के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने मीडिया को बताया कि आज की बातचीत का मुख्य विषय ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत करना था।
5: आर्थिक सहयोग को सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित न रखकर खनन, पशुपालन, परिवहन, कृषि उपकरण, ऑटोमोबाइल और दवा उद्योग जैसे क्षेत्रों तक विस्तारित करने पर चर्चा हुई। चर्चा का उद्देश्य ऐसे अवसर और तरीके तलाशना है जिनसे भारतीय कंपनियां वेनेजुएला के बाजार में सफलतापूर्वक अपना कारोबार बढ़ा सकें।
4: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने पूर्वोत्तर में हिंसा के युग का अंत करके इस क्षेत्र को विवादों के केंद्र से अवसरों के केंद्र में बदल दिया है। पूर्वोत्तर परिषद के 73वें पूर्ण सत्र में भाग लेने के बाद सोशल मीडिया पोस्ट में गृहमंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर परिषद इस क्षेत्र के विकास के लिए रणनीतिक योजना बनाने का कार्य कर रही है। बैठक में गृहमंत्री ने मुख्यमंत्रियों से कहा कि वे कानून व्यवस्था पर ध्यान देने के बजाय नागरिकों के अधिकारों की रक्षा पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि उग्रवाद अब कोई मुद्दा नहीं रह गया है। उन्होंने राज्यों को नई पीढ़ी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का बुनियादी ढांचा तैयार करने को भी कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि योग मानवता को भारत का एक अनमोल उपहार है। अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि योग मन, शरीर और आत्मा को एक दूसरे से जोड़ता है। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि प्रथम विश्व योग चैंपियनशिप योगासन को वैश्विक खेल की पहचान दिलाएगी और युवाओं के लिए

0: व्यापक अवसर उपलब्ध कराएगी।
1: इस चैंपियनशिप के माध्यम से योगासन को एक कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स के रूप में नई पहचान मिलेगी। मुझे विश्वास है कि भविष्य में योगासन भी अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद में अपनी जगह बनाएगा, चाहे ओलंपिक्स हो या मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट्स हो। हम जितनी मेहनत करेंगे सुखद परिणाम आ भी सकता है।
0: भारतीय जनता पार्टी ने आज राज्यसभा चुनाव और उपचुनाव के लिए अपने 11 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। पार्टी ने मध्य प्रदेश से राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल को उम्मीदवार बनाया है। राजस्थान से डॉ अलका गुर्जर और डॉ सतीश पुनिया को मैदान में उतारा गया है। राज्यसभा की 24 सीटों के लिए चुनाव 18 जून को होने हैं। इसके अलावा उड़ीसा, महाराष्ट्र और तमिलनाडु की एक एक सीट पर उपचुनाव भी कराए जाएंगे। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने आज मिजोरम के चम्फाई जिले में 9 स्थानों पर छापेमारी की। ये कार्रवाई म्यांमा से अवैध रूप से लाई जा रही सुपारी की तस्करी और 970 करोड़ रुपए से अधिक की आपराधिक आय से जुड़े धन शोधन के मामले में की गई। दक्षिण पश्चिम मॉनसून आज केरलम पहुंच गया है। मौसम विभाग ने केरलम और कर्नाटक में अगले 7 दिनों तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। तमिलनाडु में भी तेज बारिश हो सकती है। माहे, पुद्दुचेरी और कराईकल में भी कल तेज बारिश होने की संभावना है। बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, झारखंड और पश्चिम राजस्थान में भी कल गरज के साथ बिजली चमकने की संभावना है। विश्व बॉक्सिंग रैंकिंग में जैस्मीन लंबोरिया ने महिलाओं की 57 किलोग्राम भार वर्ग में नंबर एक स्थान हासिल कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय किरण झा। Prime Minister Narendra Modi today held talks with acting President of Venezuela, Delcy Rodriguez, in New Delhi. The two leaders reviewed the full spectrum of bilateral relations and explored new avenues of cooperation in energy, trade, investment, healthcare and automobiles, among others. In a social media post, Mr. Modi said they had extensive discussions on expanding cooperation in energy, critical minerals, technology, agriculture, health and people-to-people ties. He said that as a valued partner in Latin America, India's close cooperation with Venezuela holds immense importance for the global South. He said both nations will continue to work together for the mutual benefit of the people of the two countries. Addressing media after the talks, Secretary East Rudrinder Tandon said Venezuela possesses one of the largest oil reserves in the world. He said today's discussions between the two sides focused on forging an energy partnership between the two countries, as Venezuelan energy sector is undergoing a fundamental transformation. Union Home Minister Amit Shah today said that Narendra Modi government ended the era of violence in the northeast and transformed the region from the hotspot of disputes to that of opportunities. After attending the 73rd plenary session of the Northeastern Council, NEC, Mr. Shah, in a social media post, said, "Today NEC is serving as an institution for strategic planning for the development of region while fulfilling people's aspirations and promoting culture." In the NEC meeting, the Home Minister instructed CMs to shift the focus from law and order to shielding the rights of citizens, as insurgency is no longer an issue. He also directed states to build AI, machine learning and blockchain infrastructure for new generations. Mr. Shah said that he also instructed to market Northeast potential in agarwood, foreign trade and health tourism. Prime Minister Narendra Modi today said yoga is India's timeless gift to humanity. Virtually joining the inaugural edition of the World Yogasan Sports Championship being held at the EK Arena in Ahmedabad, the Prime Minister said yoga unites mind, body and spirit and inspires a healthier and more harmonious world. He expressed confidence that the maiden World Yoga Championship will give Yogasan a global sport.